नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण अधिनियम आज से लागू हो रहा है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा कि वीबीजी रामजी अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 125 दिन के रोजगार की गारंटी होगी। इससे ग्रामीण भारत सशक्त बनेगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि वर्तमान वित्तीय वर्ष में इस योजना के कार्यान्वयन के लिए 95,692 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल ईरान के राष्ट्रपति डॉ मसूद पेजश्कियान के साथ टेलीफोन पर बातचीत की। राष्ट्रपति पेजश्कियान ने श्री मोदी को पश्चिम एशिया के हाल के घटनाक्रम की जानकारी दी। प्रधानमंत्री ने विभिन्न पक्षों के बीच मौजूदा सहमति का स्वागत किया तथा सभी मुद्दों का समाधान बातचीत और राजनयिक माध्यम से किए जाने का भारत का रुख दोहराया। श्री मोदी ने पश्चिम एशिया में स्थायी शांति और स्थिरता तथा सुरक्षित नौवहन और वाणिज्य के लिए सतत प्रयासों पर भी बल दिया। जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची 3 दिन की भारत यात्रा पर आज शाम नई दिल्ली पहुंच रही हैं। भारत की उनकी ये पहली आधिकारिक यात्रा है। वे कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगी। ये सम्मेलन दोनों देशों को द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा और इसे सुदृढ़ बनाने के साथ ही परस्पर हित के क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर चर्चा का अवसर प्रदान करेगा। श्रम और रोजगार मंत्री डॉ मनसुख मांडविया ने नई दिल्ली में कर्मचारी राज्य बीमा निगम की बैठक की अध्यक्षता की। बीमित व्यक्तियों के लिए बेरोजगारी भत्ता योजना अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना को कल से अगले वर्ष 30 जून तक बढ़ा दिया गया है। इसके साथ ही नए ईएसआई अस्पतालों का प्रबंधन अब सीधे निगम द्वारा किया जाएगा, जिससे उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित की जा सकेंगी। उत्तराखंड की मदरसा शिक्षा व्यवस्था में आज से एक बड़ा बदलाव लागू होगा। नई व्यवस्था के अंतर्गत उत्तराखंड मदरसा शिक्षा बोर्ड को समाप्त कर दिया जाएगा। राज्य में अल्पसंख्यकों के सभी शैक्षणिक संस्थान नए ढांचे के अंतर्गत संचालित होंगे। जम्मू कश्मीर में श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए सभी आवश्यक प्रबंध कर लिए गए हैं। तीर्थयात्रियों का पहला जत्था कल भगवती नगर आधार शिविर से रवाना होगा। हमारे जम्मू संवाददाता ने बताया, उपराज्यपाल मनोज सिन्हा कल सुबह 4 बजे पहले जत्थे को रवाना करेंगे। श्री मनोज सिन्हा अमरनाथ श्राइन बोर्ड के अध्यक्ष भी हैं। 57 दिन की यात्रा पारंपरिक नुनवान पहलगाम मार्ग और गांदरबल जिले के बालतल मार्ग से 3 जुलाई को शुरू होगी। उत्तर रेलवे ने वार्षिक अमरनाथ यात्रा के लिए सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए विस्टाडोम विशेष रेलगाड़ियों का परिचालन 2 महीने के लिए कम कर दिया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि आमतौर पर कटरा और बडगाम रेलवे

स्टेशनों के बीच चलने वाली विस्टाडोम रेलगाड़ी आज से 31 अगस्त तक या अगले आदेश तक सिर्फ बनिहाल और बडगाम के बीच चलेगी। ये फैसला जम्मू कश्मीर पुलिस से मिली सुरक्षा जानकारी और सुझावों के आधार पर लिया गया है। रेलवे ने 200 करोड़ रुपए की लागत से दक्षिण पूर्व रेलवे में शेष 48 फाइबर ऑप्टिकल फाइबर केबल लगाने को मंजूरी दे दी है। इससे रेलवे का डिजिटल संचार नेटवर्क मजबूत होगा। इस परियोजना से दक्षिण पूर्व रेलवे के 4 बड़े संभाग में 1600 किलोमीटर से अधिक क्षेत्र में 48 फाइबर ओएफसी कनेक्टिविटी उपलब्ध होगी। दक्षिण पश्चिम मानसून के अगले 2 दिन में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब में आगे बढ़ने की संभावना है। इस दौरान उत्तरी अरब सागर, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, दमन और दीव तथा राजस्थान में भी मानसून के आगे बढ़ने की संभावना है। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला आज से इंग्लैंड में शुरू हो रही है। श्रृंखला का पहला मैच भारतीय समय अनुसार रात 10 बजे चेस्टर ली स्ट्रीट में खेला जाएगा। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड 32 के मैच में फ्रांस ने स्वीडन को 3-0 से हरा दिया है। इसके साथ ही उसने अंतिम 16 में जगह पक्की कर ली है। इससे पहले नॉर्वे ने आइवरी कोस्ट को हराकर राउंड 16 में जगह बनाई। अब नॉर्वे का मुकाबला रविवार को ब्राजील से होगा। मोरक्को, पैराग्वे, ब्राजील और कनाडा भी राउंड 16 में पहुंच चुके हैं। राउंड 32 के एक अन्य मैच में आज शाम मेक्सिको का सामना इक्वाडोर से होगा। आज रात 9:30 बजे इंग्लैंड और कांगो आमने सामने होंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

मुख्य समाचार। मनरेगा के स्थान पर विकसित भारत जी राम जी अधिनियम आज से लागू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति डॉक्टर मसूद पेजेश्कियान से बात की। पश्चिम एशिया में स्थायी शांति और स्थिरता बहाल करने तथा सुरक्षित नौवहन और वाणिज्य के लिए सतत प्रयासों पर बल दिया। जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाइची 3 दिन की भारत यात्रा पर आज नई दिल्ली पहुंचेंगी। फीफा विश्व कप फुटबॉल में फ्रांस ने स्वीडन को हराकर अंतिम 16 में जगह बनाई और क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 श्रृंखला आज से। और अब समाचार विस्तार से। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण अधिनियम आज से लागू हो रहा है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा है कि वीबीजी रामजी अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक वित्त वर्ष में 125 दिन के रोजगार की गारंटी होगी। इससे ग्रामीण भारत सशक्त बनेगा। हमारे

0: संवाददाता ने बताया कि वर्तमान वित्त वर्ष में इस योजना के कार्यान्वयन के लिए 95,692 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
1: वीबीजी रामजी अधिनियम ने 20 साल पुराने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 की जगह ली है। इस नए कानून का उद्देश्य ग्रामीण परिवारों को एक वित्तीय वर्ष में मिलने वाले रोजगार की कानूनी गारंटी को 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन करना है। इस बढ़ी हुई रोजगार गारंटी का मकसद ग्रामीण विकास की तेज रफ्तार को बढ़ावा देना है, लोगों की आय को अधिक सुरक्षित बनाना और ग्रामीण परिवारों को आर्थिक रूप से सशक्त करना है। इस कानून में मजदूरी का भुगतान समय पर पारदर्शी और जवाबदेही के साथ सुनिश्चित करने पर विशेष दिया गया है। अगर तय समय के भीतर काम उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो इस कानून में बेरोजगारी भत्ता देने का भी प्रावधान किया गया है। वीबीजी राम जी एक व्यापक कानून है जिसका उद्देश्य वर्ष 2047 तक विकसित भारत के राष्ट्रीय लक्ष्य के अनुरूप ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ाना है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: केंद्र सरकार ने विकसित भारत जी राम जी अधिनियम के अंतर्गत संशोधित पारिश्रमिक दरें अधिसूचित कर दी हैं। ये दरें आज से लागू हो जाएंगी। एक रिपोर्ट।
2: राष्ट्रीय औसत पारिश्रमिक मनरेगा के 298.80 रुपए से बढ़ाकर विकसित भारत जीरामजी के अंतर्गत 327.40 रुपए प्रतिदिन कर दिया गया है। इस प्रकार पारिश्रमिक दर में 10% से अधिक की औसत वृद्धि हुई है। 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जहां पहले मजदूरी 300 रुपए से कम थी, वहां अब नई दरें लागू हो गई हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश और हिमाचल प्रदेश मजदूरी दर में 15 से 25% की वृद्धि वाले राज्यों में शामिल है। मंत्रालय ने बताया कि अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में लगभग 24.5% की सर्वाधिक वृद्धि की गई है। हरियाणा में अब मजदूरी दर 409 रुपए, गोवा में 406 रुपए और केरल में 401 रुपए प्रतिदिन होगा। सिक्किम की ऊंचाई वाली ग्राम पंचायतों में ये दर 450 रुपए प्रतिदिन निर्धारित की गई है। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस संशोधन को गांवों की वृद्धि के माध्यम से विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में ऐतिहासिक कदम बताया। मंत्रालय ने कहा है कि यह कदम गरीब कल्याण, अंत्योदय और 2047 तक विकसित भारत की सरकार की प्रतिबद्धता में मील का पत्थर है। सकलेन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से नवीन सक्सेना।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल ईरान के राष्ट्रपति डॉक्टर मसूद पेजेश्कियान के साथ टेलीफोन पर बातचीत की। राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने श्री मोदी को पश्चिम एशिया के हाल के घटनाक्रम की जानकारी दी। प्रधानमंत्री मोदी ने विभिन्न पक्षों के बीच बनी सहमति का स्वागत किया तथा सभी मुद्दों का समाधान बातचीत और राजनयिक माध्यम से किए जाने के भारत के रुख को दोहराया। श्री मोदी ने पश्चिम एशिया में स्थायी शांति और स्थिरता तथा सुरक्षित नौवहन वाणिज्य के लिए सतत प्रयासों पर बल दिया। ईरान के राष्ट्रपति ने शांति, स्थिरता और क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देने में प्रधानमंत्री मोदी के व्यक्तिगत प्रयासों की सराहना की। ईरानी दूतावास ने बताया कि बातचीत के दौरान राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने भारत में ब्रिक्स देशों के ऊर्जा मंत्रियों की बैठक के सफल आयोजन पर संतोष व्यक्त किया। जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची 3 दिन की भारत यात्रा पर आज शाम नई दिल्ली पहुंच रही हैं। वे कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये सम्मेलन दोनों देशों को द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा और इसे सुदृढ़ बनाने के साथ ही परस्पर हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा का अवसर प्रदान करेगा।
3: भारत और जापान के बीच द्विपक्षीय संबंधों को वर्ष 2014 में विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी का दर्जा दिया गया था। अगले वर्ष दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना के 75 वर्ष पूरे होने वाले हैं। इस अवसर की ओर बढ़ते हुए दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश, आर्थिक सुरक्षा, रक्षा एवं सुरक्षा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, संस्कृति तथा जन से जन संपर्क सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग लगातार गहरा हो रहा है। भारत जापान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता 1 अगस्त 2011 से प्रभावी है। पिछले वित्तीय वर्ष में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार $27 अरब से अधिक रहा। सुपर्णा सैकिया के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष को देखते हुए महत्वपूर्ण पेट्रो रसायन उत्पादों को 15 जुलाई तक सीमा शुल्क से पूरी तरह मुक्त कर दिया है। पहले ये छूट कल मंगलवार तक के लिए दी गई थी। ये रियायत घरेलू बाजारों में पेट्रोकेमिकल उत्पादों की पर्याप्त उपलब्धता को बनाए रखने के लिए की गई है। इस छूट से प्लास्टिक पैकेजिंग, कपड़ा, फार्मास्यूटिकल, रसायन, मोटर वाहन और पेट्रो रसायन उत्पादों पर आधारित कई सेक्टर्स को लाभ होगा। बीमित व्यक्तियों के लिए बेरोजगारी भत्ता योजना अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना आज से अगले वर्ष 30 जून तक के लिए बढ़ा दी गई है और इसके साथ ही नए ईएसआई अस्पतालों का प्रबंधन अब सीधे निगम द्वारा किया जाएगा, जिससे उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित की जा सकेंगी। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया की अध्यक्षता में नई दिल्ली में आयोजित कर्मचारी राज्य बीमा निगम की बैठक में ये फैसले लिए गए। 29वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन आज से जयपुर में आयोजित किया जाएगा। हमारे संवाददाता ने बताया कि सम्मेलन को प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा राजस्थान सरकार मिलकर आयोजित कर रहे हैं।
3: सम्मेलन में 1000 से अधिक स्टार्टअप, शैक्षणिक संस्थाओं के 400 से ज्यादा प्रतिनिधियों सहित करीब 2700 प्रतिभागी हिस्सा लेंगे। पहले दिन 3 प्लेनरी और 6 ब्रेकआउट सत्र होंगे। वहीं दूसरे दिन 3 प्लेनरी सत्रों के बाद राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार वितरण के साथ सम्मेलन का समापन होगा। सम्मेलन में कृत्रिम बुद्धिमता, डीप टेक, क्वांटम कंप्यूटिंग, वॉइस फर्स्ट सॉल्यूशंस और सुरक्षित डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर सहित अन्य विषयों पर चर्चा होगी। यह आयोजन समावेशी, पारदर्शी और नागरिक केंद्रित डिजिटल शासन की दिशा में महत्वपूर्ण मंच साबित होगा। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर।
0: उत्तराखंड की मदरसा शिक्षा व्यवस्था में आज से एक बड़ा बदलाव लागू हो जाएगा। नई व्यवस्था के अंतर्गत उत्तराखंड मदरसा शिक्षा बोर्ड को समाप्त कर दिया जाएगा। राज्य में अल्पसंख्यकों के सभी शैक्षणिक संस्थान नए ढांचे के अंतर्गत संचालित होंगे।
4: उत्तराखंड सरकार ने शिक्षा व्यवस्था को अधिक आधुनिक, पारदर्शी और समान बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। समाज कल्याण एवं अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री खजान दास ने बताया कि वर्तमान में संचालित सभी मान्यता प्राप्त मदरसों को उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण के अधीन लाया जाएगा। साथ ही इन संस्थानों को उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद से संबद्ध किया जाएगा ताकि विद्यार्थियों को राष्ट्रीय शिक्षा मानकों के अनुरूप शिक्षा मिल सके। उन्होंने ये भी बताया कि ये व्यवस्था केवल मुस्लिम समुदाय तक सीमित नहीं होगी, बल्कि सिख, जैन, बौद्ध, ईसाई और पारसी समुदायों के अल्पसंख्यक शिक्षक संस्थानों पर भी सामान्य रूप से लागू होगी।
5: भारत में शिक्षा एक समान सबको होनी चाहिए, उसी के निमित्त हमारी सरकार ने 452 मदरसों को चिन्हित किया और उनसे कहा भी गया कि आप उत्तराखंड की जो हमारा शिक्षा प्रणाली है उससे संबंध होइएगा।
4: सभी मदरसों को यूडायस, यूनाइटेड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन नंबर आवंटित किया जाएगा। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
0: देशव्यापी जनगणना के अंतर्गत आज केरल में घर घर जाकर आंकड़ों के सत्यापन का चरण शुरू हो रहा है। इस बारे में अधिक जानकारी हमारे संवाददाता से।
6: स्वगणना की प्रक्रिया पूरी होने के बाद फील्ड सत्यापन का चरण शुरू हो गया है। यह प्रक्रिया कल खत्म हुई। इस दौरान परिवार जनगणना पोर्टल के जरिए अपने सदस्यों की जानकारी डिजिटल रूप से जमा कर सकते थे। जिन लोगों ने ऑनलाइन पंजीकरण पूरा कर लिया है उन्हें घर पर आने वाले जनगणना कर्मचारी को सेल्फ एन्यूमरेशन आइडेंटिफिकेशन नंबर देना होगा। इसके बाद कर्मचारी यह जांच करेगा कि ऑनलाइन दी गई जानकारी मौजूदा रिकॉर्ड से मेल खाती है या नहीं। अगर कोई अंतर मिलता है या किसी परिवार ने स्वगणना पूरी नहीं की है तो कर्मचारी घर पर आने के दौरान जरूरी जानकारी फिर से इकट्ठा करेंगे। स्मृति एम पुल्लुरुथि की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
0: उत्तर प्रदेश सरकार ने सेवारत शिक्षकों के लिए अलग से शिक्षक पात्रता परीक्षा TET आयोजित करने का निर्णय लिया है। ये निर्णय UPTET की समीक्षा बैठक में लिया गया। TET परीक्षा गुरुवार से 4 जुलाई तक राज्य के 60 जिलों के 955 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज अनंतपुरम जिले के जंतुलुरु में आंध्र प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय के पहले दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। राष्ट्रपति स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम पूरा करने वाले 1268 छात्रों को उपाधि प्रदान करेंगी। आज राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया जा रहा है। ये दिवस जन स्वास्थ्य की रक्षा के प्रति डॉक्टरों के समर्पण और उनके अमूल्य योगदान को रेखांकित करता है। ये दिवस हर साल 1 जुलाई को डॉक्टर विधान चंद्र रॉय की जयंती और पुण्यतिथि की स्मृति में मनाया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने डॉक्टर दिवस पर देश के सभी चिकित्सकों को शुभकामनाएं दी हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस के अवसर पर सभी चिकित्सकों को हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला आज से इंग्लैंड में शुरू हो रही है। श्रृंखला का पहला मैच भारतीय समय अनुसार रात 10 बजे चेस्टर ली स्ट्रीट में खेला जाएगा। फीफा विश्व कप के राउंड 32 के मैच में फ्रांस ने स्वीडन को 3-0 से हरा दिया है और इसके साथ ही उसने अंतिम 16 में जगह पक्की कर ली है। इससे पहले नॉर्वे ने आइवरी कोस्ट को हराकर राउंड 16 में जगह पक्की की। राउंड 32 में मेक्सिको और इक्वाडोर के बीच मुकाबला जारी है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। और अब समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं विशाल शर्मा।
7: धन्यवाद मुनीश। देश की राजधानी से प्रकाशित हिंदी समाचार पत्रों की सुर्खियों में आज राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबरों के साथ ही बाजार की स्थिति और पर्यावरण के सरोकारों को भी जगह दी गई है। दैनिक भास्कर ने केंद्र सरकार के स्पष्टीकरण को शीर्ष समाचार बनाया है। एथेनॉल से पेट्रोल गाड़ियों को किसी नुकसान का कोई सबूत नहीं। अखबार ने यह भी स्पष्ट किया है कि E20 पेट्रोल का इस्तेमाल करने से गाड़ी की बीमा पॉलिसी पर असर नहीं पड़ता है। पत्र ने सोने चांदी के भावों और सेंसेक्स में गिरावट की स्थिति अगले 6 माह में सुधरने की आशा व्यक्त की है। पंजाब केसरी ने अपनी पहली खबर को शीर्षक दिया है पीएम की हाई लेवल मीटिंग और बॉक्स में प्रकाशित किया है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस समेत कई मुद्दों पर पीएम ने चर्चा की और कहा कि सेवाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाया जाए। ईरान के राष्ट्रपति से बात करते हुए हॉर्मुज में प्रधानमंत्री की ओर से नौवहन की स्वतंत्रता पर विशेष बल दिए जाने को भी पत्र ने शीर्ष समाचार बनाया है। नवभारत टाइम्स की पहली खबर है ओजोन प्रदूषण बना रहा दिल्ली एनसीआर को बीमार। अमर उजाला ने अपने संपादकीय पृष्ठ पर आलेख प्रकाशित किया है एक नए दौर की शुरुआत। लेख में कहा गया है कि आज भारत के 2 पड़ोसी चीन और पाकिस्तान परमाणु शक्ति संपन्न है और उनकी वायुसेनाएं तेजी से आधुनिक हो रही हैं। ऐसे में डीआरडीओ द्वारा नेत्र प्रणाली को अंतिम परिचालन की मंजूरी मिलना भारत की हवाई निगरानी क्षमता और तकनीकी आत्मनिर्भरता के एक नए दौर की शुरुआत जैसा है।
0: और अंत में सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। मनरेगा के स्थान पर विकसित भारत जी राम जी अधिनियम आज से लागू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति डॉक्टर मसूद पेजिशकियान से बात की। पश्चिम एशिया में स्थायी शांति और स्थिरता बहाल करने तथा सुरक्षित नौवहन और वाणिज्य के लिए सतत प्रयासों पर बल दिया। जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाईची 3 दिन की भारत यात्रा पर आज नई दिल्ली पहुंचेंगी। फीफा विश्व कप फुटबॉल में फ्रांस ने स्वीडन को हराकर अंतिम 16 में जगह बनाई। और क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 श्रृंखला आज से। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
8: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम सुनील वर्मा। द हेडलाइंस। विकसित भारत जी राम जी स्कीम कम्स इनटू फोर्स अक्रॉस द कंट्री टुडे, रिप्लेसिंग एग्जिस्टिंग एमजी नरेगा। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी स्पीक्स टू ईरानियन प्रेसिडेंट, स्ट्रेस्ड need for continued efforts to secure lasting peace in West Asia and safeguarding freedom of navigation and commerce. Japanese Prime Minister Sanae Takaichi to arrive in New Delhi this evening on a 3-day visit to India. France beat Sweden 3-0 to enter round of 16 at FIFA World Cup football, and India's men's cricket team to begin their 5-match 2020 international series against hosts England today. विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण विकसित भारत जी राम जी एक्ट 2025 विल कम इनटू फोर्स अक्रॉस रूरल इंडिया विद इफेक्ट फ्रॉम टुडे. द रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री सेड दैट द एक्ट विच गारंटीज 125 डेज ऑफ वेज एम्प्लॉयमेंट इन एवरी फाइनेंशियल ईयर विल एम्पावर रूरल इंडिया. आवर कॉरेस्पॉन्डेंट रिपोर्ट्स दैट अ प्रोविजन ऑफ 95,600

0: आकाशवाणी एफएम रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज म्यूजिकली योर्स।
1: नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मुंबई का एफएम रेनबो चैनल। एफएम रेनबो का यह प्रसारण आप आकाशवाणी मुंबई के मीडियम वेव 1044 किलोहर्ट्ज़ के डिजिटल रिसीवर यानी कि डीआरएम पर भी सुन सकते हैं। 8:42 हो गए हैं हमारे स्टूडियो की घड़ी में और कार्यक्रम लेकर मैं हाजिर हूँ जिसका नाम है मस्त मुंबई। तो चलिए आगाज करते हैं इस खूबसूरत प्रोग्राम का इस खूबसूरत ट्रैक के साथ।

0: आपके दिल की हर ख्वाहिश पूरी करने वाली फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम, सुरक्षित बेस्ट इंटरेस्ट रेट और FD के ढेर सारे विकल्प।
1: इंटरेस्ट रेट सर्वसाधारण ग्राहक 7.05%, सीनियर सिटीजन 7.30%, मंथली और क्वार्टरली इंटरेस्ट ऑप्शंस के साथ 16 महीने, शर्तें लागू।
0: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक, एनरिचिंग लाइफ।
2: यार मुझे कुछ जल्दी भेजना है, कोई सुपर फास्ट ऑप्शन है क्या?
3: अरे बिल्कुल, इंडिया पोस्ट लाया है 24 स्पीड पोस्ट, मतलब अगली ही तारीख तक तेज डिलीवरी। ओहो, यानी जरूरी डॉक्यूमेंट हो, पार्सल हो, सब कुछ तुरंत पहुंच जाएगा। हाँ भाई, ट्रैकिंग भी रियल टाइम और रेट भी पॉकेट फ्रेंडली, और सबसे जरूरी OTP आधारित सुरक्षित डिलीवरी। बस भरोसा रखो इंडिया पोस्ट पर। अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से संपर्क करें या विजिट करें indiapost.gov.in।

तो दोस्तों, बहुत ही खूबसूरत गीत अभी आपने सुना श्रेया घोषाल और उदय मजूमदार की आवाज़ों में। फिल्म का नाम था गुरु और एआर रहमान का संगीत गुलजार साहब के लिखे हुए बोल थे। और आज है 1 जुलाई यानी कि बुधवार, और आज का दिन होता है मस्त मुंबई में मुंबई के मतवालों के नाम। और मुंबई के मतवालों में हम बात करते हैं मुंबई ट्रेन की कुछ दिलचस्प कहानियाँ और किस्से। लेकिन आज हम अपने इस प्रोग्राम में यूँ कहें कि इस पड़ाव पर हम बात करेंगे लोकल ट्रेन से जुड़े कुछ अपडेट्स की, और ये अपडेट्स मुंबई करों और लोकल ट्रेन यात्रियों को जानना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि ये आप पर कहीं ना कहीं जो है असर ज़रूर डालेंगे। और अगर आप इन अपडेट्स को ध्यान में रखकर सफ़र करेंगे तो निश्चित तौर पर आपके लिए ये लोकल ट्रेन जो न्यूज़ है या ट्रेन से संबंधित जो जानकारियां हैं वो ज़रूर फ़ायदेमंद साबित होंगी। फिलहाल एंजॉय करते हैं सोनू निगम की आवाज़ में अगला ट्रैक, और उसके बाद हम बात करेंगे मुंबई लोकल ट्रेन से संबंधित या ट्रेन से संबंधित कुछ न्यूज़ अपडेट्स की।

0: अपने व्यापार की प्रगति के लिए और विस्तार के लिए कॉस्मो उद्योग लोन
1: 3 करोड़ तक की आर्थिक सहायता, लघु एवं मध्यम व्यापारियों के लिए कैश क्रेडिट के रूप में लोन उपलब्ध।
0: ये योजना सिर्फ नए ग्राहकों के लिए, इंटरेस्ट रेट सिर्फ 8.50% से शुरू, शर्तें लागू। आज ही संपर्क करें
1: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक, एनरिचिंग लाइफ।

सुबह के 9 बज चुके हैं दोस्तों, और मैं हूं आपके साथ आपका आरजे दोस्त रेहान, और आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मुंबई का एफएम रेनबो चैनल 107.1 मेगाहर्ट्ज़ पर मिस्कलियर्स। एफएम रेनबो का यह प्रसारण आप आकाशवाणी मुंबई के मीडियम वेव यानी 1044 किलोहर्ट्ज़ के डिजिटल रिसीवर यानी DRM पर भी सुन सकते हैं। और जो रेलवे की पहली अपडेट ये है कि आज 1 जुलाई है और आज से कई नियम बदल गए हैं, और ऐसे में आपको ये जानना ज़रूरी है कि आपके लिए कौन कौन से नियम फायदेमंद साबित होंगे और कौन कौन से नियम को जानने के बाद आपको जागरूकता रहनी है। तो पहला यह है कि आज से जो रेलवे का जो बिना टिकट यात्रा करने का जुर्माना था वो 250 से बढ़ाकर 500 रुपये कर दिया गया है, यानी कि अब जो है बगैर टिकट यात्रा करने पर पकड़े जाने पर 250 नहीं आपको 500 रुपये का जुर्माना देना पड़ सकता है। और इसके अलावा मामला मजिस्ट्रेट कोर्ट और दोषी पाए जाने पर अधिकतम 6 महीने की जेल, 1000 रुपये जुर्माना या फिर दोनों सजाएं हो सकती हैं। ये लोकल ट्रेन के यात्रियों को भी ध्यान देने की ज़रूरत है, यानी कि अगर हम बगैर टिकट यात्रा करेंगे तो हमको जो है जुर्माना ज़्यादा देना पड़ेगा, इसलिए टिकट के साथ, सही टिकट के साथ हम यात्रा करें और अपना भी वक्त बचाएं, और रेलवे का जो बगैर टिकट यात्रा करने पर नुकसान होता है उसमें जो है सहयोग करें और टिकट लेकर यात्रा करें। आइए अब सुनते हैं अलका याग्निक और उदित नारायण की आवाज़ों में ये बेहद ही खूबसूरत गीत।

हल्का याग्निक और उदित नारायण की खूबसूरत आवाज़ों में ये राज फिल्म का आपने गीत सुना। नदीम शौण का संगीत और समीर के लिखे हुए बोल। और 9:08 हो गए हैं। कार्यक्रम मस्त मुंबई आप एंजॉय कर रहे हैं आरजे रेहान के साथ। और अगला गीत आप तक पहुंचाऊं उदित नारायण और अलका याग्निक की ही आवाज़ों में। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि वैसे तो मुंबई में इस वक्त जो है मानसून पूरी तरीके से एक्टिव हो चुका है, और ऐसे में लोकल में यात्रा करते समय या वैसे भी कहीं आते जाते समय आप सावधानी बरतिए, क्योंकि बारिश में अक्सर जो है सीढ़ियों पर फिसलन या फिर वाटर लॉगिंग की वजह से

दिक्कतें होती हैं, तो ऐसे में सतर्क रहिए और बारिश की वजह से कहीं कुछ नुकसान ना हो जाए, इसका ख्याल रखिए। और दूसरी बात यह है कि अगर हम बात मुंबई के सेंट्रल रेलवे की करें तो यहाँ पर एसी लोकल की संख्या जो है अब बढ़ गई है। 29 जून से ही जो है 12 नई एसी लोकल चलाई जा रही है, जिसकी वजह से सेंट्रल रेलवे पर जो है एसी लोकल की कुल संख्या अब 120 हो गई है। और इनमें जो मेन लाइन है उस पर 92 और हार्बर लाइन पर जो है 28 लोकल जो एसी की सेवाएं हैं वो शामिल हैं। तो अब यात्रियों की सहूलियतों को ध्यान में रखते हुए रेलवे ने ये फैसला किया है, जो निश्चित तौर पर रेलवे यात्रियों के लिए फायदेमंद साबित होगा। बहरहाल अब सुनते हैं ये गीत राजा फिल्म से।

0: कॉस्मॉस डिजिटल बैंकिंग सेवा, आसान और सुरक्षित।
1: इंटरनेट बैंकिंग,
0: मोबाइल बैंकिंग,
1: व्हाट्सएप बैंकिंग,
0: ईकेवाईसी,
1: एनईएफटी, आरटीजीएस,
0: आईएमपीएस,
1: कॉस्मॉस रुपे और वीसा डेबिट कार्ड,
0: यूपीआई जैसे कई सारे डिजिटल सेवाओं का लाभ लेने के लिए आपका अकाउंट कॉस्मॉस बैंक में जरूर होना चाहिए।
1: कॉस्मॉस कोऑपरेटिव बैंक, एनरिचिंग लाइफ।
2: यार मुझे कुछ जल्दी भेजना है, कोई सुपर फास्ट ऑप्शन है क्या?
3: अरे बिल्कुल, इंडिया पोस्ट लाया है 24 स्पीड पोस्ट, मतलब अगली ही तारीख तक तेज डिलीवरी।
2: ओहो, यानी जरूरी डॉक्यूमेंट हो, पार्सल हो, सब कुछ तुरंत पहुंच जाएगा।
3: हाँ भाई, ट्रैकिंग भी रियल टाइम और रेट भी पॉकेट फ्रेंडली, और सबसे जरूरी ओटीपी आधारित सुरक्षित डिलीवरी। बस भरोसा रखो इंडिया पोस्ट पर।
4: अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से संपर्क करें या विजिट करें indiapost.gov.in।

0: आकाशवाणी FM रेनबो 107.1 MHz म्यूजिकली योर्स।
1: 9:24 सुबह के और आप सुन रहे हैं मस्त मुंबई आरजे रेहान के साथ। उम्मीद है इस प्रोग्राम का आप जरूर एंजॉय कर रहे होंगे। और अभी आपने प्रेम ग्रंथ में सुना विनोद राठौड़ और अलका याग्निक को। लक्ष्मीकांत परेलाल का संगीत था और अनबख्शी के लिखे हुए बोल थे। मस्त मुंबई कार्यक्रम चल रहा है और मस्त मुंबई कार्यक्रम में आज मैं आपसे बातें कर रहा हूं मुंबई लोकल या ट्रेनों से जुड़ी कुछ अपडेट्स की। और हाल ही के दिनों में मुंबई के लोकल ट्रेनों में कुछ ऐसी जो है दुखद घटनाएं देखने को मिली हैं जिसकी वजह से हर कोई अचंभित है कि मुंबई लोकल में इस तरह की अमानवीय घटनाएं कैसे हो रही हैं। और लोकल में बढ़ रही इस तरह की आपराधिक घटनाओं को देखते हुए रेलवे प्रशासन ने अब एक बड़ा कदम उठाया है और इस बड़े कदम के तहत अब सुरक्षा व्यवस्था जो है काफी कड़ी करने का जो है प्लान तैयार किया गया है। और रात में खासकर जो गश्त है पुलिस की वो बढ़ाने का जो है फैसला किया गया। और इसके अलावा जो भी यात्री नशे की हालत में यात्रा करते हुए पाए जाएंगे उन पर अब एक्शन होगा, क्योंकि नशे के दौरान ही इस तरह की वारदातें हुई हैं जैसा कि पाया गया है। तो इसलिए नशे में यात्रा करना वैसे ही अपराध है, लेकिन अब लोकल ट्रेन में खासकर मुंबई पुलिस और रेलवे प्रशासन मिलकर जो है अब सुरक्षा की दृष्टि से एहतियाती जो है गश्त बढ़ाने का जो है योजना बनाई गई है। और इसके अलावा सुरक्षा को काफ़ी जो है कड़ा किया जाएगा इस दौरान, ताकि इस तरह की जो अनहोनी घटनाएं हैं उसे रोका जा सके। और ये जो गीत है अब अगला इस कार्यक्रम का मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ों में, लक्ष्मीकांत प्यारे लाल का संगीत है और बोल आनंद बख्शी के हैं। फिल्म का नाम है जीवन मृत्यु।

0: व्यापारियों को आर्थिक सहायता करने वाली कर्ज योजना
1: कॉस्मो स्मॉल बिजनेस लोन इंटरेस्ट रेट सिर्फ 9.25% से शुरू
0: कैश क्रेडिट या टर्म लोन के स्वरूप में 5 करोड़ रुपए तक लोन उपलब्ध शर्तें लागू
1: इंडस्ट्री ट्रेडिंग सर्विस इंडस्ट्री के लिए फायदेमंद कर्ज योजना कॉस्मो स्मॉल बिजनेस लोन
0: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक एनरिचिंग लाइफ।

अब लौट चलें। इस फिल्म का यह गीत उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाजों में आपने सुना। बात पश्चिम रेलवे की करें तो पश्चिम रेलवे ने मुंबई की लोकल स्टेशनों पर बिजली की खपत को कम करने के लिए एक बड़ा प्लान तैयार किया है। इस वजह से मुंबई की रेलवे नेटवर्क और आए दिन कम बिजली की खपत कर रहा है और इसकी मुख्य वजह है कि सोलर प्लांट। जी हाँ, वेस्टर्न रेलवे ने करीब 25 स्टेशनों पर और रेलवे की इमारतों पर सोलर प्लांट लगाकर जो है बिजली की खपत को कम करने का फैसला लिया है और करीब एक साल में 13.4 करोड़ रुपए की बचत जो है पश्चिम रेलवे ने की है। और पश्चिम रेलवे की ये योजना आने वाले सालों में है और विस्तारित किया जाएगा ताकि इसका ज़्यादा से ज़्यादा फायदा और बिजली की खपत को कम किया जा सके और खपत को कम करने और खर्च को बचाने में जो है इस तरह के जो सोलर प्लांट हैं वो काफ़ी सहायक साबित हो रहे हैं। 9:37 और आप सुन रहे हैं आरजे रेहान के साथ मस्त मुंबई और अब अलका याग्निक की आवाज़ में ये बहुत ही खूबसूरत गीत।

0: आपके दिल की हर ख्वाहिश पूरी करने वाली फिक्स डिपॉजिट स्कीम, सुरक्षित बेस्ट इंटरेस्ट रेट और FD के ढेर सारे विकल्प।
1: इंटरेस्ट रेट सर्वसाधारण ग्राहक 7.05%, सीनियर सिटीजन 7.30%, मंथली और क्वार्टरली इंटरेस्ट ऑप्शंस के साथ 16 महीने, शर्तें लागू।
0: कॉस्मॉस कोऑपरेटिव बैंक, एनरिचिंग लाइफ।

नौजगर 46 मिनट हो गए हैं दोस्तों, और मस्त मुंबई आप एंजॉय कर रहे हैं आरजे रेहान के साथ। अगर हम मुंबई लोकल की यात्रियों की सुविधाओं और रेलवे के ढांचों की बात करें तो लगातार आधुनिक बनाने की कोशिशें हो रही हैं रेलवे बोर्ड और रेलवे प्रशासन और सरकार के द्वारा। और अब खबर है कि चर्च गेट से मुंबई सेंट्रल के बीच में एक टनल बनने का जो है संभावना तलाशी जा रही है, और यदि इस संभावना को जो है सफलता मिलती है तो एक दौर आएगा जब चर्च गेट से मुंबई सेंट्रल के बीच हमें रेलवे सुरंग मिलेगी और रेलवे सुरंग के ज़रिए हम यात्रा करेंगे। और जब ऐसा होगा तो वाकई में ये सफ़र बहुत ही दिलचस्प होगा। फिलहाल इसकी स्टडी अभी की जा रही है, और स्टडी में अगर सफलता मिलती है तो इस योजना का विस्तार भी होगा। कहा यह भी जा रहा है कि प्रभा देवी तक रेलवे टनल हो सकता है, लेकिन फिलहाल अभी संभावनाएं ही तलाश की जा रही हैं, और रेलवे बोर्ड ने इसके लिए एक स्टडी टीम तैयार की है, और टीम जो है स्टडी करके अपना जो रिसर्च वर्क है वो देगी और उसके बाद फैसला लिया जाएगा। तो यहीं और अगर हम दूसरी ओर बात करें आज के इतिहास की, यानी कि 1 जुलाई के इतिहास की, तो आज ही के दिन 2017 में GST कानून प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में लागू किया गया था। और इसके अलावा 1 जुलाई 1862 को कलकत्ता उच्च न्यायालय का उद्घाटन किया गया था, और 1879 को आज ही के दिन पोस्ट कार्ड की शुरुआत हुई थी, और आज ही के दिन 1 जुलाई 1975 को जो है पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 20 सूत्रीय जो है कार्यक्रम का ऐलान किया था। तो ये भारत के इतिहास की प्रमुख घटनाएं जो थीं उसके बारे में हमने आपको बताई। और आज का दिन यानी कि 1 जुलाई जो दिवस भारतीय दिवस महत्वपूर्ण दिवस मनाए जाते हैं उनमें है राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस, और इसके अलावा चार्टर्ड अकाउंट दिवस और GST दिवस भी आज ही मनाया जाता है। और महाराष्ट्र की दृष्टि से अगर हम बात करें तो महाराष्ट्र में 1 जुलाई को महाराष्ट्र कृषि दिन जो है मनाया जाता है। ये पूर्व मुख्यमंत्री और हरित क्रांति के जनक वसंतराव नाइक की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। तो 9:48 और इंजॉय कर रहे हैं आप आकाशवाणी मुंबई का FM रेनबो चैनल 107.1 MHz पर, म्यूजिकली योर्स।

कुमार सानू और आशा भोसले की आवाज़ में सलामी फिल्म का ये गीत सुना, और अब मस्त मुंबई कार्यक्रम का ये आखिरी नगमा कुमार सानू की आवाज़ में सुनते हैं। ठीक 10 बजे आप सुनेंगे प्रमुख समाचार, और उसके बाद भी FM रेनबो पर जो मनोरंजन का ये सिलसिला है लगातार जारी रहेगा। यूं जिंदा रहिए आकाशवाणी मुंबई का FM रेनबो चैनल 107.1 MHz पर। मिस्कली यर्स।

0: स्वानी एफएम रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज म्यूजिकली योर्स।
1: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मुंबई का एफएम रेनबो चैनल और मैं हूं आपका आरजे दोस्त रेहान। सुबह के 10 बज चुके हैं, आगे बढ़ें इससे पहले एक नजर प्रमुख समाचारों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल ईरान के राष्ट्रपति डॉक्टर मसूद पेजेशकियान के साथ टेलीफोन पर बातचीत की। राष्ट्रपति पेजेशकियान ने श्री मोदी को पश्चिम एशिया के हाल ही के घटनाक्रम की जानकारी दी। प्रधानमंत्री मोदी ने विभिन्न पक्षों के बीच मौजूदा बनी सहमति का स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी ने सभी मुद्दों का समाधान बातचीत और राजनयिक माध्यम से किए जाने का भारत का रुख दोहराया। ईरान के राष्ट्रपति ने शांत, स्थिरता और क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के व्यक्तिगत प्रयासों की सराहना की। जापान के प्रधानमंत्री सनाइके तकाइची 3 दिन की भारत यात्रा पर आज शाम नई दिल्ली पहुंचेंगी। ये प्रधानमंत्री तकाइची की पहली आधिकारिक भारत यात्रा है। वो कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगी। ये सम्मेलन द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा और उन्हें सशक्त करने का अवसर देगा। इस दौरान क्षेत्रीय और परस्पर हितों के वैश्विक मुद्दों पर भी चर्चा होगी। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण अधिनियम आज से लागू हो रहा है। ग्रामीण विकास भारत मंत्रालय ने कहा है कि वीवीजी रामजी अधिनियम के तहत प्रत्येक वित्तीय वर्ष 125 दिन के रोजगार की गारंटी होगी। इससे ग्रामीण भारत सशक्त बनेगा। वर्तमान वित्तीय वर्ष में इस योजना के कार्यान्वयन के लिए 95,692 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। और अब भारत और इंग्लैंड के बीच होने वाले 5 मैचों की T20 श्रृंखला आज से इंग्लैंड में शुरू हो रही है। श्रृंखला का पहला मैच भारतीय समयानुसार रात 10 बजे चेस्टर ली स्ट्रीट में खेला जाएगा। दूसरा T20 मैच शनिवार को मैनचेस्टर में होगा। तीसरा मैच 7 जुलाई को नॉटिंघम में, चौथा 9 जुलाई को ब्रिस्टल में तथा पांचवा और अंतिम मैच 11 जुलाई को साउथम्पटन में खेला जाएगा। ये थे अब तक के प्रमुख समाचार। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मुंबई का एफएम रेनबो चैनल 107.1 मेगाहर्ट्ज़ पर, म्यूजिकली योर्स। कार्यक्रम नमस्ते भारत लेकर मैं हाजिर हूं आपका आरजे दोस्त रेहान।

सुबह के 9:10 हो गए हैं दोस्तों, और आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मुंबई का एफएम रेनबो चैनल। मैं हूं आपके साथ आपका आरजी दोस्त रेहान। इस कार्यक्रम में आज हम बात करेंगे एक ऐसी अभिनेत्री की जिसने अपने परिवार की परंपराओं को तोड़कर शोहरत के शिखर पर पहुंची और अपनी अदाकारी से उसने अपना लोहा मनवाया। नाम है अभिनेत्री करिश्मा कपूर।

0: व्यापारियों को आर्थिक सहायता करने वाली कर्ज योजना।
1: कॉस्मोस स्मॉल बिजनेस लोन इंटरेस्ट रेट सिर्फ 9.25% से शुरू।
0: कैश क्रेडिट या टर्म लोन के स्वरूप में 5 करोड़ रुपए तक लोन उपलब्ध। शर्तें लागू।
1: इंडस्ट्री, ट्रेडिंग, सर्विस इंडस्ट्री के लिए फायदेमंद कर्ज योजना। कॉस्मोस स्मॉल बिजनेस लोन।
0: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक। एनरिचिंग लाइफ।

10:15 और आप एंजॉय कर रहे हैं आकाशवाणी मुंबई का FM रेनबो चैनल 107.1 मेगाहर्ट्ज़ पर म्यूजिकली योर्स। मैं हूं आपके साथ आपका आरजे दोस्त रेहान। करिश्मा कपूर ने जब अपनी इच्छा परिवार को बताई कि वो भी एक्टर बनना चाहती हैं, तब उनके दादा यानी हिंदी सिनेमा के शोमैन राज कपूर ने जो कहा था वो ये है कि एक एक्टर बनना कोई आसान काम नहीं है। अगर तुम एक्टर बनना चाहती हो तो तुम्हें कांटों पर चलना होगा और मिट्टी में काम करना होगा ताकि तुम एक अच्छी एक्टर अच्छी कलाकार बनो। और करिश्मा ने अपने दादाजी की यानी कि राज कपूर की इस बात को बहुत ही गंभीरता से लिया और उन्होंने ये करके दिखाया कि वो एक अच्छी कलाकार एक अच्छी अभिनेत्री हैं। और जब वो सफलता के शिखर पर पहुंची तब उन्होंने अपनी अदाकारी का लोहा भी मनवाया और अपने परिवार की परंपरा को तोड़ा भी और वो कपूर खानदान की पहली अभिनेत्री बनी।

बात अगर अभिनेत्री करिश्मा कपूर की करें तो उन्होंने पहले फिल्म निश्चय की शूटिंग की, लेकिन हिंदी सिनेमा में उनकी फिल्म प्रेम कैदी पहले रिलीज हुई। ये फिल्म औसत रही। 1992 में करिश्मा की 6 फिल्में आई, पुलिस ऑफिसर, जागृति, निश्चय, सपने साजन के, दीदार और जिगर जैसी फिल्में रिलीज हुई, लेकिन करिश्मा को सफलता मिली 1993 में रिलीज हुई फिल्म अनाड़ी से। दिल तो पागल है करिश्मा की एक बेहतरीन फिल्म कही जाती है। लता मंगेशकर और उदित नारायण की आवाजों में सुनते हैं दिल तो पागल है फिल्म का ये नगमा, संगीत उत्तम सिंह का और बोल आनंद बख्शी के।

0: कॉस्मॉस डिजिटल बैंकिंग सेवा, आसान और सुरक्षित
1: इंटरनेट बैंकिंग,
0: मोबाइल बैंकिंग,
1: व्हाट्सएप बैंकिंग,
0: ईकेवाईसी,
1: एनईएफटी, आरटीजीएस,
0: आईएमपीएस,
1: कॉस्मॉस रुपे और वीसा डेबिट कार्ड,
0: यूपीआई जैसे कई सारे डिजिटल सेवाओं का लाभ लेने के लिए आपका अकाउंट कॉस्मॉस बैंक में जरूर होना चाहिए।
1: कॉस्मॉस कोऑपरेटिव बैंक, एनरिचिंग लाइफ।

उदित नारायण, लता मंगेशकर और साथियों की आवाज़ों में ये दिल तो पागल है का गीत अभी आपने सुना। उत्तम सिंह का संगीत और आनंद बख्शी के बोल। बात कर रहे हैं हम करिश्मा कपूर की। 1994 की बात करें तो इस साल करिश्मा कपूर की 10 फिल्में रिलीज हुई और इनमें वो फिल्में थी गोपी किशन, राजा बाबू, खुद्दार, अंदाज अपना अपना हिट रही, तो वहीं साजन चले, ससुराल और इसके अलावा जीत और कृष्णा के अलावा राजा हिंदुस्तानी जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्म भी रिलीज़ हुई और करिश्मा कपूर तब तक एक बड़ी स्टार बन चुकी थी। आइए अब ये अगला गीत सुनते हैं राजा हिंदुस्तानी फिल्म से, अलका याग्निक और उदित नारायण की आवाज़ों में।

0: उपलब्ध।
1: ये योजना सिर्फ नए ग्राहकों के लिए। इंटरेस्ट रेट सिर्फ 8.50% से शुरू। शर्तें लागू। आज ही संपर्क करें।
0: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक, एनरिचिंग लाइफ।
2: 10:45 और आप एंजॉय कर रहे हैं आकाशवाणी मुंबई का FM रेनबो चैनल 107.1 MHz पर म्यूजिकल इयर्स, और मैं हूं आपके साथ आपका आरजे दोस्त रेहान। बातें हो रही हैं आज के इस कार्यक्रम में अभिनेत्री करिश्मा कपूर की। 2003 में करिश्मा कपूर ने शादी की और उसके बाद फिल्मों से दूरी बना ली। 2012 में हालांकि उन्होंने डेंजरस इश्क के जरिए वापसी की, लेकिन करिश्मा की ये वापसी जो है रास नहीं आई। और करिश्मा जो है इन दिनों कुछ रियलिटी शोज़ या फिर कुछ फिल्मों में नज़र आती हैं, और उनकी एक्टिविटी इन दिनों फिल्मों की तरफ काफ़ी बढ़ी है। हम बात करें अगर उनकी फिल्मों की, तो उनका करियर बहुत ही शानदार रहा है। कई पुरस्कारों से उन्हें नवाजा भी गया है। जुबैदा जैसी फिल्म करके उन्होंने कई पुरस्कार भी जीते और अपनी अदायगी का लोहा भी बनवाया। आइए सुनते हैं सुखविंदर सिंह, अलका याग्निक और साथियों की आवाज़ों में फिल्म बीवी हो तो ऐसी, बीवी नंबर 1 का ये गीत।

0: आकाशवाणी FM रेनबो 107.1 MHz म्यूजिकली योर्स।
1: अपने व्यापार की प्रगति के लिए और विस्तार के लिए कॉस्मो उद्योग लोन
2: 3 करोड़ तक की आर्थिक सहायता, लघु एवं मध्यम व्यापारियों के लिए कैश क्रेडिट के रूप में लोन।

दोस्तों, अब कार्यक्रम धीरे धीरे समापन की ओर बढ़ रहा है और उम्मीद है इस प्रोग्राम को आपने ज़रूर इन्जॉय किया होगा। चलते चलते आपको छोड़ जाते हैं चंद और खूबसूरत गीतों के साथ। आप यूं ही सुनते रहिए आकाशवाणी मुंबई का FM रेनबो चैनल 107.1 MHz पर, म्यूजिकली योर्स। फिलहाल आपका ये रेडियो दोस्त रेहान अब आपसे चाहता है अनुमति। रखिए अपना ख्याल, दीजिए मुझे अनुमति। नमस्कार।

0: गीगाहर्ट्ज म्यूजिकली योर्स।
1: 11:22 हो चुके हैं और आइए इस घंटे के मुख्य समाचारों पर एक नजर डालें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल ईरान के राष्ट्रपति डॉ मसूद पेजेशकियान के साथ टेलीफोन पर बातचीत की। राष्ट्रपति पेजेशकियान ने श्री मोदी को पश्चिम एशिया के हाल के घटनाक्रम की जानकारी दी। प्रधानमंत्री मोदी ने विभिन्न पक्षों के बीच मौजूदा बनी सहमति का स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी ने सभी मुद्दों का समाधान बातचीत और राजनयिक माध्यम से किए जाने का भारत का रुख दोहराया। ईरान के राष्ट्रपति ने शांति, स्थिरता और क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देने में प्रधानमंत्री मोदी के व्यक्तिगत प्रयासों की सराहना की। जापान के प्रधानमंत्री सनाए तकाइची 3 दिन की भारत यात्रा पर आज शाम नई दिल्ली पहुंचेंगी। ये प्रधानमंत्री तकाइची की पहली आधिकारिक भारत यात्रा है। वे कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगी। ये सम्मेलन द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा और उन्हें सशक्त करने का अवसर होगा। इस दौरान क्षेत्रीय और परस्पर हित के वैश्विक मुद्दों पर भी चर्चा होगी। मुख्य समाचारों में आगे, जाने माने फिल्म और थिएटर व्यक्तित्व विजया मेहता का कल रात मुंबई स्थित उनके आवास पर 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वे प्रायोगिक मराठी थिएटर की अग्रणी हस्तियों में से एक थीं। उनके चर्चित नाटकों में बैरिस्टर, सखाराम बाइंडर, हमीदाबाईची कोठी, महानिर्वाण, पुरुष, हयवदन और वाड़ा चिरेबंदी शामिल हैं। विजया मेहता को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार तथा राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार सहित अन्य

अनेक सम्मानों से सम्मानित किया गया। मुख्य समाचारों के अंत में, भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला आज से इंग्लैंड में शुरू हो रही है। श्रृंखला का पहला मैच भारतीय समय अनुसार रात 10 बजे चेस्टरली स्ट्रीट में खेला जाएगा। दूसरा T20 मैच शनिवार को मैनचेस्टर में होगा। तीसरा मैच 7 जुलाई को नॉटिंगहम में, चौथा 9 जुलाई को ब्रिस्टल में तथा पांचवा और अंतिम मैच 11 जुलाई को साउथहैम्पटन में खेला जाएगा। इसी के साथ इस घंटे के मुख्य समाचार समाप्त होते हैं। ब्रेक फ्री के लिए बने रहिए 107.1 FM रेनबो पर।

आप सुन रहे हैं न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप और एफएम पर आकाशवाणी मुंबई केंद्र का एफएम रेनबो चैनल 107.1 मेगाहर्ट्ज पर। और अभी जो है ब्रेक फ्री शुरू हो चुका है, आप सभी हमारे साथ बने हुए हैं, इसके लिए धन्यवाद। दोस्तों आज हम बातें करेंगे बंदिशों को तोड़कर कुछ नया करने की। और जानते हैं आप आज दुनिया भर में क्या मनाया जा रहा है? आज है इंटरनेशनल फ्रूट डे और भारत मना रहा है एग्रीकल्चर डे यानी कृषि दिवस। और साथ ही साथ शुरू हो रहा है वन महोत्सव सप्ताह, जो पेड़ लगाने और पारिस्थितिक संबंधी बहाली यानी इकोलॉजिकल रेस्टोरेशन पर ध्यान केंद्रित करता है हम सभी का। आप सोच रहे होंगे ना कि खेती और फलों का आजादी से क्या कनेक्शन, क्योंकि भाई ब्रेक फ्री है हमारे शो का नाम, तो कनेक्शन बहुत गहरा है, आप सभी को बता दूं। और आज हम आपको सुनवाएंगे ऐसी कहानियां जहां लोगों ने खेती की पुरानी रूढ़ियों को तोड़ा और छू लिया आसमां। आगे की बातें और गानों के लिए बने रहिए मेरे साथ ब्रेक फ्री में 107.1 एफएम रेनबो पर। और ढेर सारी बातें चलती रहेंगी, मैं रहूंगी आप सभी के साथ। और भाई जाहिर सी बात है, सवाल आपके मन में आएगा कि भाई मैं है कौन। मैं हूँ वैशाली और आप सभी सुन रहे हैं 107.1 एफएम रेनबो, म्यूजिकली योर्स।

0: यार मुझे कुछ जल्दी भेजना है, कोई सुपर फास्ट ऑप्शन है क्या?
1: अरे बिल्कुल, इंडिया पोस्ट लाया है 24 स्पीड पोस्ट, मतलब अगली ही तारीख तक तेज डिलीवरी।
0: ओहो, यानी जरूरी डॉक्यूमेंट हो, पार्सल हो, सब कुछ तुरंत पहुंच जाएगा।
1: हाँ भाई, ट्रैकिंग भी रियल टाइम और रेट भी पॉकेट फ्रेंडली, और सबसे जरूरी OTP आधारित सुरक्षित डिलीवरी। बस भरोसा रखो इंडिया पोस्ट पर।
2: अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से संपर्क करें या विजिट करें indiapost.gov.in।
3: कॉस्मोस डिजिटल बैंकिंग सेवा, आसान और सुरक्षित।
4: इंटरनेट बैंकिंग,
3: मोबाइल बैंकिंग,
4: व्हाट्सएप बैंकिंग,
3: EKYC,
4: NEFT, RTGS,
3: IMPS,
4: कॉस्मोस रूपे और वीसा डेबिट कार्ड,
3: UPI जैसे कई सारे डिजिटल सेवाओं का लाभ लेने के लिए आपका अकाउंट कॉस्मोस बैंक में जरूर होना चाहिए।
4: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक, एनरिचिंग लाइफ।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मुंबई का 107.1 FM रेनबो और बात ही हम कर रहे हैं कृषि दिवस की, इंटरनेशनल फ्रूट डे की और आजाद होने की। तो कनेक्शन क्या है इन सभी का, आपके मन में ये सवाल जरूर उठा होगा। और इसी के लिए मैं ले आई हूँ आप सभी के लिए कुछ कहानियां। दोस्तों, जब हम खेती की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में बुरी हालत में एक किसान की छवि आती है, लेकिन आपको बता दूं अब वैसा नहीं रहा। हम सभी जान रहे हैं कि जमाना काफी बदल चुका है और धीरे धीरे और ज्यादा बदल रहा है, क्योंकि देखिए जो हमारे युवा हैं, हमारे नौजवान हैं, इनका देखने का नजरिया काफी चेंज हो चुका है। अब वो शहरी जिंदगी की लालच में शहरों में नहीं बने रहते, वो कुछ करना चाहते हैं। और कहते हैं ना, पर्यावरण के लिए, खेती के लिए, निसर्ग के लिए बहुत सारी चीजें इनके मन में है। और ये कहानी मैं आपको बता रही हूं जिसकी, वो है पुणे में रहने वाला राहुल, जिसने इस सोच से ब्रेक फ्री

किया कि शहर में ही रहना है, यहाँ पर ही जो है सो है, वगैरह वगैरह। देखिए, राहुल एक बड़ी आईटी कंपनी में लाखों के पैकेज पर था। सबने कहा पागल है जो नौकरी छोड़ रहा है, पर राहुल को कुछ अलग करना था। अक्सर पुणे शहर के आसपास जो है थोड़े से गांव इलाके में वो घूमने जाता, और उसने एक सूखा इलाका देखा, वहां पर बंजर जमीन थी। उसको लगा नहीं, अगर मैं टेक्नोलॉजी और बाकी चीजों का इस्तेमाल करूं तो मैं इस बंजर जमीन को भी उपजाऊ बना सकता हूं। उसने इस जमीन को खरीद लिया। लोगों ने मजाक उड़ाया उसका कि यहां तो भाई धूल के अलावा कुछ नहीं उगेगा, लेकिन राहुल ने मॉडर्न टेक्नोलॉजी और ड्रिप इरिगेशन का इस्तेमाल किया। बंजर जमीन पर उसने लाल मिट्टी भर दी। आज उसी बंजर जमीन में लाल लाल मीठी स्ट्रॉबेरी उग रही है। राहुल ने साबित कर दिया कि अगर सोच आजाद हो तो बंजर जमीन में भी फल खिलखिलाकर उग सकते हैं, हंस सकते हैं, कलियां खिल सकती है, और बहुत कुछ हो सकता है। बस आपको पता होना चाहिए कि आपको करना क्या है, ये पहली बात। दूसरी बात, आपको उस जिंदगी से, उस जीवन से, उस काम से आपको लगाव और प्यार होना चाहिए। अगली बात ऐसी है कि आपके पास एक विजन भी होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बस ये आप आज के लिए, कुछ महीनों के लिए कर रहे हो। अगर आपके सामने एक विजन रहेगा तो आप समझ पाओगे कि क्या करना है, क्योंकि देखिए हम एक कृषि प्रधान राष्ट्र है, और इसलिए हमारे देश में जो है इतना ज़्यादा कुछ उपलब्ध है जो हम कर सकते हैं, और अपने देश के लिए ही नहीं, अपने आप के लिए, अपने आत्मसम्मान के लिए, अपने संतोष के लिए हम ऐसे काम कर सकते हैं जो थोड़े हटकर है, उसमें मेहनत बहुत है, लेकिन अगर आपके पास पूरा नॉलेज है, टेक्नोलॉजी है और सारे रिसोर्सेज हैं जो कि हमारा देश हमें प्रोवाइड कर ही रहा है, हमारी सरकार प्रोवाइड कर रहा है, तो फिर बिल्कुल पीछे आप कभी नहीं पड़ेंगे, है ना। तो भाई मितवा, क्या डर है जब इतना सारा आपके लिए उपलब्ध है। आप सुन रहे हैं 107.1 FM रेनबो, म्यूजिकली योर्स।

आप सुन रहे हैं 107.1 FM रेनबो। ब्रेक फ्री चल रहा है, मैं हूं वैशाली और बातें कर रहे हैं हम एग्रीकल्चर डे और इंटरनेशनल फ्रूट डे की, यानी कि कृषि दिवस मना रहा है।

है आज हमारा देश और वही बहुत सारी बातें आप सभी के साथ अब भी साझा करना है बाकी। दोस्तों ब्रेकिंग फ्री का मतलब कभी कभी अपनी पुरानी आदतों को छोड़ना भी होता है। पंजाब की रहने वाली सिमरन कौर की कहानी सुनिए। सिमरन के बारे में क्या बताऊं आपको, उसके परिवार ने सालों से भारी मात्रा में केमिकल और कीटनाशक डालकर खेती की थी। जमीन बंजर हो रही थी, सोच रही थी वो क्या करना चाहिए, हम क्या चीजें हैं जो गलत कर रहे हैं और कैसे इसे सही करना है। सिमरन ने तय किया कि वो इस जहरीले चक्रव्यूह को तोड़ेगी। लोगों ने इसका विरोध किया, कहा कि बिना केमिकल के फसल बर्बाद हो जाएगी, पर सिमरन नहीं रुकी। उसने अच्छी तरह से जांच पड़ताल की, करवाई, उसने थोड़ा सा सीखा और जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी सलाह ली। उसने पूरी तरह से ऑर्गेनिक और फ्रूट फार्मिंग शुरू किया और आज उसके बाग के सेब और कीनू पूरी जगह यानी हर जगह जा रहे हैं। सिमरन ने जमीन को भी जहर से आजाद कराया और खुद को भी। अक्सर दोस्तों लोग जो है आपके उम्मीदों पर, आपके सपनों पर, आपके तय किए हुए रास्ते पर शक करते हैं, पर अगर आपको ठीक ठीक पता हो, अगर आपकी तैयारी पक्की हो, अगर आपके पास वो सही ज्ञान हो और मार्गदर्शन हो, तो आप बिल्कुल सही रास्ते पर हैं। बस देर है तो उस राह पर चलने की। वही दिखा दिया हमें सिमरन ने कि ऐसा कुछ नहीं जो हासिल नहीं किया जा सकता। सालों से चलने वाली परंपराओं को भी बदलना पड़ता है, जब उन परंपराओं के वजह से चाहे जमीन बंजर हो जाए या रिश्ते या फिर जीवन, है ना। इसीलिए तूफानी कुड़ी का होना बहुत जरूरी है हर जगह।

0: व्यापारियों को आर्थिक सहायता करने वाली कर्ज योजना।
1: कॉस्मोस स्मॉल बिजनेस लोन इंटरेस्ट रेट सिर्फ 9.25% से शुरू।
0: कैश क्रेडिट या टर्म लोन के स्वरूप में 5 करोड़ रुपए तक लोन उपलब्ध। शर्तें लागू।
1: इंडस्ट्री, ट्रेडिंग, सर्विस इंडस्ट्री के लिए फायदेमंद कर्ज योजना कॉस्मोस स्मॉल बिजनेस लोन।
0: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक, एनरिचिंग लाइफ।
2: यार मुझे कुछ जल्दी भेजना है, कोई सुपर फास्ट ऑप्शन है क्या?
3: अरे बिल्कुल, इंडिया पोस्ट लाया है 24 स्पीड पोस्ट, मतलब अगली ही तारीख तक तेज डिलीवरी। ओहो, यानी जरूरी डॉक्यूमेंट हो, पार्सल हो, सब कुछ तुरंत पहुंच जाएगा।
4: हाँ भाई, ट्रैकिंग भी रियल टाइम और रेट भी पॉकेट फ्रेंडली, और सबसे जरूरी OTP आधारित सुरक्षित डिलीवरी। बस भरोसा रखो इंडिया पोस्ट पर।
5: अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से संपर्क करें या विजिट करें indiapost.gov.in।

आप सुन रहे हैं 107.1 FM रेनबो, ब्रेक फ्री चल रहा है। मैं हूँ वैशाली और आप सभी के साथ बनी रहूंगी दोपहर के 2 बजे तक। दोस्तों, आज एग्रीकल्चर डे है, यानी कृषि दिवस हमारा भारत देश मना रहा है। साथ ही साथ वन महोत्सव का सप्ताह शुरू होने वाला है और आज पूरा विश्व जो है ये अंतर्राष्ट्रीय फ्रूट डे यानी इंटरनेशनल फ्रूट डे मना रहा है, फल दिवस मना रहा है पूरा विश्व। और हम बातें कर रहे हैं ब्रेक फ्री करने की। जो रूढ़ियां हैं, परंपराएं जो अच्छी हैं, उन्हें हमें बिल्कुल नहीं बदलना, उन्हें संजो कर संभाल कर रखना है, क्योंकि वो हमारी विरासत है। लेकिन जो परंपराएं सही नहीं है, कहीं बिगड़ गई हैं चलते चलते आगे जीवन में, जैसे कि कई सारी चीजें बिगड़ जाती है, तो उनसे ब्रेक फ्री करना, इसके ऊपर हम बातें कर रहे हैं आज ब्रेक फ्री में। दोस्तों, जब हम खेतों के बारे में सोचते हैं तब अक्सर हम बड़ी जमीन की कल्पना करते हैं। इस बंदिश को तोड़ा है मुंबई के 2 नौजवानों ने, रोहित और अमित ने। उन्होंने कहा कि जब रहने के लिए गगनचुंबी इमारतें बन सकती है तो खेती के लिए क्यों नहीं। भाई, सवाल जो मन में उठा इनके, ये तो बिल्कुल सही है ना। उन्होंने एक पुरानी बंद पड़ी फैक्ट्री के अंदर वर्टिकल फार्मिंग शुरू कर दी। बिना मिट्टी के, सिर्फ पानी और एलईडी लाइट्स के सहारे वो विदेशी फल और एग्जॉटिक बेरीज उगाने लगे। उन्होंने साबित कर दिया ये करके दोस्तों कि खेती के लिए सिर्फ आसमान छूने वाले हौसलों की जरूरत है। अलग अलग किस्म की खेतियां होती है और इन्हें बिल्कुल एक्सप्लोर किया जा सकता है। क्या कमाल की बात है ना। मुझे भी पहले नहीं पता था इस बारे में, लेकिन आज मैं जानती हूँ। तो चलिए घूम फिर कर आ जाते हैं और अपने मन ही मन में खेत खलिहानों का लुत्फ उठाते हैं इस गाने के जरिए। तो अपनी मन की आंखों से और कानों से इस गाने को सुनकर सोचिए, क्या वो मौसम होता है खेतों में जब घूमते हैं, क्या वो नज़ारा होता है और क्या दिल को सुकून मिलता है ना।

दोस्तों ब्रेक फ्री बस खत्म ही होने को है और बातें हम कर रहे हैं आज के कृषि दिवस की और किस तरह हमें जो है जीवन में चीजों से ब्रेक फ्री करना चाहिए। बस आपको जाते जाते बताना चाहती हूँ उस लड़के की बात जो दिल्ली जैसे शहर में ऐशो आराम की जिंदगी जी रहा था, जैसे तैसे पढ़ाई खत्म करके मैनेजमेंट कर लिया उसने और ये उसके लिए मुश्किल ही था क्योंकि वो पढ़ाई में उतना अच्छा नहीं था। पर देखिए वो ऑस्ट्रेलिया चला गया पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए और लौटने के बाद उसका शहर में दिल नहीं लग रहा था क्योंकि उसके अंदर तब कुछ बदल सा गया था जब वो अपने गांव घूमने चला गया। उसने शहर को छोड़कर अपने पुरखों के गांव को अपना लिया। ये बहुत कठिन था उसके लिए क्योंकि ऐशो आराम की आदत थी उसे, पर उसकी सोच बदल चुकी थी। उसने अपनी खाली पड़ी जमीन को उपजाऊ बनाकर वहां खेती शुरू कर दी, अपना घर बनाया और बसाया भी, और हमेशा के लिए वो वहीं का हो गया। तो दोस्तों उस लड़के ने सही मायनों में बस अपनी सोच को आजाद रखा और जिंदगी को गले लगाया। आप मानेंगे ना ये बात, बंदिशें दोस्तों सिर्फ हमारे दिमाग में होती हैं, चाहे वो करियर की हो, खेती संबंधी हो या जिंदगी का कोई भी फैसला। जब आप पुरानी और दकियानुसी सोच को तोड़कर बाहर निकलते हैं तभी कुछ महत्वपूर्ण या बड़ा हासिल होता है। अब लोग शहरों की तरफ नहीं दौड़ रहे, अब वो किसी शांत जगह जाकर ठहर जाना चाह रहे हैं, अपना सच्चा आशियां बनाना चाह रहे हैं। तो क्या आप भी अपना सच्चा आशियां ढूंढ रहे हैं? भाई आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं क्योंकि आपका आशियां यही है 107.1 FM रेनबो पर, म्यूजिकली योर्स। मैं हूं वैशाली और आप सभी से इस गाने के बाद जुड़ूंगी लेकर के उस घंटे के मुख्य समाचार।

0: आपके दिल की हर ख्वाहिश पूरी करने वाली फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम, सुरक्षित बेस्ट इंटरेस्ट रेट और FD के ढेर सारे विकल्प।
1: इंटरेस्ट रेट सर्वसाधारण ग्राहक 7.05%, सीनियर सिटीजन 7.30%, मंथली और क्वार्टरली इंटरेस्ट ऑप्शंस के साथ 16 महीने, शर्तें लागू।
0: कॉस्मॉस कोऑपरेटिव बैंक, एनरिचिंग लाइफ।

0: स्वानी एफएम रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज म्यूजिकली योर्स।
1: 11:42 हो चुके हैं और आइए इस घंटे के मुख्य समाचारों पर एक नजर डालें। तेल विपणन कंपनियों ने 19 किलोग्राम के व्यावसायिक एलपीजी सिलेंडर के मूल्य में 183.50 रुपए की कमी की है। भारतीय तेल निगम लिमिटेड के अनुसार नई दरें आज से लागू हो गई हैं। इस कटौती के बाद अब 19 किलोग्राम का व्यावसायिक एलपीजी सिलेंडर दिल्ली में 2,930 रुपए में मिलेगा। इस फैसले से रेस्टोरेंट्स,

ढाबा, होटल और अन्य खान पान व्यवसायों को लाभ होगा। केंद्र सरकार ने विकसित भारत जी राम जी अधिनियम के तहत संशोधित पारिश्रमिक दरें अधिसूचित कर दी हैं। ये दरें आज से लागू हो गई हैं। राष्ट्रीय औसत पारिश्रमिक मनरेगा के 298.80 रुपए से बढ़ाकर वीबीजी रामजी के तहत 327.40 रुपए प्रतिदिन कर दिया गया है। इस प्रकार मजदूरी दर में 10% से अधिक की औसत वृद्धि हुई है। मुख्य समाचारों में आगे, थल सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ ने कहा है कि बदलते सुरक्षा माहौल से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए सेना के आधुनिकीकरण को तेजी से आगे बढ़ाया जाएगा। 31वें थल सेना प्रमुख का पदभार ग्रहण करने के बाद जनरल सेठ आज मीडिया से बात कर रहे थे। मुख्य समाचारों के अंत में, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने डॉक्टर दिवस के अवसर पर देशभर के डॉक्टरों को शुभकामनाएं दी हैं। ये दिवस हर वर्ष 1 जुलाई को डॉक्टर बिधान चंद्र रॉय की जयंती और पुण्यतिथि की स्मृति में मनाया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तथा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी चार्टर्ड अकाउंटेंट दिवस पर सनदी लेखाकारों को तथा डॉक्टर दिवस पर डॉक्टरों को शुभकामनाएं दी। इसी के साथ इस घंटे के मुख्य समाचार समाप्त होते हैं। म्यूजिक कैफे के लिए बने रहें 107.1 FM रेनबो पर।

आप सुन रहे हैं न्यूज ऑन AIR ऐप और FM पर आकाशवाणी मुंबई केंद्र का FM रेनबो चैनल। FM रेनबो का यह प्रसारण आप आकाशवाणी मुंबई के मीडियम वेव 1044 किलोहर्ट्ज़ के डिजिटल रिसीवर यानी DRM पर भी सुन सकते हैं।

दोस्तों म्यूजिक कैफे में आज उन गानों की बातें होंगी जो आप सभी के फेवरेट गो टू प्लेलिस्ट में होंगे ही होंगे। हम सभी का वो प्लेलिस्ट एक खास होता ही है। हम चाहे कितने ही अलग अलग गाने क्यों ना सुन ले, हमें जब भी कुछ और नहीं सूझता नहीं सुहाता हम इसी प्लेलिस्ट को सुनते हैं। तो आपके साथ होता है ऐसा या नहीं, बिल्कुल बताइए मुझे। हमारा नंबर है व्हाट्सएप मैसेज करने के लिए 8657661071 और हमारे लैंडलाइन नंबर्स हैं जहां पर आप कॉल कर सकते हैं 4515-4132 4515-4133। और बस आप सभी से यही कहूंगी कि आज आपको सुनवाएंगे वो गाने जो संभवतः आपकी इसी फेवरेट गो टू प्लेलिस्ट का हिस्सा कभी ना कभी तो रहे होंगे। तो बने रहे, सुनते रहे 107.1 FM रेनबो, म्यूजिकली योर्स।

0: यार मुझे कुछ जल्दी भेजना है, कोई सुपर फास्ट ऑप्शन है क्या?
1: अरे बिल्कुल, इंडिया पोस्ट लाया है 24 स्पीड पोस्ट, मतलब अगली ही तारीख तक तेज डिलीवरी।
0: ओहो, यानी जरूरी डॉक्यूमेंट हो, पार्सल हो, सब कुछ तुरंत पहुंच जाएगा।
1: हाँ भाई, ट्रैकिंग भी रियल टाइम और रेट भी पॉकेट फ्रेंडली, और सबसे जरूरी OTP आधारित सुरक्षित डिलीवरी। बस भरोसा रखो इंडिया पोस्ट पर।
2: अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से संपर्क करें या विजिट करें indiapost.gov.in।
3: अपने व्यापार की प्रगति के लिए और विस्तार के लिए कॉस्मो उद्योग लोन
4: 3 करोड़ तक की आर्थिक सहायता, लघु एवं मध्यम व्यापारियों के लिए कैश क्रेडिट के रूप में लोन उपलब्ध।
3: ये योजना सिर्फ नए ग्राहकों के लिए, इंटरेस्ट रेट सिर्फ 8.50% से शुरू, शर्तें लागू। आज ही संपर्क करें
4: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक, एनरिचिंग लाइफ।

0: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मुंबई का 107.1 FM रेनबो और बातें हम कर रहे हैं म्यूजिक कैफे में उस फेवरेट गो टू लिस्ट की जो गानों की होती है। अक्सर हम जब और कुछ नहीं सुनना चाहते, जब कोई मन नहीं करता, तब ये जो हमारा फेवरेट प्लेलिस्ट होता है ये होता ही होता है। हम चाहे जैसा भी महसूस कर रहे हो, अपने बहुत ही पसंदीदा गाने सुनकर मज़ा आता है और ये वक्त वक्त पर बदलता तो ज़रूर है। दोस्तों, हर गाने के पीछे एक कहानी छुपी होती है, कोई खास चेहरा छुपा होता है, कोई भूला बिसरा लम्हा या वो शाम जो कभी खत्म ही नहीं हुई वो भी होता है। ऐसी शामें दोस्तों के साथ हम बिताएं या अपने किसी खास व्यक्ति के साथ जो हमारे दिल के बहुत करीब होता है, तो ऐसी कोई भी बातें हो, बस गाने और ये बातें, यादें सारे ही एक दूसरे के साथ किस तरह से जुड़े हुए हैं, बिल्कुल उस तरह कि जैसे कि एक माला होती है ना, जिसमें अलग अलग किस्म के मोती रत्न पिरोए जाते हैं एकदम अलग अलग एक दूसरे से, लेकिन फिर भी साथ में और खूबसूरत। तो चलिए उन्हीं यादों के नाम ये गाने करते हैं। ये गो टू लिस्ट सिर्फ गानों का कलेक्शन नहीं है, बल्कि हमारे दिल का वो कोना है जहाँ हम वो सब महसूस कर पाते हैं जो दुनिया के सामने कह नहीं पाते। जब शब्द कम पड़ जाते हैं तब यही सुर हमारे जज्बातों को आवाज देते हैं। फिर भाई, जब प्यार की बातें हो, छेड़खानी हो, एक दूसरे से कहना हो कि यार मत जाओ, अब रुक ही जाओ, और बाकी तमाम एहसास कुछ मस्ती भरे और कुछ बिल्कुल बेबाक, बने रहे, सुनते रहे 107.1 FM रेनबो, म्यूजिकली योर्स।
1: अच्छा, तो हम चलते हैं।

आप सुन रहे हैं 107.1 FM रेनबो म्यूजिक कैफे। इस शो का आखिरी गाना अभी आप सुनेंगे, क्योंकि दोस्तों ठीक 12:30 बजे आप सुन सकेंगे प्रायोजित कार्यक्रम NCERT उमंग। तो दोस्तों बस जाते जाते यही कहूंगी कि ये गाने जो हैं ये वक्त के साथ पुराने जरूर हुए हैं, लेकिन इनका जादू आज भी बरकरार है। हम चाहे जिंदगी के किसी भी मोड़ पर हों, ये प्लेलिस्ट हमें खींच कर वहीं ले जाते हैं जहां पर हमारा दिल सबसे ज्यादा महफूज और खुश महसूस करता है। तो चलिए आज इन तरानों को सुनने के बाद जो है अपने दिल से इन्हें आवाज दीजिए, इन्हें बुलाइए, इन्हें पुकारिए और अपने दिलों में फिर से इन्हें बसा लीजिए।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मुंबई केंद्र का 107.1 मेगाहर्ट्ज पर एफएम रेनबो। अभी आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम एनसीईआरटी उमंग।

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूँ विमलेश। नए महीने जुलाई की बहुत बहुत शुभकामनाएं।
1: और मैं हूँ अजीत। स्वागत है आप सबका कार्यक्रम उमंग में। आइए शुरुआत करते हैं एक सुविचार के साथ, जिसे हमें भेजा है आदित्य जंघेल और अंजलि जंघेल जी ने। लिखते हैं,
2: सफलता की चाबी कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प में है।
1: धन्यवाद आपके इतने सुंदर संदेश के लिए। और आइए

0: सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है गांव गणेश धाम परसुली पोस्ट खेरथा बाजार जिला बालोद छत्तीसगढ़ से। जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलव दास, जय दास, देवेश दास और धनवंतीन बाई जी का लिखते हैं, जय जोहार बंदगी विमलेश मैडम जी, अजीत साहेब जी, जय हिंद जी। आगे लिखते हैं,
1: उमंग टीम को बधाई जी। उमंग कार्यक्रम में 3 जून 2026 को पर्यावरण नेत्री गौरा देवी के पर्यावरण के प्रति लगाव वाली कहानी ने दिल छू लिया। हमें बहुत प्रेरणा और सीख मिली। आपने बहुत प्रेरणादायक और रियल स्टोरी सुनाई। धन्यवाद साहेब।
0: आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद इतने अच्छे संदेश के लिए। अगला संदेश हमें मिला है डोंडी लोहारा बालोद छत्तीसगढ़ से अजय देवता मुरिया, तुषार देवता मुरिया, डॉली बेबी, पूजा, पुष्कर, लेहान, जिज्ञासा, विराट, तेजस्वी और गौरव तामुरिया जी का।
1: इंदिरा चौक दिल्ली से अजीम वकार, माहिरा अजीम और नीलिमा अजीम।
0: और पुणे से सुयोग बटवे।
1: धन्यवाद आप सबका संदेशों के लिए।
0: स्वागत है एक बार फिर से आप सबका हमारी आपकी सबकी जानी पहचानी श्रृंखला ये भी जानिए कि अगली कड़ी में।
1: जैसा कि आप जानते हैं, इस सप्ताह हम चर्चा कर रहे हैं विभिन्न खनिज पदार्थों की, और इस क्रम में हमने कल चर्चा की थी कोयले की, जिसे जीवाश्म ईंधन भी कहते हैं। तो अजीत जी, आज की चर्चा का विषय तो बताइए, किस खनिज की हम चर्चा करने जा रहे हैं? श्रोताओं की उत्सुकता भी बढ़ती जा रही है।
0: उत्सुकता तो बढ़ेगी ही, क्योंकि हमारा कार्यक्रम होता ही है मजेदार और जानकारियों से भरपूर। पता है, कुछ श्रोता तो रेडियो सुनते समय कागज कलम लेकर बैठते हैं और कुछ तो पूरा कार्यक्रम भी रिकॉर्ड कर लेते हैं ताकि कोई जानकारी न छूट जाए।
1: हम सभी सुधीर श्रोताओं को धन्यवाद देते हैं। तो क्या रहेगा आज हमारी चर्चा का विषय?
0: चलिए मैं कुछ हिंट देता हूँ, श्रोताओं जरा अंदाजा लगाइए। हिंट है, ये बहुत ही लोकप्रिय धातु है
1: जी,
0: मूल्यवान भी है। रंग इसका सुनहरा पीला है, सभी इसे बहुत चाहते हैं।
1: अजीत जी, वैसे तो और भी कई धातुएं मूल्यवान हैं, लेकिन यदि हिंट है कि ये पीले रंग का है और बहुत लोकप्रिय है तो बात स्पष्ट हो गई है। कहीं आप गोल्ड या सोने की बात तो नहीं कर रहे हैं?
0: बिल्कुल सही है उत्तर आपका। जी हाँ, मैं सोने या गोल्ड की बात कर रहा हूँ। वैसे इसमें कुछ धातुएं मिला दी जाएं तो इसका रंग बदल भी सकता है। सोना पृथ्वी के बहुमूल्य खनिजों में से एक गिना जाता है
1: जी।
0: तो विमलेश जी, अब जानते हैं कि सोना बनता कैसे है?
1: अजीत जी, बेशक ये पृथ्वी के मूल्यवान खनिजों में से एक है, लेकिन एक बेहद रोचक और आश्चर्यजनक बात बता दूं कि कोयला तो पृथ्वी पर बना, लेकिन सोना पृथ्वी पर बना ही नहीं।
0: कोयला तो पृथ्वी पर बना, लेकिन सोना पृथ्वी पर बना ही नहीं, ये क्या बात हुई?
1: यही तो खास बात है अजीत जी। सोने की उत्पत्ति की कहानी धरती से नहीं बल्कि अंतरिक्ष में तारों की भीषण टक्कर और विस्फोट से हुई है। सोने की उत्पत्ति अरबों साल पहले सुपरनोवा यानी विशाल तारे के फटने और न्यूट्रॉन तारों की टक्कर से हुई थी। वैज्ञानिकों के अनुसार अंतरिक्ष से विशाल तारों और उल्कापिंडों की टक्कर के कारण उत्पन्न धूल से सोना पृथ्वी पर पहुंचा है।
0: तो ये बात है, शायद इसीलिए सोने और चांदी को स्टार डस्ट भी कहते हैं
1: जी।
0: जब ब्रह्मांड में कोई विशाल तारा या सुपरनोवा अपना जीवन चक्र पूरा करता है ना, तो भयंकर विस्फोट के साथ फट जाता है, और इस प्रक्रिया में अत्यधिक उच्च तापमान और दबाव पैदा होता है।
1: जब कोई तारा फटता है और दबाव और गर्मी इतनी अधिक हो जाती है कि हल्के तत्वों के परमाणु आपस में जुड़कर भारी परमाणु बनाने लगते हैं, इसमें एक नया तत्व बनता है जिसे हम सोना कहते हैं।
0: लेकिन विमलेश जी, एक प्रश्न मेरे मन में आता है, अब वो ये है कि यदि सोना अंतरिक्ष में पैदा हुआ या उत्पन्न हुआ तो वो पृथ्वी तक पहुंचा कैसे?
1: ये जानना भी बहुत रोचक है। सोना पृथ्वी पर अंतरिक्ष से मुख्य रूप से तारों के टूटने और उल्कापिंडों की भारी बौछार मीट्रोइड बॉम्बार्डमेंट के जरिए पहुंचा है।
0: इसी बात को चलिए थोड़ा विस्तार और देते हैं। लगभग 4 अरब साल पहले अंतरिक्ष से सोने और अन्य कीमती धातुओं से भरे लाखों विशाल उल्कापिंड पृथ्वी से टकराए। इस भीषण बौछार के कारण उल्कापिंडों में मौजूद सोना पृथ्वी की ऊपरी परत में बिखर गया। आज हम जो भी सोना खदानों से निकालते हैं वह इसी अंतरिक्षीय बारिश की देन है।
1: जी जी जी, सोना पृथ्वी की ऊपरी परत पर बिखर गया, लेकिन धीरे धीरे उस पर भी मिट्टी और चट्टानों की परतें जमने लगीं और सोना पृथ्वी की गहराइयों में चला गया। उसी सोने को अब हम खदानों से खोद कर निकालते हैं। अब सोने को ठोस रूप देने के लिए उसमें कई धातुएं भी मिलाई जाती हैं।
0: जी, सच्चाई ये है कि पृथ्वी पर पाया जाने वाला सोना मानव सभ्यता के प्रारंभ होने से भी अरबों वर्ष पहले बन चुका था।
1: अजीत जी, सचमुच बड़ी अद्भुत कहानी है ना सोने की। एक और रोचक बात साझा करना चाहती हूँ। पता है श्रोताओं, सोने को किसी भी रासायनिक विधि द्वारा पृथ्वी पर नहीं बनाया जा सकता। रसायन शास्त्रियों ने, जिन्हें एल्केमिस्ट कहा जाता है, शताब्दियों तक लोहे, तांबे और पारे

0: जैसी सस्ती धातुओं को सोने में बदलने की कोशिश की थी, लेकिन वे हमेशा असफल रहे, क्योंकि रासायनिक रूप से किसी धातु को सोने में बदलना असंभव है। मान्यता ये है कि प्राचीन काल में भारत में एक पत्थर पाया जाता था जिसे पारस पत्थर कहते थे। इसके स्पर्श मात्र से लोहा सोने में बदल जाता था।
1: जी, लेकिन अब आधुनिक विज्ञान ने इतनी उन्नति कर ली है कि आज के समय में परमाणु रिएक्टर के जरिए वैज्ञानिक कुछ धातुओं से सोना बना सकते हैं, लेकिन इस वैज्ञानिक प्रक्रिया में इतनी अधिक ऊर्जा और पैसा खर्च होता है कि 100 रुपए का सोना बनाने में लाखों रुपए लग सकते हैं।
0: एक बात और, शुद्ध सोना बहुत नरम होता है, इसीलिए उसे आकार देने के लिए उसमें तांबा, चांदी, जस्ता और निकेल जैसी धातुएं भी मिलाई जाती हैं। लेकिन एक बात तो है,
1: और वो ये है श्रोताओं कि जब आप सोना या स्वर्ण आभूषण देखते हैं तो याद रखिए, ये मूल रूप से पृथ्वी की वस्तु नहीं लेकिन अरबों वर्ष पहले हुई ब्रह्मांडीय घटनाओं का परिणाम है।
0: जी,
1: इसीलिए ये बहुत कीमती मानी जाती है। दूसरे शब्दों में,
0: आपके हाथ के सोने की अंगूठी कभी किसी तारे के फटने या किसी महाविस्फोट का हिस्सा रही होगी।
1: जी, तो श्रोताओं ये थी जानकारी अंतरिक्ष की मूल्यवान वस्तु सोने की। अब आज का प्रश्न, आज की ही जानकारी से प्रश्न है, सोने को स्टार डस्ट क्यों कहते हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
0: सोने को स्टार डस्ट क्यों कहते हैं?
1: आप अपना उत्तर हमें हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर भेज सकते हैं और हमारे ईमेल पर भी। हमारे ईमेल का पता है audio@cieet.nic.in। और हाँ,
0: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप हमें फॉलो करना ना भूलिए। और अब बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की,
1: तो सुनते हैं आज का पहला कार्यक्रम, अरावली की कहानी।
0: ये कार्यक्रम कक्षा 7 की सामाजिक अध्ययन की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित है, जिसमें अरावली पर्वत श्रृंखला की रोचक जानकारी दी गई है और बताया गया है कि पर्यावरण संरक्षण में इस पर्वतमाला की क्या भूमिका है।
1: अरावली की कहानी।
2: नमस्कार दोस्तों, रेडियो श्रृंखला पर्वत भी बोलते हैं मैं आप सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। मैं हूं सचिन और मेरे साथ हैं कुछ नन्हे मुन्ने साथी, यानी रिद्धि, रिदित, सोहम, नव्या और मनन, जो आज बहुत ही खुश हैं क्योंकि उन्हें जानी मानी भूगर्भ शास्त्री डॉक्टर सुचिता ने आज अपने रेडियो शो में बुलाया है। तो आइए चलते हैं सीधे रेडियो प्रसारण केंद्र में, जहाँ शुरू होने वाला है हमारा रेडियो शो पर्वत भी बोलते हैं। तो बच्चों, डॉक्टर सुचिता के साथ साथ आप सबका भी हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है।
3: धन्यवाद सर।
2: तो करते हैं शुरुआत, डॉक्टर सुचिता, हम आज बात करने जा रहे हैं पर्वतों की, तो सबसे पहला सवाल तो यही उठता है कि पर्वत आखिर है क्या, यानी हम उन्हें परिभाषित कैसे करें?
4: वाह, बहुत अच्छा सवाल। देखिए, पर्वत वे स्थल रूप हैं जो आसपास की भूमि से कुछ अधिक ऊंचे होते हैं। उन्हें खड़ी ढलान यानी चढ़ाई और संकरे शिखरों यानी चोटियों से पहचाना जा सकता है। कुछ पर्वत अपनी अधिक ऊंचाई के कारण हिम से ढके होते हैं। समझ में आया बच्चों?
3: यस मैम।
4: आह, क्या बात है
5: मैम।
4: हाँ बेटी,
5: आपने कहा कि पर्वत वे हैं जो आसपास की भूमि से कुछ अधिक ऊंचे होते हैं।
4: बिल्कुल कहा।
5: हमारे गांव में भी कुछ ऐसे पथरीले स्थान हैं जो भूमि से थोड़े ऊंचे होते हैं, क्या उन्हें भी पर्वत कहेंगे?
4: नहीं रिद्धि, उन्हें पर्वत नहीं कहेंगे। तुम्हारे प्रश्न का उत्तर ये है कि कम ऊंचाई वाले ऊंचे ऐसे स्थान जहाँ कम खड़ी ढलाने और गोल आकार की चोटियाँ होती है, उन्हें पता है क्या बोलते हैं? पहाड़ी कहते हैं।
5: जी, पहाड़ी।
2: अरे वाह, अच्छा। लेकिन सुचिता जी, हमारे श्रोता बड़ी उत्सुकता के साथ प्रतीक्षा कर रहे हैं ये जानने की कि आज हम भला किस पर्वत श्रृंखला के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं।
4: जी सचिन जी, आज हम चर्चा करेंगे अरावली पर्वत श्रृंखला के बारे में। बच्चों, जानना है ना इसके बारे में?
3: यस मैम।
4: देखो, ऐसा माना जाता है कि अरावली पर्वत श्रृंखला भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है।
3: अच्छा।
4: पता है बच्चों, ये उत्तर पश्चिम भारत में स्थित है और देश की जो भौगोलिक संरचना है ना, इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है ये।
5: अच्छा।

0: बच्चों, यदि अरावली पर्वत श्रृंखला की बनावट को ध्यान से देखें, तो इसमें मध्यम दर्जे की बहुत सी ऊंची ऊंची चोटियां हैं, जो ऊपर से देखने पर वो आरी की तरह दिखती हैं।
1: अच्छा, मैंने भी देखा है।
2: आरा और वली यानी अरावली। अरे वाह सुचिता जी, ये तो बड़ी रोचक बात बताई है आपने।
3: मैम, अरावली के बारे में कुछ और बताइए ना।

0: और फिर दिल्ली।
1: बहुत अच्छे, तो एक बार जोरदार तालियां सबके लिए। ये हुई ना बात,
2: अब तुम्हें इसे हमेशा याद रखना है, ठीक है?
3: जी मैम,
4: हमेशा याद रखेंगे।
1: तो सुचिता जी, अब हमें ये भी तो बताइए कि गुजरात राज्य में अरावली पर्वत श्रृंखला आखिर शुरू कहाँ से होती है, क्योंकि हम देखें तो गुजरात राज्य तो खासा बड़ा है।
2: जी सचिन, बिल्कुल सही कहा आपने। अरावली पर्वत श्रृंखला गुजरात राज्य के बनासकांठा जिले में अंबाजी नामक स्थान से शुरू होती है। एक बात और, माना जाता है कि ये पहले संभवतः हिमालय से भी ऊंची रही होगी, लेकिन अत्यधिक अपरदन के कारण धीरे धीरे इसकी ऊंचाई कम होती चली गई।
4: अपरदन? ये अपरदन क्या होता है?
2: वाह मनन, अपरदन यानी मिट्टी का कटाव। अंग्रेजी में इसे पता है क्या बोलते हैं? सॉइल इरोजन।
4: सॉइल इरोजन,
2: बिल्कुल ठीक। अरावली पर्वत श्रृंखला की प्रमुख चोटियां हैं गुरु शिखर, जो राजस्थान के माउंट आबू में स्थित है। सेर और अचलगढ़ भी इसकी प्रमुख चोटियां हैं, जो राजस्थान में ही है।
1: सुचिता जी, अब हम ये भी जानना चाहेंगे कि आखिर अरावली पर्वत श्रृंखला का हमारे यहाँ जलवायु और पर्यावरण पर भला क्या असर पड़ता है?
2: सचिन जी, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। बच्चों जानना चाहोगे ना?
4: जी मैम। यस मैम।
2: अब अरावली पर्वत श्रृंखला राजस्थान के थार मरुभूमि को पूर्व की ओर फैलने से रोकती है, यानी यदि अरावली न हो तो राजस्थान के थार का रेगिस्तान दिल्ली और यहाँ तक कि गंगा के मैदानों तक भी फैल सकता है।
4: यानी ये हमारी पहरेदार हुई।
2: हाँ रिद्धि, बिल्कुल सही है। अरावली श्रृंखला उत्तर भारत को रेगिस्तान बनने से रोकती है। इतना ही नहीं, ये अपने क्षेत्र में भूजल का स्तर भी बनाए रखती है।
4: मैम, जैसा कि हम जानते हैं कि पर्वतों से नदियाँ भी निकलती हैं, क्या अरावली से भी नदियाँ निकलती हैं?
2: सोहम, अरावली पर्वत श्रृंखला से निकलने वाली जो प्रमुख नदियाँ हैं, उनके नाम इस प्रकार हैं: बनास, साबरमती, लूनी और माही। और हाँ, अरावली पर्वत श्रृंखला बहुत से वन्य जीवों की शरण स्थली है। मैं बताती हूँ, जैसे तेंदुआ, सियार, लोमड़ी, नीलगाय, सांभर, चीतल और जंगली सुअर इत्यादि।
1: अरे वाह सुचिता जी, देखिए अब ये तो आपने हमें बताया नदियों के बारे में और आसपास मिलने वाले जीव जंतुओं यानी पशुओं के बारे में, लेकिन अगर पक्षियों की बात करें तो?
2: सचिन जी, पक्षियों में यहाँ मोर, गिद्ध, सारस, चील, तोता, मैना इत्यादि बहुत अधिक पाए जाते हैं। एक और बात, यहाँ बहुत सारे खनिज पदार्थ भी मिलते हैं, जिनमें मुख्य हैं तांबा, जस्ता, सीसा और लोहा। लेकिन एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है।
1: चिंता का विषय है? भला वो क्या?
2: सचिन जी, अब ये पर्वतमाला पर्यावरण के संकट से गुजर रही है।
1: ओह,
2: अब जैसे अच्छा। जंगलों का कटना, पानी के स्रोतों का सूखना
1: जी।
2: और इनके कारण वन्य जीवों का धीरे धीरे विलुप्त होना, इसीलिए अरावली को बचाए रखना बहुत आवश्यक है। तो बच्चों, बचाओगे ना अरावली को?
4: जी मैम।
1: भाई वाह, तो बच्चों कैसी लगी आपको ये सारी जानकारी?
4: बहुत अच्छी लगी।
1: तो साथियों, अब हमारे रेडियो शो पर्वतों की कहानी का आज का ये अंक होता है यहीं समाप्त। तो एक बार फिर से जोरदार तालियां सबके लिए। डॉक्टर सुचिता, सोहम, रिदित, रिद्धि, नव्या और मनन, आप सभी का हमारी श्रोताओं की ओर से भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे स्टूडियो में आए। तो दोस्तों, इसी तरह से चलता रहेगा हमारा ये रेडियो शो पर्वत भी बोलते हैं। तो अब हम मिलेंगे अगले एपिसोड में। नमस्कार, धन्यवाद।
4: धन्यवाद सर।
5: धन्यवाद मैम।
6: साथियों, अभी आपने सुना ये कार्यक्रम। क्या कार्यक्रम सुनते समय आपके मन में ये प्रश्न आया कि इस पर्वत श्रृंखला का नाम अरावली क्यों पड़ा? तो चलिए हम आपको बता देते हैं। अरावली शब्द की व्युत्पत्ति संस्कृत के दो शब्दों से मिलकर हुई है, अरा और अवली। अरा का अर्थ है पर्वत की चोटी और अवली का अर्थ है कतार या श्रृंखला। इन दो शब्दों से मिलकर बना शब्द अरावली। तो साथियों, कुल मिलाकर अरावली शब्द का अर्थ है चोटियों की कतार या पर्वत शिखर।

0: शहरों की श्रृंखला। ये नाम अरावली पर्वतमाला की भौगोलिक बनावट को दर्शाता है, जो लंबी चोटियों वाली पुरानी पर्वत श्रृंखला है।
1: अब आपके लिए कुछ सोचने और करने को, जरा पता लगाइए कि भारत में कितनी पर्वत श्रृंखलाएं हैं और उनसे भला कौन कौन सी प्रसिद्ध नदियां निकलती हैं और वो कहां जाकर सागर में मिलती हैं, और फिर उन जगहों को भारत के मानचित्र पर अलग अलग रंगों से चिन्हित कीजिए और उनके बारे में संक्षेप में लिखिए।
0: अभी आपने सुना कार्यक्रम अरावली की कहानी, और आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम। शीर्षक है बांगुई।
2: ये कार्यक्रम अफ्रीका की एक लोक कथा पर आधारित है, जिसके द्वारा संदेश दिया गया है कि पर्यावरण को बचाना हम सबकी जिम्मेदारी है। कार्यक्रम एक सुंदर नाटक द्वारा प्रस्तुत किया गया है।

0: अफ्रीका महाद्वीप का नाम तो आपने सुना होगा। उसके पश्चिमी हिस्से में एक छोटा सा देश है घाना। विश्व के सबसे बड़े रेगिस्तान सहारा के निकट होने के बावजूद घाना में सूखे की नहीं बाढ़ की समस्या प्रबल रहती है। कई छोटी बड़ी नदियां इस देश से होकर बहती हैं और इसे हरा भरा बनाए रखती हैं, लेकिन अक्सर इन नदियों में बाढ़ आ जाती है और गांव के गांव डूब जाते हैं। आज सुनते हैं व्हाइट वोल्टा नदी के किनारे बसे एक ऐसे ही गांव के आदिवासियों की कहानी।
1: नमस्कार भाई।
2: नमस्कार भाई। नमस्कार।
1: इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रहे हो? अभी तो खेत में काम करने का समय नहीं हुआ।
2: अरे आज खेतों में नहीं, जंगल में काम करने जा रहा हूँ। ये देखो कुल्हाड़ी।
1: अरे ये क्या, हल वाले हाथ में कुल्हाड़ी, लकड़ी काटने जा रहे हो? क्या नया घर बना रहे हो?
2: हाँ भैया, नया घर तो बन रहा है, लेकिन मेरा नहीं। हुँ? अपने मुखिया बांगुई है ना, वही अपना नया घर बनवा रहे हैं।
1: मुखिया बांगुई का नया घर? लेकिन अभी कुछ ही बरस पहले तो उन्होंने नया घर बनवाया था।
2: तो क्या हुआ, उन्हें अपना वो नया घर अब पुराना और छोटा लगने लगा है। दरअसल जंगल की लकड़ी बेच बेच कर रईस हो गए हैं ना, सो अपनी रईसी की शान दिखाने के लिए फिर नया मकान बनवा रहे हैं।
1: अच्छा तो ये बात है, मुखिया बांगुई ने ही पैसे के लालच में शहर के लोगों को जंगल से लकड़ी काटने की अनुमति दी है। तभी मैं कहूँ कि जंगल से आजकल दिन रात लकड़ी काटने की आवाज क्यों आती है? इस तरह तो जंगल के सारे पेड़ कट जाएंगे।
2: अरे और नहीं तो क्या, जंगल से जिस तरह से ये शहरी लोग दिन रात लकड़ी काट रहे हैं ना, देखना थोड़े दिनों में सारा जंगल साफ हो जाएगा। अरे जंगली जानवर गांव पर हमला करेंगे, नदी की धारा जंगल की रुकावट ना पाकर गांव की तरफ बढ़ने लगेगी।
1: और ये सब जानकर भी तुम कुल्हाड़ी लिए लकड़ी काटने जा रहे हो?
2: हाँ भैया, और क्या करूं, मेरे पास खेत तो है नहीं। मुखिया बानगुई के खेतों में काम करता था, लेकिन उन्हें अब खेती बाड़ी में कोई दिलचस्पी नहीं। उन्हें जंगल की कटाई से काफी पैसे मिल जाते हैं ना, बाल बच्चों का पेट पालने के लिए मैंने भी लकड़ी काटना शुरू कर दिया है भैया। फिर शहर के लोग लकड़ी काटने की मजूरी भी अच्छी देते हैं।
1: पर तुम तो मुखिया के मकान के लिए लकड़ी काटने जा रहे हो?
2: हाँ, मुखिया का ये नया मकान शहरी लोग ही बनवा रहे हैं ना, मुखिया ने उन्हें जंगल से लकड़ी काटने की आज्ञा दी है, इसलिए वो लोग उन्हें ऊंची वाली चट्टान पर एक बहुत बड़ा तिमंजिला मकान बना कर दे रहे हैं।
1: तिमंजिला मकान? वो तो बहुत ऊंचा होगा।
2: हाँ, हमारे तीन मकान एक के ऊपर एक रख दिए जाए, इतना ऊंचा होगा।
1: लेकिन ये मकान नदी के इतने नजदीक क्यों बनवा रहे हैं? अगर नदी में बाढ़ आ गई तो?
2: अरे भैया, बाढ़ आती है तो तबाही हमारे कच्चे झोंपड़ों की होती है ना, ऊंची चट्टान पर बने तिमंजिले मकान पर बाढ़ का क्या असर होगा भला? फिर हमें से क्या भैया, हमें तो अपनी मजूरी से मतलब है। अच्छा चलता हूँ, बड़ी देर हो गई।
1: अच्छा भाई, मैं भी चलता हूँ।

0: ए, कहां बड़े चले आ रहे हो? अरे जानते नहीं ये मुखिया बानगुई का मकान है?
1: जानते हैं भाई, जानते हैं, तभी तो अपनी फरियाद लेकर यहाँ आए हैं।
0: मैं कहता हूँ भाग जाओ यहाँ से। इस समय कोई फरियाद वरियाद नहीं सुनी जाएगी। अभी मुखिया जी बांसुरी बजा रहे हैं, और जब वो बांसुरी बजा रहे हो तब उन्हें तंग करने का हुक्म नहीं है।
1: लेकिन अगर मुखिया जी हमारी फरियाद नहीं सुनेंगे तो हम कहाँ जाएंगे भैया?
0: अच्छा भाई बोलो, क्या बात है, बोलो।
1: मैं बोलूं? अच्छा अच्छा, देखो भैया, तुम भी तो हमी में से एक हो, गांव की हालत तुमसे छुपी नहीं है। मुखिया जी के सारे खेत खाली पड़े हैं, उनमें काम करने वाले मजदूर बेकार हो गए हैं। जिनके पास थोड़ी बहुत अपनी जमीन थी, जहाँ खेती करके थोड़ा अनाज हो जाता था, उन सारे खेतों में बाढ़ का पानी भर गया है भैया। बारिश के मौसम में लकड़ी की कटाई का काम भी बंद हो गया है। हमारे बच्चे भूखे मर रहे हैं भैया, इसीलिए हम मुखिया जी के पास आए हैं।
0: अरे तो इसमें मुखिया जी क्या कर सकते हैं?
2: सुना है मुखिया जी के मकान के एक पूरे खंड में अनाज भरा है। अगर इस संकट के समय हम गरीबों को भी एक एक मुट्ठी अनाज मिल जाता तो।
0: अच्छा, और मुखिया जी क्या फाके करे? मैं कहता हूँ भाग जाओ यहाँ से। बढ़िया अनाज मांगने वाले, करो।
3: एक बार की बात है, उस इलाके में मूसलाधार वर्षा हुई और लगभग 4 दिनों तक चलती रही।
0: मुखिया जी,
4: बदतमीज, ऐसे क्या चिल्ला रहे हो?
5: माफ कीजिएगा, लेकिन बात ही कुछ ऐसी है कि।
4: ओहो, आप कुछ बोलो भी, क्या हुआ है?
5: गांव में चारों तरफ पानी भर गया है।
4: तो भरने दो।
5: गांव के सभी लोग, औरतें, बच्चे और मर्द गांव छोड़कर जा रहे हैं।
4: अरे तो जाने दो।
5: लेकिन मुखिया जी, इस मकान के चारों तरफ भी पानी पानी है, अगर हम निकलकर जाना भी चाहें तो भी नहीं जा सकते।
4: अरे बेवकूफ, हम यहाँ से जाएंगे ही क्यों? इस ऊंची चट्टान पर बने 3 मंजिले मकान में पानी आएगा कैसे? हमारे पास यहाँ क्या कमी है? अरे खाना है, पानी है, और ये हमारी बांसुरी भी है।
5: लेकिन मुखिया जी,
4: वो तुमसे कितनी बार कहा है कि जब हम बांसुरी बजा रहे हो तो हमें परेशान मत किया करो।
5: जी मगर
4: जाओ, चले जाओ यहाँ से।
6: मुखिया जी,
4: अब क्या है?
6: नीचे वाली मंजिल में बहुत पानी आ गया है।
4: तो यहाँ खड़े खड़े क्या कर रहे हो? जाओ, सब चीजें दूसरी मंजिल पर ले जाओ, और हम तीसरी मंजिल पर जा रहे हैं।
5: मुखिया जी,
4: चैन नहीं लेने देंगे, अब क्या है?
5: जी वो दूसरी मंजिल पर भी पानी
4: चढ़ रहा है। अरे तो तीसरी मंजिल किस लिए है? देखो सब सामान ऊपर ले जाओ, हम छत पर जा रहे हैं।
2: माफ कीजिएगा मुखिया जी, अब हम यहाँ नहीं रुक सकते। बूढ़ा कालू कह रहा है कि ये साधारण बाढ़ नहीं है, बल्कि नदी ने अपनी धारा बदल दी। अब नदी इसी जगह से बहेगी, बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं रह जाएगा। हम लोगों ने लकड़ी के तख्ते जोड़ जोड़ कर एक नाव तैयार की है, हम तो जा रहे हैं, आप चाहें तो हमारे साथ चल सकते हैं।
4: नालायक, डरपोक, अरे भाग रहे हो? इस महल को छोड़कर भाग रहे हो? जाओ, चले जाओ यहाँ से, जाओ तुम लोग, मैं यही रहूंगा।
2: जैसी आपकी मर्जी।
4: अरे ये तो सचमुच चला गया, कहीं वो बूढ़ा कालू ठीक ही तो नहीं कह रहा? क्या नदी ने सचमुच अपनी धारा बदल दी है? हाँ, छत से देखता हूं मैं। ये कैसा भयानक दृश्य है! दूर दूर तक जहां नजर जाती है पानी ही पानी, कहीं कोई नहीं, ना कोई आदमी, ना जानवर, ना खेत, ना जंगल। अगर मेरे इस मकान की तीसरी मंजिल में पानी में डूब गई तो ये क्या? अरे ये क्या हो रहा है? नहीं, ये इतना मजबूत मकान

एकदम मजबूत मकान में गिर रहा। हे भगवान, हे भगवान, मैं क्या करूं? अरे अरे, कहां जाऊं मैं? मैं ये पानी में डूब रहा हूं मैं। अरे मैं अपनी जान कैसे बचाऊं? अरे कोई है, कोई है? अरे बचाओ, बचाओ मुझे! अरे मैं डूब रहा हूं, डूब रहा हूं मैं। नहीं, ये क्या? ये लगता है कोई पेड़ अब भी अपनी मजबूत जड़ें धरती पर धंसाए बैठा है। अगर किसी तरह मैं उसे पकड़ लूं तो मेरी जान बच सकती है। हाँ, मैं उसे पकड़ूंगा, मैं उसे पकड़ूंगा, किसी तरह मैं उसे पकड़ लूं। लेकिन ये पानी तो मुझे दूसरी तरफ बाहर ले जा रहा है। मैं कोशिश करूंगा, उस पेड़ तक जाने की कोशिश करूंगा मैं। वो पेड़, आखिर पहुंच ही गया। यहां तो इस तरह के कितने ही पेड़ थे जो मैंने कटवा दिए, लेकिन ना जाने यही एक इकलौता पेड़ मुझे शरण देने के लिए कैसे बच गया। शायद मेरी आंखें खोलने के लिए, हाँ, शायद मेरी आंखें खोलने के लिए

0: बांगुई। अभी आपने सुना ये कार्यक्रम। अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार। उमंग, उमंग, उमंग, उमंग, उमंग।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मुंबई का 107.1 मेगाहर्ट्ज पर एफएम रेनबो। ठीक एक बजे आप सुनेंगे दोपहर के समाचार छत्रपति संभाजी नगर केंद्र से।

आप सुन रहे हैं न्यूज ऑन AIR ऐप और FM पर 107.1 MHz FM रेनबो आकाशवाणी मुंबई केंद्र से। FM रेनबो का यह प्रसारण आप आकाशवाणी मुंबई के मीडियम वेव 1044 किलोहर्ट्ज के डिजिटल रिसीवर यानी DRM पर भी सुन सकते हैं। दोस्तों, होंगी बातें दिल से दिल तक, बजेंगे वो गाने जो हैं आपके दिल में बसे हुए तराने, यानी हिट एंड हॉट में 107.1 FM रेनबो पर आपकी फरमाइशें हम प्ले करेंगे। और आपने जो सारी बातें साझा की है वो भी हमारे सारे तमाम श्रोताओं के संग साझा करेंगे। मैं हूं वैशाली और बस ये आखिरी घंटा है जब आपका मेरा साथ रहेगा और बातें कई सारी हैं अभी आपसे करनी। मुलाकातें जो है हमारी रेडियो पर ये चलती ही रहेंगी। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं उन सारे श्रोताओं का नाम लेना चाहती हूँ जिन्होंने हमें मैसेज किया है। तो यहाँ पर मुझे महेश भाटकर जी ने सेंटाक्रूज से मैसेज किया है, बाबा ने दादर से, अशोक पाटिल और राजेश मोरे वर्ली कोड़ीवाड़ा से मैसेज करते हैं, अजय साखरे जी इंदौर से, और जो है ओमकार काटकर भी हमें मैसेज करते हैं। इन्हें शो पसंद आ रहा है, ये हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बने हुए हैं। साथ ही महेश बोहरा जी अजमेर राजस्थान से हमसे जुड़े हैं और सुनील गायकवाड़ जी पुणे से, इन्होंने गाने की फरमाइश की है, पर मैं इसी फिल्म का दूसरा गाना इनके लिए प्ले करने वाली हूँ, तेरे कारण मेरे साजन। ये सबसे पहले प्ले करूँगी मैं, उसके बाद जो है हम बढ़ेंगे यारा सीली सीली की तरफ, जो विजेंद्र घाटोल, इन्होंने इसकी फरमाइश की है अकोला से, और उसके बाद मैं प्ले करने वाली हूं तुझे देखा तो, ये गाना, और इसकी फरमाइश की है फिरोज सिगनपुर।

या इन्होंने, और इन्होंने कहा कि इन्हें कहानी जो है खेती से जुड़ी हुई बहुत अच्छी लगी कहानियां, और कहते हैं कि नहीं ऐसा ही करना चाहिए और इसी तरह चीजें होनी चाहिए। उन्होंने लिखा है कि जहां लाखों रुपए की जॉब छोड़कर गांव में जाकर जो बंजर जमीन पर उसे उपजाऊ बनाकर स्ट्रॉबेरी वाली कहानी थी, स्ट्रॉबेरी लगाने की, ये उन्हें बहुत ही अच्छी लगी। तो इनके व्हाट्सएप वर्ल्ड म्यूजिक लवर्स ग्रुप के लिए ये डेडिकेट करना चाहते हैं एक गाना DDLJ का, तो ये बाद में प्ले होगा। बाकी हमारे और भी श्रोताओं के मैसेजेस आ चुके हैं और इनकी फरमाइशें भी मैं प्ले करूंगी। अब मुझे मैसेज आया संजय दर्शन जी का मलाड़ से, उन्होंने लिखा कि मलाड़ कांदीवली में बहुत ज्यादा बारिश हो रही है, और उन्होंने साथ ही साथ ये भी कहा है कि आज क्योंकि डॉक्टर्स डे है और CA डे है, तो सारे डॉक्टर्स जो हमें हील करते हैं, हमें ठीक करते हैं और हमारी देख रेख करते हैं, हमारे स्वास्थ्य का इतना ध्यान रखते हैं, उनको नमन, और CAs को भी शुभकामनाएं। तो बस इसी बात के साथ उन्होंने अपनी बात खत्म की और कहा कि कांदीवली मलाड़ में बहुत ज्यादा बारिश हो रही है। अब आगे बढ़ते हुए मुझे मैसेज आया है प्रकाश शिंदे जी का भी, उन्होंने बहुत सारी खास अच्छी बातें लिखी हैं, वो मैं आपसे थोड़ी देर बाद साझा करूंगी। हमें संदीप मक्कड़ जी का भी मैसेज आया है और बाकी श्रोताओं के नाम बहुत जल्द लूंगी मैं। बहरहाल आप सभी के लिए तेरे कारण मेरे साजन ये प्ले होगा, उसके बाद यारा सीली सीली और फिर तुझे देखा। तो बने रहे, सुनते रहे 107.1 FM रेनबो, म्यूजिकली योर्स।

0: सुनो ना,
1: हाँ?
0: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
1: तो रोका किसने है, हाँ?
0: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
1: मुझसे।
0: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
1: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
0: पर उससे मेरा क्या फायदा?
1: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
0: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
1: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700014242।
0: ओ 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर।

आप सुन रहे हैं 107.1 FM रेनबो, हिट एंड हॉट चल रहा है, आपकी फरमाइशें हम प्ले कर रहे हैं और साथ ही आपकी बातें भी साझा कर रहे हैं। मुझे मैसेज आया है प्रकाश शिंदे, इनका और कई सारी बातें इन्होंने लिख भेजी है। ये लिखते हैं कि आकाशवाणी FM रेनबो की लोकप्रियता बहुत अच्छी लगती है इन्हें और बाकी तमाम चीज़ें, और आगे लिखते हैं, चीर के मिट्टी को जो खुद के लिए खुशियां उगाता है, धूप हो या ठंड, जो खेतों में अपना खून जलाता है, खुद भूखा रहकर जो पूरी दुनिया का पेट भरता है, वही सच्चा मसीहा इस देश का अन्नदाता कहलाता है। और कृषि दिवस पर सभी किसान भाइयों को इन्होंने शुभकामनाएं दी है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। साथ ही साथ लिखते हैं कि आज मशहूर गायक सुदेश भोसले जी, इनका जन्मदिन है, तो सुदेश भोसले जी इनको हार्दिक शुभकामनाएं, हैप्पी बर्थडे, और लिखते हैं कि हाल ही में उनसे मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, वाह क्या बात है। और आज ही के दिन लिखते हैं 1994 को रिलीज हुआ था मोहरा, इस फिल्म का गाना सुनना चाहते हैं, तो मैं इनके लिए प्ले कर रही हूँ दिल हर कोई, ये गाना फिल्म मोहरा से। साथ ही साथ अब देखिए स्मिता पालकर, इनका भी हमें मैसेज आया है और ये जो गाना सुनना चाहते हैं वो है छम छम। तो ये दो गाने आप सुनेंगे बैक टू बैक, कोशिश रहेगी या फिर एक अभी सुन पाएंगे आप, और दूसरा गाना जो है दीपा पालकर जी का वो प्ले होगा 1:30 से 1:40 वाले समाचारों के बाद। तो आप सभी बने रहें, सुनते रहें 107.1 FM रेनबो, म्यूजिकली योर्स।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मुंबई का 107.1 एफएम रेनबो। आप हमें सुन रहे हैं न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर और एफएम पर भी, और साथ ही साथ 1044 किलोहर्ट्ज के डिजिटल रिसीवर यानी डीआरएम पर भी। और बातें आप सभी से बहुत सारी ही हो रही हैं। अच्छा लगा, बहुत दिल को सुकून लगा। हमारे कोई श्रोता हैं जो कॉल कर रहे हैं लेकिन लगातार कॉल ड्रॉप हो रहा है, इसलिए आपसे बात नहीं हो पा रही। और अभी मेरी बात हुई संजय दर्शन जी से, बहुत सारी बातें इन्होंने साझा की, जैसे कि शो सुनते रहते हैं, कहते हैं 91 से मैं सुनते आ रहा हूँ और लगातार सुनता हूँ, कहते हैं शाम का शो, ये दोपहर का शो, बीच में थोड़ा सा ब्रेक ले लेता हूँ, कहते हैं कि आकाशवाणी विविध भारती और आकाशवाणी के दोनों ही चैनल सुनते हैं, ये रेनबो भी और गोल्ड भी, तो बहुत उन्हें अच्छा लगता है। और ये जो है रेडियो जो है, कहते हैं कि बहुत खास है ये, जीवन में अगर ना हो तो सच में बहुत तकलीफ होगी। अब पंकज मोहड़ जी का मुझे कॉल भी आया और मैसेज भी आया, और आप सभी इंतज़ार करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का कि आप लिख भेजते हैं, कॉल करते हैं, पर थोड़ा सा सब्र रखा कीजिएगा क्योंकि कुछ श्रोता जो है संक्षिप्त में लिखते हैं और कुछ जो होते हैं उनके पास इतना सारा होता है लिखने के लिए, तो हमें भी समय की ज़रूरत होती है आपकी बातें साझा करने को। तो पंकज मोहड़ जी अमरावती से लिखते हैं हमें,

कि ये जो है पुराने गानों को बहुत इंजॉय करते हैं और म्यूजिक कैफे में पुराने गाने थे तो इसलिए उन्होंने बहुत और भी ज़्यादा इंजॉय किया। और ये लिखते हैं कि उन्होंने मुझे बताया भी, फ़ोन भी किया था, तब मुझे बता रहे थे कि अभी उन्होंने फसल की बुआई की, तुअर दाल की बुआई की, और कहते हैं कि 10 साल पहले तक उनके खेतों में संतरे भी उगाते थे। तो कहते हैं कि सारा जो

की जा सकती है टेक्नोलॉजी की वजह से, बाकी तमाम चीज़ों की वजह से। और साथ ही साथ इन्होंने सभी को शुभकामनाएं दिए हैं आज के दिन के, क्योंकि सीए डे है, डॉक्टर्स डे है, और साथ ही साथ कृषि दिवस हम मना रहे हैं। और सुप्रसिद्ध गायक सुदेश भोसले जी को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं, ऐसा भी लिखते हैं, आपका शुक्रिया पंकज मोहट जी। और हमें प्रमोद चिंचोलकर जी का भी मैसेज आया है, राम प्रजापति जी का वसई से आया है हमें मैसेज, अमित भगत जी का हमें मालेगांव से आया है, और दिग्दर्शन और कविता इनका मेरठ से हमें आया है मैसेज, अभिजीत गवहाणकर जी का हमें मैसेज आया है उमरखेड़ महाराष्ट्र से, पूरा परिवार बना हुआ है। शुभलक्ष्मी मस्तकर जी ने भी हमें मैसेज किया था और इन्होंने भी फरमाइश की है गाने की। मिंटू टॉमस हमें करते हैं मैसेज, और साथ ही इनके हैं पिंकी लवली आरती अरोड़ा पंजाब से हमें ये सुन रहे हैं, धन्यवाद। अब यहाँ पर ओमकार काटकर जी पंढरपुर से हमें सुन रहे हैं, अजय साखरे जी इंदौर से हमें सुन रहे हैं, यहाँ पर हमारे साथ बने हुए हैं जिला मुरादाबाद ग्राम दूल्हापुर उत्तर प्रदेश से पूरा परिवार, ये मोहम्मद फरमान सलमान इरफान इसरार और नरगिस खातून हमारे साथ बने हुए हैं। और शुभदा जी हमें मैसेज करती है, आपका धन्यवाद। यहाँ पर आगे मैं देख रही हूँ हमें नई दिल्ली से साउथ एक्सटेंशन से गुरमीत सिंह मीता खुशनुमा गीत की फरमाइश करते हैं, हरजिंदर छिंदा जी जसवीर जो है नथाना पंजाब से हमें मैसेज करते हैं, धन्यवाद। और यहाँ पर जो है राकेश माथुर जी भी हमें मैसेज कर रहे हैं, साथ ही साथ मंगेश जोशी जी रोहा रायगढ़ से हमारे साथ बने हुए हैं, प्रमोद चिंचोलकर जी ने भी बहुत सारे मैसेजेस भेजे हैं और आज के दिन की शुभकामनाएं सभी को दी है, गाने की फरमाइश भेजी है, कोशिश करेंगे आपका सॉन्ग प्ले हो। हितेंद्र दास जी भी हमें मैसेज करते हैं, धन्यवाद। और हमारे साथ बने हुए हैं आर्यन राज रोहित राज पीयूष कुमार मुजफ्फरपुर बिहार से, आगे मुझे मैसेज आ रहा है प्रदीप अनंत कृष्णन जी का भी, और लिखते हैं कि सुदेश भोसले जी से दो बार ये मिले हैं और ये जुड़े हुए हैं उनसे सोशल मीडिया पर, वाह क्या बात है, ये भी शुभकामनाएं देते हैं उन्हें जन्मदिन की। सुदेश भोसले जी को जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं टीम एफएम रेनबो मुंबई की तरफ से। और अब आगे बढ़ते हुए दोस्तों हम सुनते हैं छम छम और होठों पे बस उसके बाद चांदनी ओ मेरी चांदनी, जो है पंकज मोहड़ इनकी फरमाइश, तो सभी ये फरमाइशें प्ले होंगी, इसके बाद अगर गुंजाइश होगी तो एक और गाना प्ले होगा, बने रहे सुनते रहे 107.1 FM Rainbow, musically yours.

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मुंबई का 107.1 FM रेनबो। हिट एंड हॉट बस खत्म होने को है। एक आखिरी गाना आप सभी के लिए प्ले होगा यहाँ पर, अजय साखरे इनकी फरमाइश, हम तुम फिल्म का टाइटल ट्रैक। मैं हूँ वैशाली और आप सभी से बहुत जल्द फिर एक बार मिलूंगी, रेडियो पर होगी हमारी मुलाकात यहाँ 107.1 FM रेनबो पर आने वाली 7 तारीख को यानी 7 जुलाई को इसी समय यानी 11 से 2 बजे के बीच। दिन में बने रहें, सुनते रहें 107.1 FM रेनबो, म्यूजिकली योर्स।

0: professionalism and compassionate service to humanity.
1: On the occasion of Doctor's Day, I extend my sincere appreciation and heartfelt gratitude to the medical fraternity for its unwavering dedication, exemplary professionalism, and compassionate service to humanity. Doctors are the cornerstone of our healthcare system, tirelessly working to alleviate suffering, save lives, and uphold the highest standards of patient care. Your selfless commitment and resilience continue to inspire the nation and strengthen our collective pursuit.
0: In FIFA World Cup, Mexico defeated Ecuador 2-0 in the round of 32 clash at the Mexico City Stadium this morning to qualify for the round of 16. Raul Jimenez and Julian Q scored for Mexico. This marked Mexico's first World Cup knockout stage win in 40 years. Earlier, Kylian Mbappe further enhanced his World Cup legacy to lead France to a comfortable 3-0 win against Sweden in the round of 32. Mbappe struck twice to take his World Cup tally to 18 goals, now two clear of Miroslav Klose and only one behind Lionel Messi. Norway has also sailed to the round of 16, beating Ivory Coast 2-1 in Texas. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi says 11 years of Digital India empowered the poor and the underprivileged, making life easier for millions. Increased wages under Viksit Bharat Ji Ramji Act become effective from today. Union Minister Shivraj Singh Chauhan and Kiran Rijiju undertake aerial survey of flooded areas of Arunachal Pradesh. Newly appointed Army Chief General Dhiraj Seth stresses on modernization of army to tackle challenges of evolving security environment. Afghanistan attacks ISIS targets in Pakistan. Monsoon likely to advance to Delhi, Haryana, Chandigarh and Punjab in the next 2 days. And in FIFA World Cup, Mexico defeat Ecuador 2-0 the entire round of 16. And with that, we end the Midday News.
2: नमस्कार आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा डिजिटल इंडिया अभियान ने पिछले 11 वर्ष के दौरान गरीबों और वंचितों को सशक्त बनाया इससे लाखों लोगों का जीवन आसान हुआ विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन जी रामजी अधिनियम के अंतर्गत श्रम दरों में बढ़ोतरी आज से लागू केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और किरेन रिजिजू ने अरुणाचल प्रदेश के बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया नवनियुक्त सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ ने बदलते सुरक्षा माहौल की चुनौतियों से निपटने के लिए सेना के आधुनिकीकरण पर बल दिया अफगानिस्तान ने पाकिस्तान में आईएसआईएस के ठिकानों पर हमला किया मॉनसून के दो दिन में दिल्ली हरियाणा चंडीगढ़ और पंजाब तक पहुंचने की संभावना और फीफा वर्ल्ड कप में मैक्सिको ने इक्वाडोर को 2-0 से हराकर राउंड ऑफ 16 में जगह बनाई अब समाचार विस्तार से डिजिटल इंडिया अभियान के आज 11 वर्ष पूरे हो गए हैं इस पहल से देश भर में नागरिकों के जुड़ने सीखने लेन देन करने और सरकारी सेवाओं का लाभ उठाने के तरीके को बदल दिया है पिछले 11 वर्ष में भारत ने बड़े पैमाने पर दुनिया के सबसे बड़े डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर इकोसिस्टम में से एक को तैयार किया है एक रिपोर्ट
3: भारत बड़े पैमाने पर इस्तेमाल हो सकने वाले और नागरिकों पर केंद्रित डिजिटल गवर्नेंस प्लेटफॉर्म की मदद से डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर DPI के क्षेत्र में एक ग्लोबल लीडर के तौर पर उभर रहा है भारत ने इंडिया स्टैक और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े सहयोग के लिए 24 देशों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं इन समझौतों में डिजिटल पहचान डिजिटल भुगतान डेटा साझा करने और सरकारी सेवाओं की डिजिटल व्यवस्था जैसे क्षेत्र शामिल हैं यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस UPI अब संयुक्त अरब अमीरात सिंगापुर फ्रांस मॉरिशस और श्रीलंका समेत 8 से अधिक देशों में उपलब्ध है आधार डिजीलॉकर कोविन गवर्नमेंट ई मार्केटप्लेस दीक्षा उमंग और ई संजीवनी जैसे भारतीय डिजिटल प्लेटफॉर्म दुनिया के कई देशों के लिए डिजिटल शासन के मॉडल बन रहे हैं डिजिटल इंडिया अभियान अब अपने अगले दशक में प्रवेश कर रहा है इसके साथ भारत तकनीक को समावेशी विकास डिजिटल सशक्तिकरण और वैश्विक सहयोग का मजबूत माध्यम बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है अमन यादव आकाशवाणी समाचार दिल्ली
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि डिजिटल इंडिया अभियान ने सुशासन को नई दिशा और देश के समग्र विकास को गति दी है इसने नागरिकों का सशक्तिकरण भी किया है डिजिटल इंडिया अभियान के 11 वर्ष पूरे होने पर श्री मोदी ने कहा कि इस पहल का असर लोगों के जीवन के हर क्षेत्र में दिखाई दे रहा है उन्होंने कहा कि डिजिटल भुगतान और प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से सरकारी सहायता पारदर्शिता के साथ सीधे लाभ

0: लाभार्थियों तक पहुंच रही है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार ने डिजिटल कनेक्टिविटी का विस्तार करके, डिजिटल शासन को मजबूत करके और सार्वजनिक सेवाओं तक पहुंच में सुधार करके भारत को एक डिजिटल राष्ट्र में बदल दिया है। डिजिटल इंडिया पहल के 11 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में श्री शाह ने कहा कि देश ने इंटरनेट कनेक्टिविटी, डिजिटल बुनियादी ढांचे और प्रौद्योगिकी आधारित शासन में महत्वपूर्ण प्रगति देखी है। यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यूपीआई का इस्तेमाल लगातार बढ़ रहा है। जून महीने में यूपीआई के माध्यम से 22 अरब से अधिक लेन देन हुए। ये पिछले वर्ष जून के मुकाबले 23% अधिक है। इस लेन देन का कुल मूल्य 28 लाख करोड़ रुपए से अधिक रहा। ये पिछले साल के तुलना में 20% की बढ़ोतरी है। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन जी राम जी अधिनियम आज से लागू हो गया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा है कि बीबी जी राम जी अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक वित्त वर्ष में 125 दिन के रोजगार की गारंटी होगी। इससे ग्रामीण भारत सशक्त बनेगा। एक रिपोर्ट।
1: वर्तमान वित्तीय वर्ष में इस योजना के कार्यान्वयन के लिए 95,692 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। विकसित भारत जी राम जी अधिनियम के अंतर्गत संशोधित पारिश्रमिक दरें आज से लागू हो गई हैं। राष्ट्रीय औसत पारिश्रमिक मनरेगा के 298.80 रुपए से बढ़ाकर विकसित भारत जी राम जी के अंतर्गत 327.40 रुपए प्रतिदिन कर दिया गया है। इस प्रकार पारिश्रमिक दर में 10% से अधिक की औसत वृद्धि हुई है। 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जहां पहले मजदूरी 300 रुपए से कम थी, वहां अब नई दरें लागू हो गई हैं। सकलेन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत जी राम जी अधिनियम लागू होने को एक ऐतिहासिक उपलब्धि बताया है। श्री चौहान ने कहा कि ये अधिनियम लाखों ग्रामीण श्रमिकों के लिए गरिमा, आत्मसम्मान और आजीविका सुनिश्चित करने का नया अध्याय है। उन्होंने कहा कि ये अधिनियम हर ग्रामीण परिवार को 125 दिन के रोजगार का वैधानिक अधिकार देता है।
2: आज का दिन ऐतिहासिक दिन है। विकसित भारत जी राम जी योजना आज से लागू हो गई। हमारी कोशिश रही है कि ट्रांजिशन स्मूथ हो जाए। सभी राज्यों ने बजट में प्रावधान किया है। अकेले केंद्र सरकार ने 95,600 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि इस साल विकसित भारत जी राम जी योजना के लिए रखी है। इसमें राज्यों का हिस्सा मिला लिया जाए तो ये 1,51,282 करोड़ रुपया होती है। इतनी विशाल राशि न केवल मजदूर भाइयों और बहनों को रोजगार देगी बल्कि विकसित गांव को बनाने में सहायक सिद्ध होगी।
0: केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और किरेन रिजिजू ने अरुणाचल प्रदेश दौरे के दूसरे दिन राज्य के मुख्यमंत्री पेमा खांडू के साथ राज्य के प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया। इस दल ने पहले पूर्वी सियांग जिले के पासीघाट का सर्वेक्षण किया, जो सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्रों में से एक है, और फिर बोइंग गांव जाकर जमीनी स्तर पर हुए नुकसान का जायजा लिया। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि केंद्र सरकार की ओर से व्यापक वित्तीय और संरचनात्मक सहायता प्रदान की जाएगी।
2: संकट के समय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में केंद्र सरकार पूरी तरह अरुणाचल प्रदेश के साथ खड़ी है। क्षति का आकलन करके कैसे अधिकतम मदद की जाए, अपने भाई बहनों का अरुणाचल प्रदेश का प्रयास किया जाएगा। गृह मंत्री जी की अध्यक्षता में कमेटी होती है, वो पूरी स्थिति का आकलन करके अतिरिक्त सहायता अरुणाचल प्रदेश की करेंगे।
0: राज्य में बाढ़ से अब तक 4 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 21 अन्य घायल हुए हैं। लगभग सभी 28 जिलों में 90,499 लोग प्रभावित हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। थलसेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ ने कहा है कि बदलते सुरक्षा माहौल से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए सेना का तेजी से आधुनिकीकरण किया जाएगा। 31वें थलसेना प्रमुख का पदभार ग्रहण करने के बाद जनरल सेठ ने मीडिया को बताया कि भारतीय सेना का लक्ष्य ऐसी आधुनिक और तकनीक से सशक्त सेना तैयार करना है जो भविष्य की चुनौतियों का सामना करने में पूरी तरह सक्षम हो।
3: इस बदलते सिक्योरिटी एनवायरनमेंट की चुनौतियों का सामना करने के लिए हमें सेना के मॉडर्नाइजेशन को नए उत्साह और दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ाना होगा। हमारा उद्देश्य एक ऐसी टेक्नोलॉजी इनेबल्ड फ्यूचर रेडी आर्मी का निर्माण करना है जो हर तरीके से मल्टी डोमेन में ऑपरेट करने के लिए

0: सक्षम हो।
1: जनरल सेठ ने कहा कि भारतीय सेना सीमाओं और उभरते खतरों पर लगातार कड़ी नजर रख रही है और किसी भी सुरक्षा चुनौती से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है।
0: हम अपनी सीमाओं और उभरते खतरों के प्रति निरंतर सतर्कता बरकरार रखेंगे और राष्ट्रीय सुरक्षा के समक्ष किसी भी चुनौती का प्रभावी ढंग से सामना करने के लिए उच्च स्तर की ऑपरेशनल रेडीनेस बनाए रखेंगे। नवाचार हमारी सोच, कार्य प्रणाली और क्षमता विकास का अभिन्न अंग होगा।
1: एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित ने आज भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख का पदभार ग्रहण कर लिया। वे एयर मार्शल नागेश कपूर के स्थान पर नियुक्त हुए हैं, जो चार दशक से अधिक की सेवा के बाद कल सेवानिवृत्त हो गए। एयर मार्शल तेजिंदर सिंह ने आज चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के अध्यक्ष के एकीकृत रक्षा स्टाफ प्रमुख के रूप में पदभार ग्रहण किया। पदभार ग्रहण करते हुए श्री सिंह ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय समर स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की। उन्हें तीनों सेनाओं द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए युवाओं से समर्पण, ईमानदारी और मजबूत नैतिक मूल्यों के साथ उत्कृष्टता प्राप्त करने का आह्वान किया है। वे आज आंध्र प्रदेश के अनंतपुर में केंद्रीय विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रही थी। विश्वविद्यालय के दृष्टिकोण की सराहना करते हुए राष्ट्रपति ने विश्वास व्यक्त किया कि ये संस्थान भविष्य में उत्कृष्टता का एक प्रमुख केंद्र बनेगा।
2: I am pleased to know that this university has developed a long-term vision to become a future-ready institution. Its commitment to the sustainable development goals, especially to those on quality education, reflects a sense of responsibility towards inclusive and equitable development.
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन अमिस्ताद के अंतर्गत वेनेजुएला में राहत कार्यों में जुटे भारतीय डॉक्टरों और चिकित्सा कर्मियों की सराहना की है। सोशल मीडिया संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि कठिन समय में जरूरतमंद लोगों की सेवा के लिए उनका समर्पण प्रेरणादायक है। उन्होंने कहा कि हर संकट की घड़ी में चिकित्सा कर्मी अपनी जिम्मेदारी पूरी निष्ठा से निभाते हैं। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने कहा है कि भारत संप्रभु फलस्तीन की स्थापना के लिए बातचीत से द्विराष्ट्र समाधान का समर्थन करता है। इसके अंतर्गत एक ऐसे संप्रभु फलस्तीन की स्थापना हो सकेगी जो सुरक्षित और मान्यता प्राप्त सीमाओं के भीतर इसराइल के साथ शांति और स्थिरता से रह सकेगा। उन्होंने इस बात का उल्लेख किया कि भारत ने फलस्तीनी लोगों को 17.5 करोड़ अमरीकी डॉलर से अधिक की सहायता प्रदान की है।
3: India's engagement. भारत फलस्तीन के लोगों की मानवीय आवश्यकताओं और आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए लगातार सहयोग कर रहा है। अब तक भारत फलस्तीन को 17.5 करोड़ अमरीकी डॉलर की सहायता दे चुका है। इसके अलावा भारत समय समय पर मानवीय सहायता, आपदा राहत सामग्री, आपातकालीन दवाइयां और सामान्य उपयोग की आवश्यक औषधियां भी उपलब्ध कराता रहा है।
4: इंक्लूडिंग इमरजेंसी एंड जनरल यूज मेडिसिन।
1: इससे पहले कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति डॉ मसूद पेजेश्कियान से टेलीफोन पर बातचीत की। श्री मोदी ने पश्चिम एशिया क्षेत्र में स्थायी शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने तथा नौवहन और व्यापार की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए निरंतर प्रयासों की आवश्यकता पर जोर दिया। पिछले 9 वर्ष में वस्तु और सेवा कर GST ने भारत के एक भारत श्रेष्ठ भारत के दृष्टिकोण को और मजबूत किया है। GST से तर्कसंगत कर दरों और मानकीकृत प्रक्रियाओं के माध्यम से पारदर्शिता, जवाबदेही और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिला है। ये 2017 में पहली जुलाई से लागू हुई थी। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के 10 वर्ष पूरे हो गए हैं। ये योजना सिंचाई में सुधार, सतत जल प्रबंधन और अधिक कृषि भूमि को सिंचाई के दायरे में लाकर खेती में बड़ा बदलाव लाने में मददगार हुई है। पहली जुलाई 2015 को शुरू की गई इस योजना ने सिंचाई सुनिश्चित की है, खेती में जल के समुचित उपयोग में सुधार किया है और देश में सतत जल संरक्षण को बढ़ावा दिया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @YIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। अफगानिस्तान की सेना ने पाकिस्तान में ISIS से जुड़े ठिकानों पर हवाई हमले किए हैं। अफगान मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि ये हमले कल रात पाकिस्तान के बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा प्रांतों में आईएस

आईएस के ठिकानों पर किए गए। इन हमलों में आईएसआईएस और उसके समर्थकों को भारी नुकसान पहुंचा और आर्थिक रूप से भी भारी क्षति हुई। मंत्रालय ने कहा है कि इनमें कोई नागरिक हताहत नहीं हुआ है। हाल ही में पाकिस्तान के हवाई हमलों में अफगानिस्तान के 36 नागरिक मारे गए थे और 163 अन्य घायल हुए थे। संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश ने तुरंत शत्रुता समाप्त करने का आह्वान किया है और सभी पक्षों से नागरिकों की सुरक्षा करने का आग्रह किया है। फीफा विश्व कप के राउंड 32 के मैच में मैक्सिको ने इक्वाडोर को 2-0 से हरा दिया है और अंतिम 16 में पहुंच गया है। इससे पहले फ्रांस ने स्वीडन को 3-0 से और नॉर्वे ने आइवरी कोस्ट को 2-1 से हराकर राउंड 16 में जगह पक्की की। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 2 दिन में दक्षिण पश्चिम मानसून के दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब की ओर बढ़ने की संभावना है। उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, ओडिशा और विदर्भ में अगले 2 दिन मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की गई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, डिजिटल इंडिया अभियान ने पिछले 11 वर्ष के दौरान गरीबों और वंचितों को सशक्त बनाया। इससे लाखों लोगों का जीवन आसान हुआ। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन जी रामजी अधिनियम के अंतर्गत श्रम दरों में बढ़ोतरी आज से लागू। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और किरेन रिजिजू ने अरुणाचल प्रदेश के बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया। नवनियुक्त सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ ने बदलते सुरक्षा माहौल की चुनौतियों से निपटने के लिए सेना के आधुनिकीकरण पर बल दिया। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान में आईएसआईएस के ठिकानों पर हमला किया। मानसून के 2 दिन में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब तक पहुंचने की संभावना। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

नमस्ते, जय हिंद, जय भारत और सभी को गुड इवनिंग। और मैं आशा करूंगी कि ये जो इवनिंग वाला समय है आप सभी का बहुत ही अच्छा जाए, क्योंकि देखिए जब इवनिंग अच्छी जाती है तो नाइट और भी ज़्यादा अच्छी जाती है, और जब नाइट अच्छी होती है तो फिर मॉर्निंग अच्छी होनी ही है। और कंक्लूजन ये है कि भाई जब मॉर्निंग अच्छी हो तो पूरा दिन अच्छा होता है। और फिर हम ऐसे गाने सुने तो ऑफ कोर्स पुराने दिनों की याद आती है। आप सभी का स्वागत है लव यू जिंदगी के कार्यक्रम में, जहां मैं आप सबकी सखी आरजे रिद्धि आप सभी से बातचीत करने वाली हूं। और लव यू जिंदगी का ये प्रोग्राम मुझे बहुत इंपॉर्टेंट और एक रियलिटी चेक देता है। अब ये रियलिटी चेक क्या है इसके बारे में हम आगे धीरे धीरे जानेंगे। साथ ही जब हम आपस में बातें करते हैं ना, तो जिंदगी को दूसरों की नज़रों से समझना, उनके दुख दर्द और खुशी के बारे में जानना हमें अलग अलग दृष्टिकोण देता है। कि जैसे हम देखते हैं, ज़रूरी नहीं कि दूसरे लोग भी जिंदगी को या जिंदगी में होने वाली चीज़ों को उसी तरह देखे। तो बस इसी तरह से हम आगे लव यू जिंदगी के कार्यक्रम में बातें करेंगे, लेकिन एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक के बाद।

0: यार मुझे कुछ जल्दी भेजना है, कोई सुपर फास्ट ऑप्शन है क्या?
1: अरे बिल्कुल, इंडिया पोस्ट लाया है 24 स्पीड पोस्ट, मतलब अगली ही तारीख तक तेज डिलीवरी। ओहो, यानी जरूरी डॉक्यूमेंट हो, पार्सल हो, सब कुछ तुरंत पहुंच जाएगा। हाँ भाई, ट्रैकिंग भी रियल टाइम और रेट भी पॉकेट फ्रेंडली, और सबसे जरूरी OTP आधारित सुरक्षित डिलीवरी। बस भरोसा रखो इंडिया पोस्ट पर। अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से संपर्क करें या विजिट करें indiapost.gov.in।

आप सुन रहे हैं लव यू जिंदगी का ये कार्यक्रम ओनली ऑन एफएम रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज पर। हम बात कर रहे थे कि भाई जब हम अपने नज़रिए को थोड़ी देर के लिए पॉज कर दूसरे के नज़रियों से ज़िंदगी देखते हैं, समझते हैं या उनकी बातों से जानने की कोशिश करते हैं, तो उनका एक अलग नज़रिया होता है, उनका एक अलग प्रस्पेक्टिव होता है। जैसे मैं एक दिन मेरी सहेली जिसका नाम राधिका है उससे बात कर रही थी, तो उस दिन वो बड़ी मुझे उदास दिखी। तो मैंने कहा भाई अरे रोज़ खिलखिलाकर हंसने वाली आज इतनी शांत क्यों? होता है ना जब कोई बहुत बोलता हो, कोई बहुत अच्छे से आपका साथ देता हो, बातचीत करता हो और किसी दिन वो शांत मिले तो भाई कुछ तो गड़बड़ है वाली वाले ख्याल हमारे दिमाग में आते हैं। तो मैंने उसको पूछा कि भाई क्यों आज इतनी शांत क्यों है? तो वो आंखों में आंसू लिए पर चेहरे पर हल्की मुस्कान लिए बोली, यार रिद्धि हर बड़े परिवार को संभालने के लिए कोई एक ऐसा ज़रूर होता है ना जो खुशी खुशी पूरे परिवार की जिम्मेदारी लेता है और हम अपनी ज़िंदगी स्मूथली जीते हैं, जैसे मेरे बड़े पापा प्रभाशंकर जी।

0: मुझे कुछ जल्दी भेजना है, कोई सुपर फास्ट ऑप्शन है क्या?
1: अरे बिल्कुल, इंडिया पोस्ट लाया है 24 स्पीड पोस्ट, मतलब अगली ही तारीख तक तेज डिलीवरी। ओहो, यानी जरूरी डॉक्यूमेंट हो, पार्सल हो, सब कुछ तुरंत पहुंच जाएगा।
2: हाँ भाई, ट्रैकिंग भी रियल टाइम और रेट भी पॉकेट फ्रेंडली, और सबसे जरूरी OTP आधारित सुरक्षित डिलीवरी। बस भरोसा रखो इंडिया पोस्ट पर।
3: अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से संपर्क करें या विजिट करें indiapost.gov.in।

क्या खूब कहा है इस गाने ने कि हर पल हर दिन ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो। हम बात कर रहे हैं लव यू जिंदगी में, जहां राधिका अपने बड़े पापा प्रभा शंकर जी के बारे में बता रही है। वो कहती है कि उन्होंने, यानी कि प्रभा शंकर जी ने, अपने माता पिता और साथ ही घर के कई बड़े काम, जरूरी काम किए ताकि वो एक बड़े बेटे की जिम्मेदारी निभा सके। फिर चाहे वो अपनी माता जी को

और बिना एक दिन चूके खाना खिलाना हो, पिताजी की मरहम पट्टी करनी हो या घर की शादी के लिए सुबह सुबह मंडी जाकर भाव तोल कर फूल और सब्जी लानी हो, गुड पर्सनालिटी, बहुत सारा धैर्य, यार कैसे कर लेते हैं ये? राधिका ने जब ये सवाल मुझसे किया तो मेरे ख्याल में भी ये आया कि हाँ यार, हर परिवार में कोई ऐसा जरूर होता है जो अपने गले में ये बोर्ड लगाकर नहीं घूमता कि मैं जिम्मेदार हूं। वो अपने एक्शन के जरिए, अपने कर्तव्य के जरिए अपना काम किए जाता है, और क्योंकि वो अपना कर्तव्य, अपना काम कर रहा है तो हम सब की जिंदगी स्मूथली चलती है, बिना किसी रुकावट के, बिना किसी अड़चन के। यार हम तो छोटी सी बात पर ही रिएक्ट कर लेते हैं, पर वो एक स्ट्रांग पिलर की तरह बिना हिले एक टक खड़े रहते हैं।

सच कहा, मतलब ऐसा कोई व्यक्ति जरूर चाहिए जो जिंदा दिली काम करे, जो अपने फर्ज को, अपनी जिम्मेदारी को निभाए बिना किसी टैग के। तो जैसे ही मैं राधिका की बातों को सुन रही थी, समझ रही थी कि वो आज की उदास है, मैं समझ गई कि अच्छा, उसे अपने बड़े पापा की याद आ रही है। मैंने भी राधिका की बात पर अपनी सहमति जताई, क्योंकि ये सच है, हमारे परिवार में बड़े पापा, बड़े ताऊजी का बहुत बड़ा रोल प्ले है। जब कभी हम गांव जाए और उन्हें वहां बैठा पाए तो लगता है घर का बड़ा मौजूद है। ये बड़े भी अब आराम करना चाहते हैं, क्योंकि वो अपना किरदार निभा चुके हैं। नाउ दे वॉन्ट टू रेस्ट। मैं राधिका की बातों से समझ गई कि आज वो क्यों ऐसी बातें कर रही है। हमने कुछ देर उनकी याद में सारी मेमोरी एक रील की तरह चलने दी। वो कह रही थी कि कैसे वो दोनों जब किसी फंक्शन अटेंड करते, जब कभी भी किसी की शादी हो या कोई भी ऐसा फंक्शन अटेंड करते, तो घर आकर मीठे में क्या क्या खाया और क्या छूट गया उस बात पर बात करते, और हंसते कि यार शिट, ये वाली मिठाई मैंने टेस्ट नहीं की और वो वाली मिठाई मैंने 2-3 बार खाई। हमारी जिंदगी लाइक या लव के लायक तब होती है जब ऐसे कई घरों के बड़े साइलेंटली हमारे लिए बहुत कुछ करते हैं। तभी तो हम कह पाते हैं ना कि यार लव यू जिंदगी। तो ये जिंदगी को जो छोटा शब्द है ना, हम ये कहते हैं लव, इतना बड़ा है, ये मायने रखता है, क्योंकि जिंदगी को लव यू जिंदगी, लाइक यू जिंदगी, वांट यू जिंदगी हम तब कह पाते हैं कि कोई तो एक ऐसा है, कोई पिलर है जो सारे परिवार को संभाल कर रखे है, और उन्हीं के वजह से हम अपनी ज़िंदगी को अच्छे से जी पाते हैं, एक अच्छी पर्सनालिटी। तो आप सबके घर पर भी कोई एक ऐसा होगा, आपके घर पर भी, या आपका कोई ऐसा व्यक्ति होगा, आपके बड़े पापा होंगे, आपका ताऊजी, या ऐसा कोई व्यक्ति होगा जिसके वजह से आपकी लाइफ

बहुत स्मूथली चलती है, इनडायरेक्टली, डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली चलती है। तो बस लव यू जिंदगी का कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होने आया है, और आप सुनिए ये सारे गाने जो गानों के बोल है वो भी हमें यही कहते हैं कि यार जिंदगी हो तो ऐसी हो, और इंसान भी हो तो ऐसे ही जिंदा दिली का इंसान हो।

0: सुपर फास्ट ऑप्शन है क्या?
1: अरे बिल्कुल, इंडिया पोस्ट लाया है 24 स्पीड पोस्ट, मतलब अगली ही तारीख तक तेज डिलीवरी। ओहो, यानी जरूरी डॉक्यूमेंट हो, पार्सल हो, सब कुछ तुरंत पहुंच जाएगा। हाँ भाई, ट्रैकिंग भी रियल टाइम और रेट भी पॉकेट फ्रेंडली, और सबसे जरूरी OTP आधारित सुरक्षित डिलीवरी। बस भरोसा रखो इंडिया पोस्ट पर। अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से संपर्क करें या विजिट करें indiapost.gov.in।

आप सुन रहे हैं आपकी सखी आज रिद्धि को ओनली ऑन एफएम रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। तो अब शुरू हो चुका है हमारा कार्यक्रम अंदाज़े बयां। सही कहा भाई, क्या बात है। मतलब हम कविता, हम शायरिया, हम हर एक उन पंक्तियों के जरिए कुछ बातें कह सकते हैं, अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सकते हैं। इसलिए ये जो कार्यक्रम का ये जो स्पॉट है, ये जो शो है, मुझे बड़ा पसंद आता है कि लव यू जिंदगी को सीधा कनेक्ट करता है अंदाज़े बयां। हम अपनी बातें ही तो बयां करते हैं, किसी की बातें सुनते हैं। अंदाज़े बयां में आज मैंने एक बहुत ही सुंदर कविता ली है राष्ट्रकवि श्री रामधारी सिंह दिनकर जी की, जिनकी कविता का नाम है कोई अर्थ नहीं। वो कहते हैं, नित जीवन के संघर्षों से

तब टूट चुका हो अंतर मन, तब सुख के मिले समंदर का रह जाता कोई अर्थ नहीं। जब फसल सूख कर जल के बिना तिनका तिनका बन गिर जाए, फिर होने वाली वर्षा का रह जाता कोई अर्थ नहीं। क्या खूब कहा है।

वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी, क्या बात है। संबंध कोई भी हो, लेकिन यदि दुख में साथ न दे अपना, फिर सुख में उन संबंधों का रह जाता कोई अर्थ नहीं। छोटी छोटी खुशियों के क्षण निकल जाते हैं रोज जहां, फिर सुख की नित्य प्रतीक्षा का रह जाता कोई अर्थ नहीं, रह जाता कोई

आप सुन रहे हैं अंदाजे बयां, जहां हम सुन रहे हैं राष्ट्रकवि श्री रामधारी सिंह दिनकर जी की कविता कोई अर्थ नहीं। और इनकी अंतिम लाइनें हैं, मन कटुवाणी से आहत हो, भीतर तक छलनी हो जाए, फिर बात कहे प्रिय वचनों का, रह जाता कोई अर्थ नहीं। सुख साधन चाहे जितने हो, पर काया रोगों का घर हो, फिर उन अगणित सुविधाओं का रह जाता कोई अर्थ नहीं। ये जो पंक्तियां हैं, हमारे जो श्रेष्ठ लेखक, श्रेष्ठ कविताएं जो लिखते हैं हमारे कवि, उनमें कितना कुछ सरलता से बयां करने की क्षमता होती है। और जब हम अंदाजे बयां में, जब हम खुद भी एज आरजे चुनते हैं, सर्च करते हैं, तो अब हमारी खुद की जो बुद्धि है वो खुलने लग जाती है। हम खुद एज अ कलाकार ग्रो करना शुरू कर देते हैं। जैसे कि हम कहते हैं कि एक ग्रोथ, ग्रो करना, कुछ बड़ा करना, कुछ सीखते रहना, इसकी कोई उम्र नहीं होती। और जब ऐसे कलाकार हमें बड़ी बड़ी बातों को इतनी आसानी से चंद लाइनों में, चंद पैराग्राफों में लिखते हैं, तो हमारे लिए बहुत ही बड़ी बात होती है, हमारी खुशकिस्मती होती है कि हम इनको अपनी जुबान से बयां कर सके। तो क्या खूब कहा है। और बस इसी के साथ हम और भी अच्छे गाने सुनते रहेंगे, और अब हम मिलेंगे हमारे अगले कार्यक्रम में, हम तुम में। तो तब तक सुनिए ये प्यारा सा गाना।

0: आकाशवाणी FM रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज़ म्यूजिकली योर्स।
1: तो अब बज चुके हैं घड़ी में 7:10 और हमारा कार्यक्रम हम तुम शुरू हो चुका है, जहां हम प्ले करने वाले हैं लिसनर्स के फेवरेट गाने, यानी कि वो हमें बताएंगे और हम प्ले करेंगे। तो आज सबसे पहला गाना बज रहा है राकेश माथुर जी फ्रॉम पुणे, और बहुत ही खूबसूरत गाना इन्होंने चुना है, आइए सुनते हैं।

मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आप सभी इन गानों को एंजॉय कर रहे होंगे। हम तुम हमारे कार्यक्रम में, और हमने अभी तक पंकज मोहर, प्रणव शिंदे और योगेश जी, अरविंद कुलकर्णी जी और भी बहुत सारे लिसनर्स के गाने हम प्ले करने वाले हैं। तो मेरे साथ बने रहे हम तुम कार्यक्रम में, और बस अभी कुछ ही क्षण बाद मुझे अभी फिलहाल के लिए गुड बाय कहना होगा। लेकिन आपके इन हम तुम कार्यक्रम के बाद भी और भी खूबसूरत गाने चलते रहेंगे, सो एंजॉय।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। सरकार ने दिल्ली और उत्तर प्रदेश में 14,000 करोड़ रुपए से अधिक की दो बड़ी राजमार्ग सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी। विकसित भारत जी राम जी अधिनियम देश भर में लागू। केंद्र सरकार ने योजना के अंतर्गत मजदूरी की नई दरें अधिसूचित की। सर्वोच्च न्यायालय ने मोटर दुर्घटना मुआवजे के दावों में एक रूपता लाने के लिए पीड़ितों की आय का आकलन करने संबंधी दिशा निर्देश जारी किए। जापान की प्रधानमंत्री सनाई तकाईची 3 दिन की भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंची। कल 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगी। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला का पहला मैच आज रात चेस्टर ले स्ट्रीट में खेला जाएगा। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में राउंड ऑफ 32 में आज रात इंग्लैंड का मुकाबला DR कांगो से होगा। अब समाचार विस्तार से। सरकार ने दिल्ली और उत्तर प्रदेश में 14,000 करोड़ रुपए से अधिक के दो बड़ी राजमार्ग सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इसमें दिल्ली में द्वारका एक्सप्रेसवे को वसंत कुंड से जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 148AE के लिए 6 लेन की सड़क सुरंग का निर्माण शामिल है।
1: पहला प्रोजेक्ट 6 लेन द्वारका टनल दिल्ली के लिए एक बहुत बड़ा वरदान साबित होगी। 8 किलोमीटर्स की ये टनल एक तरीके से कंप्लीट ये एक नया कॉरिडोर बन जाएगा। ये रिज है, इस रिज को बिना डिस्टर्ब किए सारा काम करना है। इस रिज को, रिज हमारे दिल्ली की एक तरीके से लंग्स ऑफ दिल्ली है, इसलिए उसको बिल्कुल भी डिस्टर्ब किए बिना इसके नीचे से ही टनल लेके जाने का है, ये प्रपोजल है।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने एम्स और महिपालपुर के बीच एलिवेटेड कॉरिडोर का भी प्रस्ताव किया है। परियोजना से लगभग 7,54,000 प्रत्यक्ष रोजगार और 9,80,000 अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होगा। श्री वैष्णव ने बताया कि सरकार ने उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 34 के करीब एक्सेस कंट्रोल कानपुर कबरई खंड के निर्माण को भी मंजूरी दे दी है। इसकी अनुमानित कुल लागत 7,145 करोड़ रुपए है।
1: दूसरा प्रोजेक्ट है बुंदेलखंड क्षेत्र को जोड़ने वाला है उत्तर प्रदेश में। कानपुर से भोपाल का सेक्शन है, बीच में आज जो अप्रूव हुआ है 242 किलोमीटर्स का, ये कानपुर से कबराई, कानपुर से भोपाल की तरफ जो नेचुरल ट्रैफिक का फ्लो है उस सबको ये कैटर करेगा। 242 किलोमीटर्स का है ये, एक्सेस कंट्रोल रहेगा कंप्लीट, एक्सप्रेस वे की तरह का है। 2.5 ईयर्स में कंस्ट्रक्शन करेंगे इसको। कानपुर, हमीरपुर, महोबा 3 जिले इमीडिएटली इससे कवर होंगे।
0: इस परियोजना से लगभग 1,20,00,000 प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होगा।

0: विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन जी राम जी अधिनियम आज से लागू हो गया है। अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक वित्त वर्ष में 125 दिन के रोजगार की गारंटी होगी। केंद्र सरकार ने योजना के अंतर्गत मजदूरी की नई दरें भी अधिसूचित कर दी हैं। एक रिपोर्ट।
1: वीबीजी रामजी योजना के अंतर्गत अब देश में कहीं भी तय की गई प्रतिदिन की मजदूरी 300 रुपए से कम नहीं होगी, जिससे राष्ट्रीय

0: वीपीजी रामजी सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म का लॉन्च, अहम प्रकाशनों को जारी करना, लाभार्थियों के साथ बातचीत और कानून को असरदार ढंग से लागू करने के उद्देश्य से कई पहलुओं का उद्घाटन शामिल होगा। नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।
1: गृह मंत्री अमित शाह ने जनसांख्यिकी परिवर्तनों पर गठित उच्च स्तरीय समिति से अपनी सिफारिशें शीघ्र प्रस्तुत करने को कहा है। नई दिल्ली में एक बैठक में समिति ने गृह मंत्री को बताया कि वह जनसांख्यिकी परिवर्तनों की जानकारी प्राप्त करने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का दौरा करेगी और प्रशासनों के साथ समन्वय करेगी। गृह मंत्री ने केंद्रीय गृह सचिव को समिति के दैनिक कार्यों और राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के दौरों के दौरान हर संभव सहयोग उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सर्वोच्च न्यायालय ने आज मोटर दुर्घटना में मृतक व्यक्तियों या घायल दावेदारों की वार्षिक आय का निर्धारण आयकर रिटर्न के आधार पर करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए। मोटर दुर्घटना मुआवजे में एक रूपता लाने के लिए शीर्ष न्यायालय ने कहा कि वेतनभोगी व्यक्तियों के मामले में वार्षिक आय दर्शाने के लिए केवल पिछले वर्ष का आयकर रिटर्न ही पर्याप्त होगा। स्वरोजगार व्यक्तियों के मामले में न्यायालय ने कहा कि पिछले 3 वर्षों तक के आईटीआर में घोषित औसत आय को सामान्यतः संदर्भ बिंदु के रूप में माना जाना चाहिए। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने दिल्ली सरकार के साथ टीबी मुक्त भारत अभियान और डेंगू की तैयारियों पर समीक्षा बैठक की। श्री नड्डा ने इस अभियान को गति देने के लिए जन भागीदारी बढ़ाने का आह्वान किया। श्री नड्डा ने कहा कि व्यापक जनसंचार सुनिश्चित करने के लिए अभियान से संबंधित सभी संचार सरल और आसानी से समझ में आने वाली भाषा में होना चाहिए। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में निरंतर बदलाव में विशेषज्ञों की भागीदारी, संस्थागत सहयोग, संवादात्मक शिक्षण और समय अनुकूल विषय वस्तु पर बल दिया है। नई दिल्ली में श्री सिंह ने कहा कि 21वीं सदी में सुशासन के लिए ऐसे प्रशासकों की आवश्यकता है जो निरंतर सीखने, प्रौद्योगिकी, नवाचार और जन भागीदारी के युग में आगे बढ़ने में सक्षम हों। जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची भारत की 3 दिन की यात्रा पर आज शाम नई दिल्ली पहुंची। उनकी ये भारत की पहली आधिकारिक यात्रा है। वे कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगी। ये शिखर सम्मेलन दोनों पक्षों को द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा करने के साथ साथ पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करने का अवसर प्रदान करेगा। दोनों नेताओं के बीच वार्ता के बाद कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि जापान पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के लिए भारत जापान एक्ट ईस्ट फोरम के माध्यम से काम कर रहा है।
2: पूर्वोत्तर भारत में संपर्क और विकास को बढ़ावा देने के लिए भारत और जापान मिलकर काम कर रहे हैं। दोनों देश बुनियादी ढांचे, शहरी विकास, ऊर्जा, कृषि, पर्यटन और कौशल विकास जैसे क्षेत्रों में सहयोग कर रहे हैं। पूर्वोत्तर क्षेत्र जापान की स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र की परिकल्पना में महत्वपूर्ण स्थान रखता है, क्योंकि यह दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया के बीच एक सेतु का काम करता है। 2025 से अब तक जापान और पूर्वोत्तर राज्यों के बीच कई उच्च स्तरीय दौरे हुए। इसी वर्ष फरवरी में जापान के विदेश मामलों के राज्य मंत्री इवाओ होरी ने भारत का दौरा किया था। इस दौरान उन्होंने मेघालय और असम के मुख्यमंत्रियों से मुलाकात की। इस वर्ष अप्रैल में मेघालय के मुख्यमंत्री जापान गए थे। इस यात्रा के दौरान एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए, जिसके तहत अगले 5 वर्षों में मेघालय के 5,000 युवाओं को जापान में कौशल प्रशिक्षण और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: भारत और पाकिस्तान ने आज एक दूसरे की हिरासत में मौजूद सिविल कैदियों और मछुआरों की सूचियों का आदान प्रदान किया। भारत ने अपनी हिरासत में मौजूद 386 कैदियों और 53 मछुआरों की सूचियां साझा की। पाकिस्तान ने अपनी हिरासत में मौजूद 52 कैदियों और 198 मछुआरों की सूचियां साझा की। भारत ने 188 भारतीय नागरिकों की रिहाई और 13 लोगों तक कौंसिलर पहुँच की मांग की। भारत ने पाकिस्तान के फरुखाबाद में 125 वर्ष पुराने पवित्र गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा साहिब को ध्वस्त किए जाने की कड़ी निंदा की है। भारत ने इसे अत्यंत निंदनीय और बर्बरता का कृत्य बताया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों और उनके पूजा स्थलों को निशाना बनाने का सिलसिला लगातार जारी है। सरकार ने आज देश में व्हाट्सएप पर यूजर नेम फीचर शुरू करने के संबंध में मेटा को नोटिस जारी किया है। सूत्रों के अनुसार

0: सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने मेटा को 3 दिनों के भीतर यूजर नेम फीचर के बारे में विस्तृत जानकारी देने का निर्देश दिया है। मंत्रालय ने निर्देश दिया है कि इस मामले पर परामर्श पूरा होने तक यूजर नेम फीचर शुरू न किया जाए। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने कहा है कि केंद्र सरकार राज्य में परिवहन ढांचे के विकास को विशेष महत्व दे रही है। आज नई दिल्ली में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात के दौरान राज्य की राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। डॉ. साहा ने कहा कि केंद्र सरकार त्रिपुरा और पूर्वोत्तर क्षेत्र को देश के व्यापक विकास ढांचे से जोड़कर सड़क संपर्क को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और किरेन रिजिजू ने अरुणाचल प्रदेश दौरे के दूसरे दिन राज्य के मुख्यमंत्री पेमा खांडू के साथ बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से व्यापक वित्तीय और संरचनात्मक सहायता प्रदान की जाएगी। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के दौरान दक्षिण पश्चिम मानसून के दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तरी अरब सागर, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में आगे बढ़ने की संभावना व्यक्त की है। 4 जुलाई तक तटीय कर्नाटक, गुजरात क्षेत्र, कोंकण, गोवा और मध्य महाराष्ट्र में मूसलाधार वर्षा का अनुमान है। छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, सौराष्ट्र, कच्छ, उत्तराखंड और विदर्भ में भी अगले 3 से 4 दिनों तक ऐसी ही स्थिति रहने की संभावना है। इस बीच मुंबई में कल से तेज वर्षा हो रही है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि मौसम विभाग ने 5 जुलाई तक कई क्षेत्रों में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है।
1: बृहन्मुंबई महानगर पालिका के अनुसार आज सुबह 8 बजे से दोपहर 3 बजे के बीच मुंबई के पूर्वी और पश्चिमी उपनगरों में 100 मिलीमीटर से अधिक वर्षा दर्ज की गई। मूसलाधार बारिश के कारण अंधेरी, दादर सहित कई निचले इलाकों में जलभराव हो गया, जिससे यातायात और जनजीवन प्रभावित हुआ। मौसम विभाग ने कल के लिए पालघर जिले में रेड अलर्ट जारी किया है और अत्यधिक भारी वर्षा होने की संभावना जताई है। आकाशवाणी समाचार के लिए मुंबई से शैलजा तिवले।
0: वस्तु और सेवा कर GST से सरकार को जून महीने में 1,94,812 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ है। ये पिछले वर्ष जून की तुलना में 13.9% अधिक है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं मनोज पाठक।
2: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स आज 444 अंक बढ़कर 76,923 पर बंद हुआ। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 140 अंक बढ़त के साथ 24,006 दर्ज हुआ। और अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में $1 की तुलना में रुपया 57 पैसे कमजोर होकर 95.24 रुपए पर बंद हुआ।
0: नई दिल्ली में आकाशवाणी के रंग भवन में आज फोटो गैलरी स्वर प्रेरणा विथिका का अनावरण किया गया। पद्म विभूषण बांसुरी वादक पंडित हरि प्रसाद चौरसिया ने इसका उद्घाटन किया। इस अवसर पर प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौरव द्विवेदी ने कहा कि आकाशवाणी ने भारत के समृद्ध संगीत विरासत को संरक्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
3: आकाशवाणी ने हमेशा से ही अपने कार्यक्रमों में संगीत की सभी विधाओं को स्थान दिया है और संगीत में रुचि रखने वाले कलाकारों को प्रोत्साहन दिया है और साथ ही श्रोताओं की पसंद का भी विशेष ध्यान रखा गया है। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत, कर्नाटक संगीत, सुगम संगीत, लोक संगीत, भक्ति संगीत, फिल्म संगीत, पाश्चात्य संगीत, रवींद्र संगीत, इस प्रकार अनेक विधाओं के संगीत को कोई सुनना चाहे तो आज भी उनके लिए आकाशवाणी सर्वश्रेष्ठ माध्यम है।
0: भारत और इंग्लैंड के बीच 5 T20 क्रिकेट मैच श्रृंखला का पहला मैच आज रात 10 बजे चेस्टरली स्ट्रीट में खेला जाएगा। दूसरा T20 मैच शनिवार को मैनचेस्टर में होगा। उधर फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 32 के मैच में आज रात 9:30 बजे इंग्लैंड और DR कांगो आमने सामने होंगे। देर रात 1:30 बजे बेल्जियम का मुकाबला सेनेगल से होगा। श्री अमरनाथ जी तीर्थ यात्रा कल से शुरू होगी। तीर्थयात्रियों का पहला जत्था जम्मू के भगवती नगर आधार शिविर पहुंच चुका है। तीर्थयात्रियों की सुरक्षा और आवास सहित सभी आवश्यक व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं। श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड के अध्यक्ष उपराज्यपाल मनोज सिन्हा कल सुबह 4 बजे पहले जत्थे को रवाना करेंगे। 57 दिनों की यात्रा 3 जुलाई से नुनवान, पहलगाम और बालतल मार्गों से कड़ी सुरक्षा के बीच शुरू होगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने दिल्ली और उत्तर प्रदेश में 14,000 करोड़ रुपए से

0: अधिक की दो बड़ी राजमार्ग सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी। विकसित भारत जी राम जी अधिनियम देश भर में लागू। केंद्र सरकार ने योजना के अंतर्गत मजदूरी की नई दरें अधिसूचित की। सर्वोच्च न्यायालय ने मोटर दुर्घटना मुआवजे के दावों में एक रूपता लाने के लिए पीड़ितों की आय का आकलन करने संबंधी दिशा निर्देश जारी किए। जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची 3 दिन की भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंची। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला का पहला मैच आज रात चेस्टरली स्ट्रीट में खेला जाएगा और फीफा फुटबॉल विश्व कप में राउंड ऑफ 32 में आज रात इंग्लैंड का मुकाबला DR कांगो से। इसके साथ ही समाचार संध्या का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: Good evening. This is Akashvani and I am Valsa Williams with the news at 9. The headlines. Government approves 2 major highway infrastructure projects in Delhi and Uttar Pradesh worth over 14,000 crore rupees. Vikasit Bharat G. Ramji Act comes into force across the country. Centre notifies revised wage rates under the scheme. Supreme Court issues guidelines on assessing income of motor accident victims for uniformity in compensation claims. Prime Minister of Japan Sanae Takaichi arrives in New Delhi on a 3-day visit to India to take part in 16th India-Japan Annual Summit tomorrow. In men's cricket, India to take on hosts England in first T20 international of 5-match series tonight. And in FIFA World Cup, England to face DR Congo in round of 32 at Atlanta in US tonight. The government today approved 2 major highway infrastructure projects worth a combined over 14,000 crore rupees. The projects include a 6,969 crore rupee tunnel project in Delhi aimed at easing congestion and a 7,145 crore rupee greenfield highway corridor in Uttar Pradesh. Briefing media in the national capital about the Union Cabinet's decisions, Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnav said the Cabinet has approved the construction of an 8.1-kilometer-long 6-lane road tunnel in Delhi on NH-148AE, connecting the Dwarka Expressway with Nelson Mandela Marg in Vasant Kunj. Mr. Vaishnav said the Cabinet also approved the construction of the 117.7-kilometer-long Kanpur-Kabrai section of National Highway 34 in Uttar Pradesh as a 4-lane access-controlled corridor.
2: आज कैबिनेट में दो बड़े फैसले लिए गए।
3: टुडे द कैबिनेट अप्रूव्ड 2 मेजर डिसीजंस बोथ रिलेटेड टू हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर। द फर्स्ट एड्रेसेस अ लॉन्ग पेंडिंग डिमांड इन दिल्ली फॉर इंप्रूव्ड कनेक्टिविटी बिटवीन द नेशनल हाईवे कॉरिडोर एंड वसंत कुंज। सेवरल एफर्ट्स हैड बीन मेड ओवर द इयर्स एंड टुडे दोज प्रपोजल्स हैव फाइनली बीन अप्रूव्ड। द प्रोजेक्ट इन्वॉल्व्स द कंस्ट्रक्शन ऑफ 6-lane द्वारका टनल एट एन एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ 6,970 करोड़ रुपीस। द सेकंड डिसीजन इज रिलेटेड टू उत्तर प्रदेश। द कैबिनेट हैज अप्रूव्ड द कंस्ट्रक्शन of 4-lane access controlled highway between Kanpur and Kabrai, forming part of the corridor connecting Kanpur with Bhopal. Project has an estimated cost of 7,145 crore rupees. In addition, significant improvements have also been planned for the subsequent sections of the corridor.
2: Section ka bhi usme bahut sara improvement hai.
1: The Vikasit Bharat Guarantee for Rozgar and Ajivika Mission Grameen Vikasit Bharat Ji Ramji Act 2025 has come into force across the country today. Under the Act, eligible rural households will now have a statutory entitlement to 125 days of guaranteed wage employment. The government has also notified revised wage rates under the Vikasit Bharat Ji Ramji Act 2025 for all states and union territories. We have a report.
4: Under this, no notified daily wage anywhere in the country will be below 300 rupees, increasing the national average notified wage from 298.8 rupees per day to 327.4 rupees per day. This reflects an enhancement of more than 10% in wages. To mark the national rollout of the Act, a national launch program will be held tomorrow at Tirupati district of Andhra Pradesh. Union Minister for Rural Development Shivraj Singh Chauhan and Andhra Pradesh Chief Minister

नमस्कार, एफएम रेनबो पर समय है मुख्य समाचार का। केंद्र सरकार ने दिल्ली में द्वारका एक्सप्रेसवे को नेल्सन मंडेला मार्ग वसंत कुंज से जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 148 AE के लिए 6 लेन की सड़क सुरंग के निर्माण को मंजूरी दे दी है। 8 किलोमीटर से अधिक लंबी ये परियोजना 6,969 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से विकसित की जाएगी। इसके साथ ही सरकार ने उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग 34 के करीब 118 किलोमीटर लंबे 4 और 6 लेन वाले एक्सप्रेस एक्सिस कंट्रोल्ड कानपुर कबराई खंड के निर्माण को भी मंजूरी दे दी है। विकसित भारत VBGRAM की गारंटी अधिनियम 2025 आज से पूरे देश में लागू हो गया है। पात्र ग्रामीण परिवारों को

अब 125 दिनों की गारंटी कृत श्रम रोजगार का वैधानिक अधिकार प्राप्त होगा। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज एपी मेस्ट्रक मोलर मेस्ट्रक समूह के एसेट स्ट्रेटजी प्रमुख अहमद हसन के साथ बैठक में भारत के समुद्री क्षेत्र को मजबूत बनाने पर चर्चा की। सर्वोच्च न्यायालय ने मोटर दुर्घटना मुआवजे के दावों में एकरूपता लाने के लिए पीड़ितों की आय का आकलन करने का दिशा निर्देश जारी किए। जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची 3 दिन की भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंच गई हैं। वे कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वे जापान के प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची के साथ कल होने वाली वार्ता को लेकर उत्सुक हैं और इस बैठक से भारत जापान की विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी को और मजबूती मिलेगी। विदेश मंत्रालय की ओर से नई दिल्ली में आयोजित 2 दिवसीय मानव संसाधन गतिशीलता मंच आज संपन्न हो गया है। इस मंच का उद्देश्य भारतीय पेशेवरों और कामगारों के लिए सुरक्षित और वैध विदेश रोजगार के अवसर बढ़ाना तथा इस क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करना है। भारत और पाकिस्तान ने एक दूसरे की हिरासत में मौजूद आम कैदियों और मछुआरों की सूचियां साझा की हैं। भारत ने अपनी सजा पूरी कर चुके 188 मछुआरों और कैदियों की रिहाई में तेजी लाने को कहा है। सरकार ने कहा है कि वह पहचान छिपाने संबंधी चिंताओं को लेकर व्हाट्सएप के यूजर नेम फीचर की जांच करेगी। मौसम विभाग ने दक्षिण पश्चिमी मानसून के अगले 2 दिनों में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में आगे बढ़ने की संभावना व्यक्त की। और खेलों में भारत और इंग्लैंड के बीच 5 T20 मैचों की क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में आज चेस्टर ली स्ट्रीट में भारत ने ताजा समाचार मिलने तक 9 ओवर में 3 विकेट पर 92 रन बना लिए हैं। फीफा विश्व कप के राउंड ऑफ 32 में डीआर कांगो इंग्लैंड पर 1-0 की बढ़त बनाए हुए हैं। ये थे आकाशवाणी रेनबो पर अब तक के मुख्य समाचार।

0: वाणी आकाशवाणी।
1: नमस्कार, आकाशवाणी रेनबो पर समय है आपके फेवरेट शो का, जिसका नाम है रंगे महफिल। जी हाँ, हर रोज ये महफिल हम और आप अपने साथ के साथ आगे लेकर चलते हैं। इस महफिल में बने रहते हैं एक दूसरे के साथ और हम ये मानकर चलते हैं कि ये जो तन्हाई का रात का ये वक्त है ना, ये हमारा अपना है। सब कुछ हो जाता है लेकिन हम अपने लिए वक्त कहाँ निकाल पा रहे हैं। तो आइए हम और आप मिलकर वक्त निकालते हैं सिर्फ खुद के लिए और खो जाते हैं गजलों की, कव्वालियों की इस खूबसूरत सी दुनिया में जिसका नाम है रंगे महफिल, जो आप सुन रहे हैं इस वक्त आकाशवाणी रेनबो पर आपकी दोस्त गीतांजलि के साथ। एक बहुत ही खूबसूरत सी गजल है अलका जी की आवाज में, वो मैं प्ले करूं, लेकिन उसके पहले एक और बहुत खूबसूरत सी आवाज है जगजीत सिंह जी की आवाज में। ये गजल है और बहुत ही खूबसूरत ये गजल है, इसे आप सुनिएगा तो आपको लगेगा कि कितना कुछ है हमारी लाइफ में, कितना कुछ है हमारी जिंदगी में, लेकिन हम शायद उसे समझ नहीं पाते हैं, है ना। कभी कभी खुद को समझने के साथ साथ सिचुएशन को और किसी को समझना जरूरी हो जाता है। कहते हैं ना कि काश ऐसा हो मैं कुछ ना कहूँ और तू सब समझ जाए, कुछ ऐसी ही है ये गजल जो मैं आपके लिए प्ले कर रही हूँ जगजीत जी की आवाज़ में। बहुत ही खूबसूरत सी ये गजल है, इसे सुनिए, इंजॉय करते रहिए, हमारे साथ बने रहिए और आकाशवाणी रेनबो पर गजलों से भरा ये प्रोग्राम, ये सफर, आइए हमारे साथ साथ चलिए, एंजॉय दिस गजल जगजीत जी की आवाज में। प्रोग्राम सुन रहे हैं आप

जी हाँ, कभी कभी किसी का सिर्फ देखना भर ही हमारे लिए बहुत खास हो जाता है ना। रात का ये वक्त है, गजलों का ये सफर है, और कहते हैं ना कि जाने उस शख्स को ये कौन सा हुनर आता है, रात होती है तो आंखों में उतर आता है। प्रोग्राम सुन रहे हैं आप रंगे महफिल, ओनली ऑन आकाशवाणी रेनबो पर।

मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल। आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 FM रेनबो पर। बिंदास बोल।

0: जो कहानियाँ हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
3: तो सुनिए जानकारियों से लवरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
2: अल्फा जेन,
3: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।
4: कोयल सी तेरी बोली, तेरी तेरी सी नजर में है जादू।
5: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
4: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तो मैं सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
5: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
3: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
6: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

0: चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।
1: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो

जी हाँ, हालात वक्त भले ही आपके हिसाब से ना चल रहे हों, लेकिन ज़िंदगी का फ़लसफ़ा सिर्फ इतना है कि इसे जीते जाइए। मैं हमेशा यही कहती हूँ, ज़िंदगी इतनी मुश्किल नहीं जितनी इसे हम बना देते हैं। थोड़ी सी समझदारी, थोड़ा सा किसी बात को सहना या फिर थोड़ा सा समझना ज़िंदगी को आसान बना देता है। एक्सेप्टेंस जो है वो ज़िंदगी को बहुत ही ईजी कर देती है। इसलिए जो आपके पास है वो पर्याप्त है, जो नहीं है अगर किस्मत में है तो वो ज़रूर मिलेगा। भागने की ज़रूरत नहीं है, है ना। चलिए आप, मैं अगली गज़ल आपके लिए प्ले कर रही हूँ, इसे सुनिएगा। और बहुत ही अच्छी सी खूबसूरत सी गज़ल है, और इस गज़ल को जब आप सुनेंगे भूपेंद्र जी की आवाज़ में ये गज़ल, करोगे याद तो हर बात याद आएगी। चांद को देखते हुए ठंडी हवा में कभी इस गज़ल को सुनिएगा, इसके मायने बहुत हैं। बहुत खूबसूरत सी मखमली सी आवाज़ की गज़ल, इसे सुनिएगा और बने रहिएगा हमारे साथ आकाशवाणी रेनबो पर। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम रंगी महफिल।

0: जी हाँ, बात छिड़ी और फिर बात आगे बढ़ी, यही तो होता है ना। कुछ ऐसे ही रही हमारी और आपकी मुलाकात। आप सुन रहे थे प्रोग्राम रंगे महफिल, लेकिन अब प्रोग्राम में आपसे इजाजत लेने का वक्त हो गया है, तो ले रही हूँ आपसे इजाजत, लेकिन बहुत जल्द मिलूंगी आपसे। तब तक अपना ख्याल रखिए और आकाशवाणी रेनबो के सभी शोज सुनते रहिए। टेक केयर, बाय बाय।
1: ये है आकाशवाणी।
0: ये हो रहा है आज।

रात्रि के 12 बजे हैं। प्रस्तुत हैं एफएम रेनबो मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने दिल्ली में द्वारका एक्सप्रेसवे को नेल्सन मंडेला मार्ग वसंत कुंज से जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 148 AE के लिए 6 लेन को सड़क सुरंग के निर्माण को मंजूरी दे दी है। 8 किलोमीटर से अधिक लंबी ये परियोजना 6,969 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से विकसित की जाएगी। इसके साथ ही सरकार ने उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग 34 के करीब 118 किलोमीटर लंबे 4 और 6 लेन वाले एक्सेस कंट्रोल्ड कानपुर कबराई खंड के निर्माण को भी मंजूरी दी है। विकसित भारत VBG रामजी गारंटी अधिनियम 2025 कल से पूरे देश में लागू हो गया है। पात्र ग्रामीण परिवारों को अब 125 दिनों के गारंटीकृत श्रम रोजगार को वैधानिक अधिकार प्राप्त होगा। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने एपी मोलर मैसर्क समूह के एसेट स्ट्रेटजी प्रमुख अहमद हसन के साथ बैठक में भारत के समुद्री क्षेत्र को मजबूत बनाने पर चर्चा की। सर्वोच्च न्यायालय ने मोटर दुर्घटना मुआवजे के दावों में एक रूपता लाने के लिए पीड़ितों की आय का आकलन करने का दिशा निर्देश जारी किए हैं। जापान की प्रधानमंत्री सनाए सकाइची 3 दिन की भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंच गई हैं। वे आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि वे

जापान के प्रधानमंत्री सनाई तकाइची के साथ होने वाली वार्ता को लेकर उत्सुक हैं और दोनों देश मिलकर हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और समुद्री को बढ़ावा देने के लिए साथ काम करते रहेंगे। विदेश मंत्रालय की ओर से नई दिल्ली में आयोजित दो दिवसीय मानव संसाधन गतिशीलता मंच कल संपन्न हो गया। इस मंच का उद्देश्य भारतीय पेशेवरों और कामगारों के लिए सुरक्षित और वैध विदेश रोजगार के अवसर बढ़ाना तथा इस क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करना है। नागर विमानन मंत्रालय ने कहा है कि भारत ने हेलीकॉप्टर परिचालन के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। देश के पहले निजी पॉइंट इन स्पेस एस्टीमेंट अप्रोच प्रोसीजर को आंध्र प्रदेश के उंडावली हेलीपोर्ट के लिए मंजूरी दे दी। मंत्रालय ने बताया कि ये उपग्रह आधारित आधुनिक तकनीक खराब मौसम और दूर दराज क्षेत्रों में भी हेलीकॉप्टरों की सुरक्षित और स्टिक लैंडिंग सुनिश्चित करेगी। मौसम विभाग ने दक्षिण पश्चिम मानसून के अगले दो दिनों में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में आगे बढ़ने की संभावना व्यक्त की है। और खेलों में भारत और इंग्लैंड के बीच 5 T20 मैचों की क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में आज चेस्टर ली स्ट्रीट में भारत ने इंग्लैंड को 190 रन का लक्ष्य दिया है। फीफा विश्व कप के राउंड ऑफ 32 में इंग्लैंड ने DR कांगो पर 2-1 से जीत दर्ज की। ये थे अब तक के FM रेनबो मुख्य समाचार। 12:03 हुए हैं। समय है बहुत ही खूबसूरत प्रोग्राम जिसका नाम है जीरो आर शो।

मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में इस समय एक बहुत अहम अभियान चल रहा है जिसके बारे में हर भारतीय को जानकारी होनी जरूरी है। ये है जनगणना का अभियान। यह दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना है। साथियों, जो साथी पहले से इस तरह की प्रक्रिया से गुजरे हैं, इस बार जनगणना का उनका अनुभव अलग होने वाला है। जनगणना 2027 को डिजिटल बनाया गया है। सारी जानकारी सीधे डिजिटल माध्यम में दर्ज हो रही है। घर घर जाने वाले कर्मचारियों के पास मोबाइल ऐप है। वे आपसे बात करके उसी में जानकारी दर्ज करेंगे। साथियों, इस बार जनगणना में आपकी भागीदारी भी आसान बनाई गई है। आप खुद भी अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। कर्मचारी के आने से 15 दिन पहले आपके लिए सुविधा शुरू होगी। आप अपने समय के अनुसार जानकारी भर सकते हैं। जब आप प्रक्रिया पूरी करते हैं तो आपको एक विशेष आईडी मिलती है। यह आईडी आपके मोबाइल या ईमेल पर आती है। बाद में जब कर्मचारी आपके घर आता है तो आप यही आईडी दिखाकर जानकारी की पुष्टि कर सकते हैं। इसे दोबारा जानकारी देने की जरूरत नहीं पड़ती। समय भी बचता है और प्रक्रिया आसान हो जाती है। साथियों, जिन राज्यों में स्वगणना का काम पूरा हो गया है, वहां गणना कर्मचारी द्वारा घरों के सूचीकरण का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। अब तक लगभग 1,20,00,000 परिवारों का मकान सूचीकरण का कार्य पूरा भी हो चुका है। साथियों, देश की जनगणना सिर्फ सरकारी काम नहीं है, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है। जनगणना 2027 को सफल बनाएं।

नमस्कार, पेश हैं इस घंटे के मुख्य समाचार आकाशवाणी रेनबो पर। जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची 3 दिन की भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंच गए हैं। वे आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि वे जापान की प्रधानमंत्री के साथ होने वाली वार्ता को लेकर उत्सुक हैं और दोनों देशों के साथ मिलाकर हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए काम करते रहेंगे। दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी कार्यालय ने बताया है कि मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के तहत अब तक 32,000 से अधिक गणना प्रपत्रों का डिजिटलीकरण किया जा चुका है। दावे और आपत्तियां 5 अगस्त से 4 सितंबर तक दर्ज कराई जा सकेंगी। अंतिम मतदाता सूची 7 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। ऑनलाइन प्रपत्र भी निर्वाचन आयोग के पोर्टल पर भरा जा सकता है। केंद्र सरकार ने दिल्ली में द्वारका एक्सप्रेसवे को नेल्सन मंडेला मार्ग वसंत कुंज से जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 148 AE के लिए 6 लेन की सड़क सुरंग के निर्माण को मंजूरी दे दी है। 8 किलोमीटर से अधिक लंबी यह परियोजना 6,969 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से विकसित की जाएगी। इसके साथ ही सरकार ने उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग 34 के करीब 118 किलोमीटर लंबे 4 और 6 लेन वाले एक्सेस कंट्रोल्ड कानपुर कबराई खंड के निर्माण को भी मंजूरी दी है। दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में मौसमी वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए एक स्थायी शीतकालीन प्रदूषण मास्टर प्लान अधिसूचित किया है, जो हर साल 1 नवम्बर से 28 फरवरी तक लागू रहेंगी। सरकार ने विदेश सचिव विक्रम मिश्री का कार्यकाल 14 जुलाई 2027 तक के लिए बढ़ा दिया है। ये थी अब तक की न्यूज़ हेडलाइन। आकाशवाणी रेनबो पर आप जुड़े हैं, थोड़ी देर में सुनेगा कार्यक्रम सुहानी रात।

जब तक जिंदगी रहे तब तक बहुत खुशियाँ सबको मिलती रहें, सभी के साथ हम सफ़र और जो हमारे बाकी यादें हैं, किस्से हैं, वो बहुत ही सकारात्मक रहें। इसी शुभकामना के साथ हम हर बार की तरह इस दिन का भी इस्तकबाल कर रहे हैं। अब लगभग 1.25 घंटे पुराना ये दिन हो चुका है और ये इस दिन का, आज के दिन का यानी 2 जुलाई 2026 का दूसरा शो है आकाशवाणी रेनबो 102.6 पर। आप सभी का स्वागत, प्रोग्राम का नाम आप सभी को पता है, सुहानी रात आप सभी के साथ, और करेंगे आपके साथ बहुत सारी बातें म्यूज़िक के थ्रू, संगीत के थ्रू, अपने उन गानों के थ्रू जो 90 और उसके आसपास के काफ़ी चहेते गाने रहे हम सभी लोगों के। और आज भी जब हमें कुछ याद करने का दिल करता है, रात को सुहाना, हर पल को लुभावना करने की अगर कहीं बात होती है, तो यूँ तो हमारे जो हिंदी फिल्म उद्योग है, हिंदी फिल्मी गीतों का जो इतिहास है, उसमें एक से एक लाजवाब दौर रहा है जिसने जिंदा दिली के साथ हम सबका साथ दिया है। लेकिन 90 का दौर एक अलग ही तरह का रूबाब रखता है, एक अलग तरह की का माधुर्य और एक अलग विशेषताओं के साथ ये दौर जाना जाता है। उन्हीं विशेषताओं को लेकर, उन्हीं खसूसियत को लेकर, खासियतों को लेकर हम हाजिर होते हैं हर बार सुहानी रात का अपना ये शो लेकर, जिसे जुड़ सुनते हैं आप हमारे साथ इन्हीं फ्रिक्वेंसी पर 102.6।

0: और इसके अलावा न्यूज़ ऑन एयर ऐप पर भी हम उपलब्ध हैं। आप देश और दुनिया के हर हिस्से हर कोने से जुड़ सकते हैं और सुन सकते हैं हमारा ये कार्यक्रम। फिलहाल मैं हूं कार्यक्रम में आपके साथ रजत। आप सभी का बहुत बहुत इस्तकबाल, काफ़ी शुभकामनाएं, आभार, धन्यवाद कार्यक्रम से जुड़ने के लिए और स्वागत कि आप जुड़ते ही रहें, क्योंकि अब ये 35-40 मिनट का बचा हुआ सफ़र हम आप ही के साथ इन्हीं गानों की कश्ती पर बैठकर तय करने वाले हैं और इसे और सुहाना बनाने वाले हैं।
1: अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
2: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
3: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
4: आज की रात मजा,
3: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
2: म्यूजिक मस्ती।
5: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
6: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
2: म्यूजिक मस्ती।
7: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी,

0: जो कहानियाँ हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल, आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 रेनबो पर। बिंदास बोल।
2: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मनपसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

रात्रि के 2 बजे हैं। प्रस्तुत हैं एफएम रेनबो मुख्य समाचार। जापान के प्रधानमंत्री सनाए तकाइची आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि वे जापान के प्रधानमंत्री के साथ होने वाली वार्ता को लेकर उत्सुक हैं। दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी कार्यालय ने बताया है कि मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के तहत अब तक 32,000 से अधिक गणना प्रपत्रों का डिजिटीकरण किया जा चुका है। दावे और आपत्तियां 5 अगस्त से 4 सितंबर तक दर्ज कराई जा सकेंगी। अंतिम मतदाता सूची 7 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। ऑनलाइन प्रपत्र भी निर्वाचन आयोग के पोर्टल पर भरा जा सकता है। केंद्र सरकार ने दिल्ली में द्वारका एक्सप्रेसवे को नेल्सन मंडेला मार्ग वसंत कुंज से जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 148 AE के लिए 6 लेन की सड़क सुरंग के निर्माण को मंजूरी दे दी है। 8 किलोमीटर से अधिक लंबी ये परियोजना 6,969 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से विकसित की जाएगी। इसके साथ ही सरकार ने उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग 34 के करीब 118 किलोमीटर लंबे 4 और 6 लेन वाले एक्सेस कंट्रोल कानपुर कबराई खंड के निर्माण को भी मंजूरी दी है। कल से लागू हुए विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण VBG राम जी गारंटी अधिनियम 2025 के तहत देश भर में पात्र ग्रामीण परिवारों को 125 दिनों के गारंटीकृत श्रम रोजगार का वैधानिक अधिकार प्राप्त हो जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने कल राज्यव्यापी डिजी रोवर GNSS विशेष भूमि मापन अभियान का शुभारंभ किया। ये अभियान 1 जुलाई से 15 अगस्त तक राज्य भर में चलेगा। झारखंड सरकार ने पूर्वी सिंहभूम जिले में मलेरिया से 4 लोगों की मौत के बाद पूरे राज्य में स्वास्थ्य अलर्ट जारी कर दिया है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPF ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए EPF जमा कर 8.25% ब्याज दर की आधिकारिक रूप से घोषणा कर दी है। सरकार ने देश में व्हाट्सएप पर यूजर नेम फीचर शुरू करने के संबंध में मेटा को नोटिस जारी किया है। सूत्रों के अनुसार सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने मेटा को 3 दिनों के भीतर यूजर नेम फीचर के बारे में विस्तृत जानकारी देने का निर्देश दिया है। देश के पहले निजी पॉइंट इन स्पेस इंस्ट्रूमेंट एक्प्रोस प्रोसीजर को आंध्र प्रदेश के उंडावल्ली हेलीपोर्ट के लिए मंजूरी दे दी गई है। यह पहल हेलीकॉप्टर सेवाओं को अधिक सुरक्षित, विश्वसनीय और हर मौसम में सुगम बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। मौसम विभाग ने दक्षिण पश्चिम मानसून के अगले 2 दिनों में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में आगे बढ़ने की संभावना व्यक्त की। और खेलों में भारत और इंग्लैंड के बीच 5 T20 मैचों की क्रिकेट श्रृंखला का पहला मैच बारिश के कारण रद्द कर दिया गया। फीफा विश्व

0: आकाशवाणी
1: और आप प्रस्तुत है प्रोग्राम जिसका नाम है भुलाए ना बने।

0: बाजार है हप हप, खाता है कोड़ा भी रहता है भूखा भी, फिर भी वो मालिक पे करता नहीं वार है। और इंसान ये माल जिसका खाता है, प्यार जिससे पाता है, गीत जिसके गाता है, उसके ही सीने में भौंकता का तार है।
1: कहिए श्रीमान, आपका क्या विचार?

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री राम चरित मानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री राम चरित मानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
2: तो सुनिए जानकारियों से लवरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
1: अल्फा जेन,
2: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।

0: हिमालय की गोद से लेकर
1: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
0: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
1: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
0: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
1: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
0: तो सुनना ना भूलें
1: रेनबो डेस्टिनेशंस
0: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।
2: तो पार्टी शुरू हुई है,
1: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
3: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
4: आज की रात मजा,
3: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
1: म्यूजिक मस्ती।
5: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
0: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
1: म्यूजिक मस्ती।

अपनी सूरत दिखा दे समा खूबसूरत बना दे, नहीं तो तेरा नाम लेके तुझे कोई इल्जाम देके तुझको इस महफिल में रुसवा ना कर दूं रुसवा।

0: अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
1: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
2: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
3: आज की रात मजा,
2: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
1: म्यूजिक मस्ती।
4: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
5: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
1: म्यूजिक मस्ती।

0: साहब।
1: कौन? मैं?
0: जी हाँ, आप ही से कह रहा हूँ। यहाँ आएंगे आप? क्या नाम है आपका?
1: मेरा नाम सुनीता।
0: लवली नेम।
1: थैंक यू।
0: गाएंगे आप मेरे साथ?
1: ना, डर लगता है।
0: डरने की क्या बात है, मैं आपके साथ गाता हूँ।

0: दोनों हमारे साथ गा सकते हैं तो आप सब क्यों नहीं
1: गा। ठीक 3:00 कुछ सेकंड्स हुए हैं, आइए सुनते हैं इस घंटे के मुख्य समाचार आकाशवाणी FM रेनबो पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची के साथ वार्षिक शिखर वार्ता करेंगे। दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी कार्यालय ने बताया कि मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के तहत अब तक 32,000 से अधिक गणना प्रपत्रों का डिजिटलीकरण किया जा चुका है। केंद्र सरकार ने दिल्ली में द्वारका एक्सप्रेसवे को नेल्सन मंडेला मार्ग, वसंत कुंज से जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 148 AE के लिए 6 लेन की सड़क सुरंग के निर्माण को मंजूरी दे दी है। 8 किलोमीटर से अधिक लंबी यह परियोजना 6,969 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से विकसित की जाएगी। कल से लागू हुए विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण VBG रामजी गारंटी अधिनियम 2025 के तहत देशभर में पात्र ग्रामीण परिवारों को 125 दिनों के गारंटीकृत श्रम रोजगार का वैधानिक अधिकार प्राप्त हो जाएगा। सरकार ने देश में व्हाट्सएप पर यूजर नेम फीचर शुरू करने के संबंध में मेटा को नोटिस जारी किया है। सूत्रों के अनुसार सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने मेटा को 3 दिनों के भीतर यूजर नेम फीचर के बारे में विस्तृत जानकारी देने का निर्देश दिया है। दक्षिण अमरीकी देश वेनेजुएला में पिछले सप्ताह आए 2 शक्तिशाली भूकंपों में मरने वालों की संख्या बढ़कर 2,295 हो गई है। मौसम विभाग ने दक्षिण पश्चिम मानसून के अगले 2 दिनों में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में आगे बढ़ने की संभावना व्यक्त की। और खेलों में पुरुष क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच चेस्टरली स्ट्रीट में खेला गया पहला T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच बारिश के कारण रद्द हो गया। फीफा विश्व कप के नॉकआउट मुकाबले में इंग्लैंड ने DR कांगो को 2-1 से हराकर राउंड ऑफ 16 में जगह बना ली है। रांची पहली बार डूरंड कप फुटबॉल टूर्नामेंट की मेजबानी करेगा। टूर्नामेंट के मुकाबले 26 जुलाई से 16 अगस्त तक बिरसा मुंडा स्टेडियम में खेले जाएंगे। ये थे अब तक के मुख्य समाचार, आइए जुड़ते हैं कार्यक्रम मिडनाइट मेलोडीज से कुछ देर में।

0: मिडनाइट मेलोडीज में आप सभी का स्वागत। मैं हूं रजत और आप जुड़े हैं हमारे साथ आकाशवाणी रेनबो 102.6 पर। इसके अलावा आप हमें सुन पा रहे हैं न्यूज ऑन एयर ऐप पर भी। देश और दुनिया के कोने से, हर हिस्से से, हर कोने से, हर उस जगह से जहां भी हम आप तक पहुंच पा रहे हैं, तो जुड़े रहें इस कार्यक्रम से। मैं हूं रजत, आपका स्वागत करते हुए मिडनाइट मेलोडीज के अपने आज के इस शो में। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन हमारे साथ गीतों की इस खास महफिल में।
1: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात। हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, ऑलवेज वेयर एवर यू आर। 102.6 आप

0: के लिए। स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
1: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
2: आज की रात मजा,
1: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
0: म्यूजिक मस्ती।
3: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
4: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
0: म्यूजिक मस्ती। सागर की गहराइयों से पर्वतों के शिखर तक, सरहद की हद से दुश्मनों के खात्मे तक, ये है भारत के सोल्जर्स। इन सोल्जर्स के अदम्य साहस को आकाशवाणी करता है सलाम। इन्हीं की विजय गाथा को लेकर आए हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में, हर गुरुवार शाम 4 से 5 रेनबो पर।
5: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी।

श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।

0: फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
1: आज की रात मजा,
0: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
2: म्यूजिक मस्ती।
3: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
4: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
2: म्यूजिक मस्ती।
5: सागर की गहराइयों से पर्वतों के शिखर तक, सरहद की हद से दुश्मनों के खात्मे तक, ये है भारत के सोल्जर्स। इन सोल्जर्स के अदम्य साहस को आकाशवाणी करता है सलाम। इन्हीं की विजय गाथा को लेकर आए हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में, हर गुरुवार शाम 4 से 5 रेनबो पर।
6: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।
7: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी।

श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।

आकाशवाणी रेनबो 102.6 पर आप जुड़े हैं हमारे प्रातःकालीन प्रसारणों में। सुबह के 4 बजने को हैं, आइए प्रस्तुत हैं अब तक के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची के साथ वार्षिक शिखर वार्ता करेंगे। दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय ने बताया है कि मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के तहत अब तक 32,000 से अधिक गणना प्रपत्रों का डिजिटलीकरण किया जा चुका है। केंद्र सरकार ने दिल्ली में द्वारका एक्सप्रेसवे को नेल्सन मंडेला मार्ग वसंत कुंज से जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 148 AE के लिए 6 लेन की सड़क सुरंग के निर्माण को मंजूरी दे दी है।

8 किलोमीटर से अधिक लंबी यह परियोजना 6,969 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से विकसित की जाएगी। कल से लागू हुए विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण वीबीजी रामजी गारंटी अधिनियम 2025 के तहत देशभर में पात्र ग्रामीण परिवारों को 125 दिनों के गारंटीकृत श्रम रोजगार का वैधानिक अधिकार प्राप्त हो जाएगा। सरकार ने देश में व्हाट्सएप पर यूजर नेम फीचर शुरू करने के संबंध में मेटा को नोटिस जारी किया है। सूत्रों के अनुसार सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने मेटा को 3 दिनों के भीतर यूजर नेम फीचर के बारे में विस्तृत जानकारी देने का निर्देश दिया है। दक्षिण अमरीकी देश वेनेजुएला में पिछले सप्ताह आए 2 शक्तिशाली भूकंपों में मरने वालों की संख्या बढ़कर 2,295 हो गई है। मौसम विभाग ने दक्षिण पश्चिम मानसून के अगले 2 दिनों में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में आगे बढ़ने की संभावना व्यक्त की। और खेलों में पुरुष क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच चेस्टरली स्ट्रीट में खेला गया पहला T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच बारिश के कारण रद्द हो गया। फीफा विश्व कप के नॉकआउट मुकाबले में इंग्लैंड ने DR कांगो को 2-1 से हरा कर राउंड ऑफ 16 में जगह बना ली है। और रांची पहली बार डूरंड कप फुटबॉल टूर्नामेंट की मेजबानी करेगा। टूर्नामेंट के मुकाबले 26 जुलाई से 16 अगस्त तक बिरसा मुंडा स्टेडियम में खेले जाएंगे। ये थे अब तक के मुख्य समाचार। नॉनस्टॉप गीतों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। कुछ ही देर में प्रस्तुत होगा कार्यक्रम सारे गामा।

0: हिमालय की गोद से लेकर
1: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
0: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
1: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
0: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
1: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
0: तो सुनना ना भूलें
1: रेनबो डेस्टिनेशंस
0: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।
2: कोयल सी तेरी बोली, तेरी तिरछी नजर में है जादू।
3: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
2: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
3: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
0: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
4: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी।

0: क्या है बबल, जो कहानियाँ हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।

0: मोबाइल पर आती है एक कॉल।
1: नंबर अननोन यानी अपरिचित है,
0: फिर भी आप उठा लेते हैं कि क्या पता कॉल जरूरी ना हो।
2: आपके बेटे के नाम पर सिर्फ एफआईआर दर्ज है, आपके बेटे ने ये कांड किया नहीं है।
3: ठीक है,
2: आपका बेटा कैसे क्लियर होगा वो मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ सर। इसका सर देखो जो एफआईआर कटा है इनके नाम से, उसका जो खर्चा हर है वो आपको डिपॉजिट करना होगा। जैसे डिपॉजिट करेंगे, डिपॉजिट करने के बाद आपका बेटा क्लियर होकर आपके घर आ जाएगा।
1: आप घबरा जाते हैं और समझ नहीं पाते कि करना क्या है।
0: कई बार तरीका कुछ और भी हो सकता है।
4: प्रिय उपयोगकर्ता, आपका मोबाइल फोन नंबर उच्च जोखिम में है और आपके अकाउंट की रक्षा के लिए 5 मिनट के बाद निष्क्रिय कर दिया जाएगा। ग्राहक सेवा कृपया पुष्टि करने के लिए 9 दबाएं।
0: साइबर अपराधी एक्सटॉर्शन यानी धन उगाही के लिए नए नए तरीके आजमा रहे हैं।
1: व्हाट्सएप कॉल, SMS, फ्रॉड लिंक, लॉटरी में जीत, वीडियो कॉल ब्लैकमेलिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दुरुपयोग करके भ्रमित करना, न जाने क्या क्या।
0: इन परिस्थितियों से खुद को सुरक्षित रखिए।
1: समय समय पर सरकार द्वारा जारी एडवाइजरीज पर ध्यान दीजिए।
0: अपरिचित नंबर से आने वाले ऑडियो या वीडियो कॉल को अटेंड मत कीजिए।
1: किसी भी ऐसे लिंक को क्लिक मत कीजिए जिसके बारे में आपको पता नहीं है।
0: ऐसी घटनाओं की सूचना तुरंत साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर या www.cybercrime.gov.in पर कीजिए।
1: याद रखिए, साइबर क्राइम की दुनिया में सतर्क रहकर ही आप सुरक्षित हैं।